सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर 18621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48:45 हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: व्याकरण बोलता है कि नैतिकता महज एक भाववाचक संज्ञा है, किंतु कवि इसे जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवत्ता बताता है। संसार के सारे धर्मों के संस्थापक एवं व्याख्याकार नैतिकता के पक्ष में ही अपने समस्त उपदेशों को केंद्रित रखते रहे हैं। मोहम्मद साहब ने जिस ईमान को महत्व दिया वो अंततः नैतिकता ही है। ईसा ने जिस सत्य पर बल दिया वो भी नैतिकता ही है। वेदों की संपूर्ण ऋतस्विता का मूलाधार भी केवल नैतिकता है। संस्कृति एवं सभ्यता का मापदंड है नैतिकता। जो समाज नैतिकता पर जितना अधिक बल देता है वो उसी सीमा तक सुसंस्कृत एवं सभ्य कहलाता है। व्यक्ति की सामाजिकता भी कुल मिलाकर नैतिकता ही है। नैतिकता देना जानती है, इसीलिए यशस्विता पाती है। सूरज अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने की नैतिकता के कारण ही यशस्वी है। आग की यशस्विता का कारण भी ऊष्मा बांटने की नैतिकता ही है। चंद्रमा भी अपनी शीतल रश्मियता से सबको लाभान्वित करने की नैतिकता दिखाने से यशस्वी है। सरिताएं अपना जल स्वयं नहीं पीती, ये उनकी नैतिकता है। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ये भी उनकी नैतिकता है। स्वार्थ की सीमा लांघकर परमार्थ या परोपकार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा का ही दूसरा नाम है नैतिकता। नैतिकता धर्म है और अनैतिकता अधर्म। यही कारण है कि संसार के प्रायः हर सभ्य समाज में नैतिक कार्यों को सत्कर्म और अनैतिक कार्यों को दुष्कर्म कहा जाता है। पुण्य और पाप भी नैतिकता और अनैतिकता के ही क्रमबद्ध पर्याय हैं। नैतिकता पुण्य पैदा करती है और अनैतिकता से पाप का जन्म होता है। हत्या अनैतिकता है और रक्षा नैतिकता, लूट अनैतिकता और दान नैतिकता। अनैतिकता अपहरण की प्रेरणा देती है, किंतु नैतिकता त्याग की भाषा सिखलाती है। अनैतिकता एक विद्वान राजपुरुष को भी रावण बना देती है, किंतु नैतिकता आचरण वाला व्यक्ति बनवासी होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर में जो अंतर है वही अनैतिकता और नैतिकता में भी है। नैतिकता सदाचार है और अनैतिकता दुराचार। नैतिकता ही वो सद्गुण है जो मनुष्य को पशु बनने से बचाती है। नैतिकता विवेक पैदा करती है, अतः मनुष्य को अविवेकी बनने से रोकती है। आदमी जब कभी न्याय के मार्ग पर स्खलित होने लगता है तो नैतिकता उसे रोकती है। समाज के संदर्भ में नैतिकता ही व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक नागरिक को राष्ट्रवादी बनाती है। ये नैतिकता ही है कि एक सर्वाधिकारी राजा को भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माक्षित दुख भाग भवेद का आदर्श उपदेश देती है। नैतिकता वो पतवार है जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना की नाव को खेती है। अनैतिकता जहां सिर्फ लेती है वहां नैतिकता सिर्फ देती है। आम खाकर गुठली को जमीन में बो देना नैतिकता है, ताकि लाखों आम बांटने हेतु एक नया पेड़ पैदा हो सके। नैतिकता धर्म तंत्र को, मनुस्मृति और लोकतंत्र को संविधान देती है। नास्तिकों को तर्क और आस्तिकों को श्रद्धा देती है नैतिकता। नैतिकता कहती है कि किसी राजा को लुटेरा और रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। नैतिकता अधिकार पाने वालों को कर्तव्य की प्रेरणा देती है। छात्रों को पढ़ने तथा शिक्षकों को पढ़ाने के लिए मजबूर करती है नैतिकता। पशुता को मनुष्यता की परिधि से दूर करती है नैतिकता।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए श्रीनिवास सहाय से वार्ता। विषय है प्याज के रोग।
2: किसान भाइयों,

0: नमस्कार। मौसम में थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। पिछले दिनों वर्षा हुई और वर्षा के कारण अनेक कीड़ों और रोगों का प्रकोप जो है वो आपकी प्याज की फसल पर होगा। प्याज की फसल आपके खेत में खड़ी है, आप उसे देखें और रोग के लक्षणों के आधार पर और कीड़ों के दिखाई देने पर कुछ उपाय करें ताकि प्याज की फसल आपकी अच्छी रहे, क्योंकि प्याज की फसल को रोग और कीड़ों से ज़्यादा नुकसान होता है। प्याज के कीड़ों की बात हम करें तो सबसे प्रमुख कीड़ा जो बिहार में लगता है उसका नाम है थ्रिप्स। यह प्याज का मुख्य कीड़ा है जो कि सबसे ज़्यादा क्षति करता है, बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। यह कीड़ा पीले भूरे रंग का बेलनाकार आकार का होता है। यह पत्तियों को खुरचकर पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों पर उजले दाग बन जाते हैं। साथ ही पत्तियां सूखकर नीचे की तरफ ऐंठ जाती है। ज़्यादा यदि आक्रमण होता है तो इस स्थिति में पूरी फसल झुलस जाती है और बल्ब का आकार जो है वो छोटा होता है, यानी कि प्याज की जो फसल है वो प्रभावित होती है, उत्पादन इससे कम होता है। आप खेत में जाएं और देखें कि पत्तियां प्याज की यदि ऐंठ रही है, पत्तियां झुलस रही हैं, तो समझ जाएं कि ये थ्रिप्स कीड़े का आक्रमण है। अब यदि कीड़ा ज़्यादा की संख्या में लगा हो तो उसके लिए प्रबंधन करना भी आवश्यक है। इसके लिए 20 पीला चमकने वाला फंदा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में लेडी बर्ड बीटल, मकड़ी, रो बीटल, ग्राउंड बीटल, सिरफिट फ्लाई जैसे मित्र कीटों का संरक्षण करें और उन्हें खेत में छोड़ दें। वे कीड़े थ्रिप्स को खाते हैं और इससे जो है कीड़े समाप्त हो जाते हैं, नुकसान कम हो जाता है, बल्ब अच्छे बनते हैं और उपज भी अच्छी होती है। इसके बाद बात आती है कृषि रसायनों के प्रयोग की, यानी कि दवाओं के प्रयोग की। तो इमिडा क्लोप्रीड 17.8% SL दवा जो है उसे 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा मिलावें और उसका छिड़काव करें। एक बार फिर से सुन लें, 3 लीटर पानी लें और उसमें 1 मिलीलीटर इमिडा क्लोप्रीड 17.8% SL दवा का प्रयोग करें, घोल बनावें और उसका छिड़काव करें। फी प्रोनील 5% SC 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या डेल्टा मेथ्रीन 11% WWEC का 0.4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। घोल जब बनावें तो ध्यान रखें कि स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। स्टिकर से हमारा मतलब है कि साबुन या वॉशिंग पाउडर घोल में जरूर मिलावें, जिससे कि पत्तियों पर ये दवा जो है वो टिके और कीड़े जहां भी हों वे नष्ट हो जाएं। उसके बाद कुछ रोगों की बात करें तो प्याज के पौधे के ऊपर बैगनी धब्बा रोग, जिसे पर्पल ब्लॉन्च कहते हैं, होता है। यह प्याज का प्रमुख फफूंद जनित रोग है। इस रोग के आक्रमण होने पर प्याज की पत्तियों पर पहले छोटा सफेद गोलाकार या अनियमित आकार के दाग बनते हैं, जो बाद में बड़ा और बैगनी हो जाता है। दाग के ऊपर पत्ते का भाग पीला पड़कर सूख जाता है और फूल के डंठल आक्रांत होने पर बीज बहुत कम बनते हैं, उपज भी प्रभावित होती है। ये बैगनी धब्बा रोग जो है, इसके रोकथाम के लिए आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का व्यवहार करें। अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाई नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, फास्फोरस और पोटास उस मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो सकती है। खेत में खरपतवार बिल्कुल ही नहीं रहने चाहिए। जब भी घास पात हो निकाई गुड़ाई करते रहें। कुछ दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। तो कीटाजीन 48% EC का 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दवा है जिसका नाम है डीफेनोकोनाजोल 25% EC 1 मिलीलीटर दवा लें, 1 लीटर पानी में आप घोल बनावें और उसका छिड़काव करें। जब भी किसी दवा का घोल बनावें और उसका छिड़काव करना हो तो उसमें स्टिकर जरूर मिला लें। स्टिकर से मतलब हमारा है साबुन, वॉशिंग पाउडर। थोड़ा थोड़ा आप यदि उसमें मिला देते हैं तो पत्तियों पर दवा की मात्रा जो है रहती है। और
1: प्याज के रोग इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब भी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से। फिरोजी,
2: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।

0: आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

प्रेम की सीमा इतनी व्यापक होती है कि इसमें ईश्वर सहित पूरी सृष्टि समाहित हो जाती है। प्रेम में समर्पण भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है और मीराबाई इसकी प्रतीक है। उन्होंने कृष्ण कन्हैया के प्रेम में अपने जीवन को उनका गुलाम बना दिया।

सूर्य को न सिर्फ ग्रह के तौर पर हम जानते हैं बल्कि देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। सूर्य देव की अलग-अलग वेदों में बहुत ही दिलचस्प महिमा की गई है। उन्हें मानव के कर्मों का साक्ष्य बताया गया है।

हनुमान आदित्य के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं रामचरित मानस से पाठ, मुख्य सर रविंद्र साठे का है।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्रीराम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्रीराम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक रहे हैं।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ मुख्य स्वर रविंद्र साठे का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से भेंट वार्ता। विषय है हमारे शरीर में लीवर यानी यकृत की अहमियत। भेंट करते हैं चंद्रमणि भारती।
1: स्वास्थ्य सूचनाओं के इस अंक में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। आप प्रभारी अधीक्षक हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय अस्पताल पटना में। आज का हमारा विषय है हमारे शरीर में लीवर यानी यकृत की अहमियत। डॉक्टर साहब, लीवर जिसे हिंदी में यकृत भी कहा जाता है, उसका हमारे शरीर में महत्वपूर्ण प्रभाव

0: हाँ, वह डालता है उपापचय क्रियाओं तथा जो भी हम खान पान करते हैं उसको विष हरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो इसी भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं?
1: ऐसा है, लीवर को जो है हमारे आयुर्वेद मतानुसार ज्योति कहा गया है। अब इसके महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सा आप सुनते होंगे कि जिगर के टुकड़े
0: जी
1: कितना शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि जिगर के टुकड़े के रूप में जो सबसे लोकप्रिय और शरीर के लिए जो आवश्यक अंग है, इसके वजह से जिगर के टुकड़े के रूप में भी इसको संबोधित किया गया है। जिगर इसको कहते हैं, इसलिए हमारे शरीर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आयुर्वेद के अनुसार इसको ज्योति की कहा गया है। और यह हमारे शरीर में राइट हाइपोकेंड्रियम रीजन में पाया जाता है, मुख्य रूप से जो दाहिने साइड जो आप वक्षस्थल देख रहे हैं उसके ठीक नीचे ये रहता है। और इसका साइज आप देखें, मुख्य रूप से अल्ट्रासाउंड वगैरह सब में भी साइज वगैरह सब देखा जाता है, तो 13 से 15 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। तो ये बहुत ही अहम रोल हमारे यहाँ करता है, जैसा कि आपने कहा कि जो मेटाबॉलिक कार्य करता है और फिर टॉक्सिक मटेरियल को भी ये बाहर निकलता है। अब टॉक्सिक मटेरियल में ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे भी हम लोग ले रहे हैं लगातार, उसे वातावरण में रह के खान पान से भी होता है।
0: तो ये जो प्रक्रियाएं यकृत के द्वारा की जाती हैं, उपापचय की प्रक्रियाएं, पाचन की प्रक्रियाएं और जो विष को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो किस तरीके से होती है?
1: देखिए, ये जो इसका जो फिजियोलॉजिकल है, मुख्य रूप से ये पित्त का निर्माण करता है और पित्त पित्त की थैली में, यहाँ से पित्त निकल के पित्त की थैली में जाता है। तो जो प्रोटीन हम खाते हैं अथवा फैट जो खाते हैं उसके पाचन में ये पाचक अग्नि के रूप में वो काम करती है, उसको पचाता है। और जो फिजियोलॉजिकली एक तरह से कहे कि इसका जो एक्शन होता है उसमें उसके द्वारा ये टॉक्सिक मटेरियल को जो है बाहर पसीना के रूप में ये निकालता है। यद्यपि अन्य जो वाटर डिजॉल्व मैटर है वो हमारे किडनी के द्वारा निकालता है, लेकिन यहाँ ही से शुरू होता है।
0: जी
1: एक तरह से ये कहिए कि टॉक्सिक मटेरियल को निकालने के ये कारखाना है, फैक्ट्री है। उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उसके द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस से बदलता है।
0: तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये यकृत है, इसको स्वस्थ रखने पर किन-किन बीमारियों से हम बच सकते हैं?
1: देखिए, पहले अस्वस्थ रहने की ही बात मैं आपको बताऊं, तब फिर स्वस्थ की बात बताएंगे। अस्वस्थ रहने से जैसे कि महत्वपूर्ण ये अंग है, जैसे ही लीवर आपका प्रभावित हुआ, चूंकि वो फैक्ट्री है, वहीं से सारा अंग आपका प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। चूंकि जो पाचन सही से नहीं हो पाया, पाचन जब सही नहीं हो पाएगा तो जो हमारे लिए एसेंशियल फूड मटेरियल है वो आत्मसात शरीर में नहीं हो पाएगा। जब आत्मसात शरीर में नहीं हो पाएगा तो जो हमारे शरीर को चाहिए, चाहे वो विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, जिस रूप में चाहिए नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है कमजोर पड़ते चला जाएगा। आप जॉन्डिस का नाम सुनते होंगे,
0: जी
1: यदि लीवर आपका इन्फेक्टेड हो गया, कमजोर पड़ गया, वो रस नहीं निकाल रहा है, तो जॉन्डिस आपका होगा। आप जानते होंगे हेपेटाइटिस
0: ए
1: ए
0: बी
1: बी
0: सी
1: सी, यद्यपि भी आपका ब्लड कंटामिनेटेड है लेकिन पहले लीवर को ही प्रभावित वो करता है। तो इस प्रकार से कई बीमारियां हो सकती है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है।
0: जी
1: अस्वस्थ रखने के लिए तो खान पान सुपाच्य भोजन, ऐसा भोजन हम लोग करें जो लीवर को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े। उसकी जो क्षमता है, सबके शरीर की लीवर की अलग अलग क्षमता होती है, जो जो उसकी क्षमता जितना वो पाचक रस निकाल सकता है उतना उसको निकलने दे, उसी के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। हरी साग सब्जी और खास करके दाल में मूंग की दाल बहुत ही स्वस्थ माना गया है। आप जो है नेनुआ, आजकल का बहुत ही कॉमन है, नेनुआ है, कद्दू है, परवल है, ये सब चीज़ का हम लोगों को सेवन करनी चाहिए।
0: मौसमी सब्जियां,
1: हाँ,
0: फल।
1: मौसमी सब्जियाँ बहुत ही बेहतर रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे शरीर में लीवर यानी यकृत की क्या भूमिका होती है, क्या अहमियत है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का और आकाशवाणी के श्रोताओं का भी।
2: लीवर यानी यकृत की अहमियत, इस विषय पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे चंद्रमणि भारती। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा अब यहीं समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें। इसके साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। और प्रातः 7:15 पर आप सुनेंगे शंभू राम और साथियों की आवाज़ों में कुछ बज़िका लोकगीत।

प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पेश होगा वंश प्रभात का गायन और 10:30 पर हमारा विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सुनेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे। आज सुनिएगा कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे विनोद कुमार और दिनेश कुमार मिश्र। और दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा।

0: रात 10 बजे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार का प्रसारण होगा और रात 10:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूं।

0: करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे इतना करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्र

0: संघ से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हालचाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और अपने स्क्रीन टाइम को कैसे कम करें। साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। सबसे पहले जानिए आज के दिन का इतिहास। श्रोताओ, देश दुनिया के इतिहास में 12 मई की तारीख कई अहम घटनाओं के लिए दर्ज है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिवस 1820 में आधुनिक नर्सिंग की नींव रखने वाली लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इटली में जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यही नहीं, ये वर्ष दो ये आज का दिन साल 2008 में चीन में आया विनाशकारी भूकंप आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। कुछ ही सेकेंड के भीतर धरती की तेज कंपन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल ली थी। इसके अलावा आज के दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं। 1949 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी

शताब्दी की। साल 2002 में मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में शांति समझौते की इच्छा जताई। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की। 1666 में पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। 1784 में पेरिस समझौता प्रभावी हुआ। अब कुछ महान हस्तियों के जन्म की बात करें तो 1865 में कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जो प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1895 में जे कृष्णमूर्ति, जो एक दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल और परिपक्व लेखक थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। 1933 में नंदू नाटेकर, जो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। 1944 में घनश्याम नायक, भारतीय फिल्म और टेलीविजन के अभिनेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। अब निधन की बात करें तो 1984 में धनंजय कीर, जो बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले साहित्यकार थे, उनका निधन आज ही के दिन हुआ। 1984 में अलकनंदा, जो नृत्यांगना थी, भारत की कथक नृत्यांगना थी, उनका निधन आज ही के दिन 1984 में हुआ। वहीं 1993 में शमशेर बहादुर सिंह, जो हिंदी के कवि थे, उनका निधन हुआ। 2015 में सुमित्रा भट्टाचार्य, जो बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ। तो ये थे इतिहास में आज के दिन का महत्व। आगे हम आपको बताएंगे स्क्रीन टाइम को कैसे कम किया जाए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं छोटी छोटी बातें फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। बोल हैं शैलेंद्र के, संगीत अनिल विश्वास का।

दोस्तों, बात स्क्रीन टाइम की करें तो हम में से ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम वाकई व्यस्त हैं या फिर अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हम ज़्यादातर समय अपने फ़ोन पर इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन पर अनावश्यक समय बर्बाद करना एक गंभीर आदत बन गई है जो मानसिक तनाव, नींद की कमी और कई सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। इस आदत को कम करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य अनावश्यक ऐप के नोटिफिकेशन को बंद करें, क्योंकि ये ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण होता है। स्क्रीन टाइम तय करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप्स के लिए समय सीमा निर्धारित करें। ग्रेस्केल मोड का उपयोग करें। ये स्क्रीन के आकर्षण को कम करती है जिससे लत भी कम होती है। होम स्क्रीन को व्यवस्थित करें। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स को हटा दें या उन्हें फोल्डर में छुपा दें। फ़ोन को खुद से दूर रखें, यानी सोते समय या काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें। फिजिकल अलार्म क्लॉक का उपयोग करें। समय देखने के लिए फ़ोन उठाने से आप अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, इसलिए घड़ी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना दुष्प्रभाव हो सकता है। शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, आँख में तनाव, गर्दन में दर्द और सिर दर्द जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये न सिर्फ इन परेशानियों से हमें घेर लेता है बल्कि मानसिक तनाव, एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और सामाजिक अलगाव भी होता है। परिवार और दोस्तों के साथ आमने सामने की बातचीत में कमी हो जाती है। तो इसलिए फ़ोन जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वहीं अगर इसका सदुपयोग ना करें तो दुरुपयोग करने पर हमारे जीवन पर इसका गलत असर पड़ सकता है। तो इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को कम करना ज़रूरी हो गया है।

0: सच है क्या जिंदगी ख्वाब है।
1: जागते रहो, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब पेश है कुछ बज्जिका लोकगीत।

शुभोराम और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कुछ बच्ची का लोकगीत। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वंश प्रभात का गायन राग अहीर भैरव।

0: वंश प्रभात का गायन अभी आप सुन रहे थे, राग अहीर भैरव। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: कहाँ चलती है, इधर तो
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है।

0: गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता

0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय

0: और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
5: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया

0: आज जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill a responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी

0: winds in various parts of the state during this period. And now for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. The Somnath Amrit Mahotsav is at the sacred Somnath Temple in Gir Somnath, Gujarat, finds prominent mention in most of the dailies this morning. The statesman, quoting Prime Minister Narendra Modi, says, Somnath Temple stands as beacon of unwavering faith, while the pioneer quotes him as saying, no power can bend India. Prime Minister Modi salutes scientists on National Technology Day, highlights push for self-reliant India, reports the statesman. Second day, Prime Minister makes austerity push, invokes COVID-era habits, leads the Indian Express. The Pioneer, in its editorial piece, says, rising crime against senior citizens. The paper elaborates that as India moves steadily towards becoming an aging nation, ensuring safety, dignity and emotional security for senior citizens must become a national priority. India, at present, is a young nation, but it is aging rapidly. By 2050, the country will have a significant elderly population. As the country progresses and new technologies emerge, they also have a downside. They are alienating a large section of society, senior citizens who find it difficult to cope with evolving technology and changing time. Suvendu government begins to implement key pledges, notice the Asian Age. New Delhi, all set for first summit of International Big Cat Alliance in June, writes the Economic Times. And finally, the Beatles' first official London museum, called the Beatles at 3 Savile Row, is set to open next year in the Mayfair building, where the band recorded its final album and played its last gig, reports the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मग़रिबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक्किदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान जर मुबादला बचाने के लिए अवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।

0: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: वजीर आजम ने कहा कि भारत बैरूनी मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर जर मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के 22 दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
0: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वजीर आजम ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कारपुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉक्टर शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के 4 अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये 4 काबिनी वजीर हैं, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेजबानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो जिला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्जाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकरूरी के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तजारत और सरमाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा।

0: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादला ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज़ मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज़ पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों के बजाय जंग के हालात और इकतसादी सूरत हाल पर मबनी है जिसे वॉशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इकतसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज्यादा ड्रोन्स और मिजाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के टाउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाकई हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
2: इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत देश के सभी नागरिकों को संसाधनों का संयमित और जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक संतुलन, ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फल स्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका की शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह

0: स्वीकार्य बताया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशी की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। प्रत्याशियों में जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू कुमार के साथ 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतों की गणना 14 मई को आरा में की जाएगी। ये सीट पूर्व MLC राधाचरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। प्रदेश में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान 30 जून तक चलेगा। श्री सिन्हा ने कहा कि किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए यह अभियान फिर से शुरू हो रहा है। कृषि विभाग के अनुसार फार्मर ID बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा के लिए या पंचायत के कृषि समन्वय से संपर्क कर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक 47,85,000 से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में इस वर्ष 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम देश में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के

0: समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
2: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में वृद्धि हुई है। इस अवधि में कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में पहली बार मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6 सितम्बर को होने वाली परीक्षा के 22वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इन रिक्तियों में मैथिली भाषा के लिए कोड 25 अंकित किया गया है। निगरानी विभाग ने वैशाली जिले के लालगंज अंचल में तैनात अमीन सुजीत कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अमीन जमीन की मापी और परिमार्जन के लिए रिश्वत ले रहा था। इधर निगरानी की टीम ने सीतामढ़ी जिले में पुपरी अंचल निरीक्षक कार्यालय के रीडर गोविंद कुमार चौधरी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कांड में नाबालिग का नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बक्सर से 2 समेत 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में बक्सर के विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को जमानत दे दी है। मुजफ्फरपुर के बालगृह से 10 बच्चे के फरार होने के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी तुषार कुमार ने जिले के नरौली स्थित बाल आश्रय गृह का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा गार्ड की लापरवाही का उजागर हुआ है। प्रशासन ने बच्चों की जल्द बरामदगी का दावा किया है। राजधानी पटना में 5 जुलाई से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग T10 का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने कल के ऊर्जा स्टेडियम में इस लीग के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। इस अवसर पर लीग के ब्रांड एम्बेसडर श्री तिवारी ने कहा कि इसके लिए 31 मई तक खिलाड़ियों का पंजीकरण होगा। वहीं 1 जून से 20 जून तक जिला स्तर पर खिलाड़ियों का ट्रायल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 28 जून को खिलाड़ियों की नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में आयोजित अंडर 20 पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप ए के मैच में बिहार ने आंध्र प्रदेश को 4-1 से पराजित किया है। इस मैच में बिहार की ओर से कप्तान मोहम्मद नसीम खान ने 2, निखिल कुमार और विजयन कुमार ने 1-1 गोल किया। बिहार का अगला मैच 15 मई को राजस्थान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार चिताया, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में एक। अखबार लिखता है, सरकार बोली घबराए नहीं, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है, 30 दिन में समाधान नहीं तो अफसर स्वतः निलंबित। दैनिक जागरण लिखता है, आज जारी हो सकता है CBSE 12वीं का परिणाम। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, CJI सूर्यकांत ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम, एक क्लिक पर मिलेगा केस का हाईकोर्ट से निचले कोर्ट तक का डेटा। आज अखबार का शीर्षक है, खत्म किया गया निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो का अलग कैडर।

और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर सीट के उपचुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। 6000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

किस्मत का करेंगे फैसला। प्रदेश में फॉर्मर आईडी बनाने के लिए आज से 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान। और मौसम विभाग ने आज पटना समेत प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: सुनकर हर्षित नहीं होता।
1: सुनिए, प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान

सामीन शिशिर पारखी की आवाज़ में इस गज़ल को आप अभी समाप्त कर रहे थे, और आज इसे यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, यानी सड़क की हिफाजत का आलमी हफ्ता। हम तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में सफ़र करते हैं, और सबसे हम मुख्तलिफ तरह की सवारियों का भी हम इंतखाब करते हैं, जिससे कि हमारा सफ़र बआसानी तय हो जाए और वक्त की बचत हो। लिहाजा हम तमाम लोग जिन सवारियों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी तेज़ रफ्तारी ही उसके मंजिल पे पहुंचने के लिए सबसे अहम मानी जाती है। लेकिन ये तेज़ रफ्तारी तब हमारे लिए बात से मुश्किल बनती है जबकि हम इस के दौरान सफ़र हादसे से दो चार हो जाते हैं। लिहाजा हम तमाम लोग इस बात को ख़ास तवज्जो के साथ ध्यान रखें कि हमारी सबसे जो कीमती शय है वो हमारी ज़िंदगी है, और इसकी हिफाजत हम तमाम के ऊपर फ़र्ज़ भी है। लिहाजा हम सड़क पे चलते हुए इस बात का ख़ासा ख्याल रखें कि हमारी सवारी के साथ किसी दूसरी सवारी का कोई तसादुम ना हो, कोई टकराव ना हो, और किसी दूसरे सवारी का हमारी सवारी के साथ भी कोई टकराव मुमकिन ना हो। यानी हम तमाम लोग जो सड़क पे चलते हैं वो अपनी अपनी जानों की, अपनी अपनी सवारियों की हिफाजत अगर करें तो इस तरह के हादसात टाले जा सकते हैं। सबसे शदीद तकलीफ दे बात होती है कि सड़क पे इंसान जब इन हादसों से दोचार होता है तो बहुत अजियत उसे होती है और वो जा बहक हो जाता है, यानी उसकी जान चली जाती है। और इन तादादों की जानिब अगर हम गौर करें तो ये हमें यकीनन डराने वाले हैं। लिहाजा सबसे अहम बात हमारा मंजिल मकसूद पे पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन उन तमाम तर ज़रूरियात से अवलीन

0: एनर्जी हमें हिफाजत को देना चाहिए, और इस सड़क के हिफाजत का जो आलमी हफ्ता है, इसमें आइए हम तमाम लोग इस बात का अहद करें कि अपनी हिफाजत के साथ अपने मंजिल मकसूद की जानिब जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी सबसे प्यारी और सबसे कीमती है और इसकी हिफाजत हम तमाम के ऊपर लाजमी है। आइए सामीन, इसके बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब आपसे मुतवज्जे हुए जाते हैं। लीजिए, आपके समातों के हवाले किए दे रहे हैं ये मुज़ाकरा, मुलाहिज़ा करें। पद्मश्री कलीम आजिज़ की हिमागीर शख्सियत शोराए गज़ल के दरमियान एक बुलंद मुकाम की हामिल है। उनके मखसूस अंदाज बयान की इनफरादियत, नगमगी, दर्द वलम का अक्स, गम जाना को गम दौरा के बतौर पेश करने का हुस्न दिगर तमाम शोरा की सफ़ों में भी उन्हें मुमताज़ करती है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ने कुल्लियात कलीम आजिज़ में ए अहले अदब आओ ये जागीर संभालो के उनवान से एक मजमून कलमबंद कराया है। इसमें कलीम आजिज़ की शायरी के मुतालिक बयान फरमाते हैं कि इतनी धुली हुई ज़ुबान, ये घुलावट, लबो लहजे का ये जादू जो सिर्फ़ इंतहाई खलूस से पैदा होता है, इससे पहले मुझे कभी इस मौजूदा सदी में देखने या सुनने को नहीं मिला। मैं उनका कलाम सुनकर खुद अपना कलाम भूल गया। इससे हमें कलीम आजिज़ की शायरी को समझने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। खुद कलीम आजिज़ का ये शेर, ये तर्ज ख़ास है कोई कहाँ से लाएगा, जो हम कहेंगे किसी से कहा ना जाएगा, या फिर ये शेर, तुझे संग दिल ये पता है क्या कि दुखे दिलों की सदा है क्या, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या। इस तरह की शायरी से कलीम आजिज़ लोगों को न ये के मुतवज्जा करते हैं बल्कि अपनी जानिब खींच लेते हैं। उनकी शायरी और उनके अंदाज बयान की नुदरत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, इसी नायाब और नादिर शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद इंकशाफात की गर्ज से हमने अपने स्टूडियो में आज एक मुज़ाकरा मुनक्किद किया है, जिसका उन्वान है पद्मश्री कलीम आजिज़ की शायरी और नसर में उनका रंगो आहंग। इसके लिए हमने जिन शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है वो आसमान उर्दू अदब के दरख्शां सितारे हैं और अपनी इल्मी अदबी कारकर्दगी के बास अदब के दामन को मालामाल कर रहे हैं। आपको इनसे मुतारफ करवा दें, ये हैं जनाब प्रोफेसर हामिद अली खां। आपका ताल्लुक बीआर बिहार यूनिवर्सिटी से है, फिलवक्त वहाँ आप प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं। दूसरी अहम शख्सियत जनाब सूरजदेव सिंह की है, आपका ताल्लुक पटना यूनिवर्सिटी से है, आप वहाँ सदर शोबा उर्दू हैं। सबसे पहले तो हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया जनाब,
0: और इस मुजाकरे में आपकी आमद का खैर मकदम करते हैं।
1: शुक्रिया
0: जनाब सूरजदेव साहब, हम आपकी जानिब मुखातिब हैं। अपने सामीन की खातिर आपसे ये जानना चाहते हैं कि कलीम आजिज़ की उमूमी शख्सियत के मुख्तलिफ अदबी गोशों की निशानदेही फरमाएं।
2: पद्मश्री कलीम आजिज़ साहब के मुतालिक आज हम लोग गुफ्तगू करने बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी पैदाइश जो कस्बा है तिलहारा कस्बा में हुआ, और जाहिर सी बात है तिलहारा की जो शिनाख्त है, जो पहचान है, बुद्ध मज़हब के ताल्लुक से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तारीखी नुक्ता नज़र से भी बेहद अहम रहा है। ऐसे मकाम से आपका सरोकार रहा है, और आप शायरी का मैदान हो या अदब का मैदान हो, अपना एक अलग मकाम इन्होंने बनाया। इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि आप दबिस्तान अजीमाबाद के मीर तकी मीर की हैसियत रखते हैं, और वही रंग मीर तकी मीर का जो अंदाज है, रंग है, लबो लहजा है, वो तमाम चीज़ें आपकी शायरी में, आपकी जो नसरी तहरीरें हैं, नज़में हैं, उन तमाम चीज़ों में मीर का रंग हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो उनकी अपनी एक शिनाख्त है, अपनी पहचान है, दामन पे कोई छीट ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तो ये इस बेबाकी के साथ जो है इस बात को कह जाना, हिम्मत और हौसले की बात, तो ये उनका अपना एक अंदाज था, उनकी अपनी एक शख्सियत थी।
0: जनाब हामिद अली खां साहब, अगर आप सूरजदेव सिंह की बातों में मज़ीद इजाफे की गुंजाइश पाते हैं तो इस मौजू पर अपनी राय का इजहार करें।
1: देखिए,

0: रहे हैं तो ये आपकी सादा लोही है, यानी आपका सपाटपन है। जबकि फनकार को तजिए के दौरान उसकी तमाम तर बारीकियों और वसतों को जहन में रखना चाहिए, और इनकी सहल पसंदी ही हमारे कारी को अक्सर कंफ्यूज कर जाती कि उनका इशारा किस तरफ है।
1: सामिन कलीमा, जिसकी शायरी के हवाले से आप ये मज़ाकरा समाप्त कर रहे थे, शुरका प्रोफेसर हामिद अली खान और प्रोफेसर सूरजदेव सिंह थे। आइए इसके बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब तो मुतवज्जे हुए चाहते हैं। लीजिए आपकी समातों के हवाले ये गज़ल किए दे रहे हैं आवाज़ पंकज उदास की है।

देवदास फिल्म का गाना सुनिए, पंडित बिरजू महाराज, कविता कृष्ण मूर्ति और माधुरी दीक्षित की आवाज़ों में।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रूपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का अगला गाना सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

0: स्वदेश फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे, हरिहरन और उदित नारायण की आवाज़ों में। बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत AR रहमान का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: श्रोता, अब पेश है हमारा खास पॉडकास्ट इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत सुनिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आज हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान आए हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके मुहिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सीनियर IPS ऑफिसर श्री विकास वैभव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: जी बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
2: जी हमारा भी सौभाग्य, हम गौरवान्वित हैं आपको हमारे स्टूडियो में पाकर। श्रोताओं हम बता दें, विकास वैभव जी 2003 बैच के IPS ऑफिसर हैं, वर्तमान में बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के एडवाइजर के पद पर पदस्थापित हैं आप। सर सबसे पहले हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन और आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई।
3: देखिए, मूल निवासी मैं बेगूसराय जिले के बीहट गांव का हूं। मेरे पिताजी भी इंजीनियर रहे और BIT सिंदरी से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं दी, तो इसीलिए मेरे जन्म के पश्चात बहुत स्थानों पर मेरा रहना हुआ। पिताजी की जहां जहां पोस्टिंग होती गई, गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, भोपाल, दिल्ली, पानीपत आदि स्थानों पर रहकर पढ़ाई की। लगभग 7 विद्यालयों में पढ़ना हुआ
2: जी।
3: सबसे अधिक यदि किसी विद्यालय में रहा तो बेगूसराय के सेंट पॉल स्कूल में क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक रहा। 9th में भोपाल में था और 10th, 11th, 12th दिल्ली में रहा। उसके पश्चात IIT कानपुर 97 से लेकर 2001 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की, और IIT से निकलने के तुरंत बाद सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ था, जिसके लिए 2002 वाली परीक्षा में 2003 में रिजल्ट आया और 60वां रैंक मिला, बिहार कैडर मिला इंडियन पुलिस सर्विस। तब से बिहार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
2: जी, BTech आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की IIT कानपुर से, उसके बाद फिर UPSC की परीक्षाएं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली?
3: देखिए, प्रेरणा तो मुझे लगता है बाल्यकाल में ही एक घटना हुई थी। बहुत पहले क्लास 7 में था, समस्तीपुर में एक जगह है पांडव स्थान
2: जी,
3: जहाँ ऐतिहासिक चीजें मिल रही थी और लोग लूट रहे थे। तो उससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन इन्हें रोकेगा, कौन समझाएगा। एक बालक के मन में भाव तो था लेकिन बालक के कुछ सुनने वाला नहीं था। लेकिन अगले दिन मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश लगा दिया है और उस समय धारा 144 लगी और पुलिस फोर्सेज आ गई, तो जो उत्खनन लोगों के द्वारा चल रहा था रुक गया। तभी कहीं ना कहीं मन में ये भाव आया था कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगा जिससे समाज में परिवर्तन में मेरी भूमिका हो। आगे चलकर पिताजी की पोस्टिंग जब भोपाल हुई, तब 9th में था, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। इस बात ने मेरे मन में बहुत गहरा आघात पहुंचा कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए अपमान का सूचक क्यों हो गया। और तब ही मन में मैंने एक संकल्प लिया था कि अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करूंगा जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, इसमें मेरी भूमिका हो। झटके और भी लगने थे, तो उसके बाद IIT की मैंने जब तैयारी की, पिताजी दिल्ली आ गए थे और IIT के पेपर 1997 में अगर आप याद करेंगे लीक हुए थे, उसने भी मेरे मन पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया कि जिस बिहार की भूमि ने कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को दिया, उपनिषदों की दृष्टि दी, वैसे बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हमारे छात्र शॉर्टकट्स के पीछे लगे हैं, लोग पेपर लीक कराने तक में लगे हैं। तैयारी मैंने दोबारा की, दोबारा परीक्षा हुई, सिलेक्शन हुआ, IIT कानपुर पहुंचा। पिताजी की पोस्टिंग फिर से हो गई बेगूसराय, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, फर्स्ट ईयर के बाद। और उस समय अंतिम जिसको कह सकते हैं, एक ऐसी घटना घटी, घर जाना था, सभी लोग तैयार थे, मेरी भी तैयारी थी, लेकिन घर से फोन आया उस समय कि बेगूसराय मुकामा में पकड़ के शादी होती है, तो इसलिए भी लगन का समय चल रहा है, कुछ दिन अब वही कैंपस में रही है। और इस घटना ने लगभग कुछ दिनों तक रहना पड़ा।

0: और बहुत उद्वेलित होता था, चिंतित होता था बिहार को लेकर। एक निर्णय मैंने लिया कि अपने जीवन में कुछ तो करना ही है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम सिविल सेवा हो सकता है, जिसमें कम आयु में एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में हम योगदान कर सकते हैं। बाद में IIT में कैंपस प्लेसमेंट मेरी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी हुई, जर्मनी के कंपनी में भी हुई, लेकिन मन निश्चित हो चुका था कि कुछ करना है और बिहार के वो बदलने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। तो सिविल सेवा की तैयारी मैंने IIT में ही प्रारंभ कर दिया था और निकलते ही मैंने परीक्षा दी, और उसी का नतीजा है कि IPS बना और किस्मत अच्छी थी, बिहार मिला, तो बिहार में सेवा देने का अवसर मिला।
1: आपके शिक्षा दीक्षा और आपके व्यक्तिगत जीवन से हमें ये पता चलता है कि सकारात्मक बदलाव लाने के ध्येय से आप सिविल सेवा में आए और बिहार का गौरव वापस करने, या कहें कि देश की सेवा के लिए, देश में, समाज में सुधार लाने के लिए आप इस सेवा में आए और लगातार उसमें आप अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम देखें कि 2003 में आप सेलेक्ट हुए और उसके बाद ASP, CTSP, सीनियर SP, फिर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी आपने सेवा दी, इसका कुछ अनुभव?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मन में भाव था समाज को कुछ देना है और एक बड़ा संकल्प था मन में, जिसके लिए आज भी काम कर रहा हूँ। तो बिहार में जो पोस्टिंग्स मेरी हुई, शुरुआत में जब आया था औरंगाबाद में ASP के रूप में पहली पोस्टिंग हुई,
1: जी
0: और 2005 के अंत में ASP दानापुर के रूप में पटना में पहली पोस्टिंग हुई थी। वहीं से CTSP पटना बने, फिर बगहा SP, रोहतास SP
1: जी
0: के रूप में पोस्टिंग हुई, जहाँ अपराध उग्रवाद से उलझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और उसको समाप्त करने के लिए मैंने प्रयास भी किए, जो सफल भी हुए। इसी समय 26/11 का अटैक हुआ था, जिसने मुझे बहुत उद्वेलित किया और मुझे लगा कि एक नई एजेंसी बन रही है NIA, जो आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करेगी, तो अच्छे पुलिस पदाधिकारियों को इस एजेंसी में जाने का प्रयास करना चाहिए। NIA बनने के कुछ दिनों बाद ही मैंने उसमें आवेदन दिया था। उस समय बिहार में चुनाव होने थे 2010 में, तो चुनाव के बाद 2011 में मुझे NIA के लिए रिलीज किया गया, और NIA के शुरुआती दिनों में NIA के संगठित करने में, उसके अन्वेषण में मेरी बड़ी भूमिका रही। उस समय के जो बड़े महत्वपूर्ण केसेस थे मुझे मिले और मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। NIA जाने के बाद पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में मेरी अनुभव, विशेषकर इंटरनेशनल लेवल की पुलिस में किस प्रकार से काम की जाती है, टेररिज्म के लिंकेजेस क्या हैं, कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, फंडिंग कैसे होती है, इन सभी विषयों पर अच्छी जानकारी मुझे मिली, जो मुझे लगता है प्रोफेशनली एज अ पुलिस ऑफिसर आई ग्रू। वहीं से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जब आया था तो पटना में पोस्टिंग हुई सीनियर SP के रूप में, जहां पहले ASP भी रहा था, CTSP भी रहा था, अब एक नई भूमिका में सीनियर SP के रूप में था। और उस समय बिहार में 2015 में चुनाव भी होने थे,
1: जी
0: तो शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, साथ साथ विधि व्यवस्था के संधारण के लिए भी मेरे द्वारा किए गए। उसके बाद एक वर्ष करीब ट्रेनिंग में पटना में ही रहा और पुलिस के प्रशिक्षण में मेरी भूमिका रही। फिर DIG बनने के बाद भागलपुर में लगभग 3 वर्ष DIG के रूप में, कुछ समय मुंगेर में भी रहना हुआ। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है,
1: जी
0: जो उस समय पहले बोधगया ब्लास्ट हुए थे 7 जुलाई को, उसके बाद पटना में भी ब्लास्ट हुए थे।
1: जी
0: उस समय NIA में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और पटना ब्लास्ट से पहले ही लगभग यूं समझे कि हम लोग बोधगया के ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे,
1: जी
0: और रांची के एक मॉड्यूल पर संदेह था, एक व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने वारंट भी प्रे किया हुआ था, और जब पटना ब्लास्ट हुआ तो लगभग वो संदेह पूरा यकीन में बदल गया और उसका अरेस्टिंग शुरू हुई। एक बड़ा मॉड्यूल समक्ष आया, उसमें अनेक युवक जो रांची के आसपास के रहने वाले थे, उनको जो उन्होंने अरेस्ट किया, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ और सभी टेररिस्ट पकड़े गए। बाद में उन केसेस का ट्रायल कराया गया, दोनों ही केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बोधगया ब्लास्ट में भी हुआ है और पटना ब्लास्ट में भी, कुछ लोगों को फांसी तो कुछ को उम्र कैद की सजा दी गई।
1: प्रशासनिक सेवा में रहकर और इतनी जोखिम भरी सेवा, इसमें जान जाने की भी संभावना रहती है और कई लोग, हमारे ऑफिसर शहीद भी हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं, किस प्रकार की दृढ़ शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है उसके
0: तो
1: अंदर?
0: मैंने कहा कि सेवा में आने का कारण एक संकल्प था कि
1: जी
0: बिहार में बड़ा बदलाव करूं, तो इसीलिए किसी भी संकट के लिए मैं तत्पर रहा, तैयार रहा, तो कभी उसे घबराने का भाव कभी मन में नहीं आया। कहा भी जाता है, द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर, तो पुलिस
1: जी
0: के जीवन
1: जी
0: में खतरा जो है वो तो उसका अंग है,
1: अंग
0: उसको लेके हम लोग चलते
1: जी
0: हैं, और
1: जी जी
0: कई अवसर आते हैं। मुझ पर भी गोलियां चली थी रोहतास में, बहुत नजदीक से, मुझे लगता है 6 इंच करीब से सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ फंसा। मन में यही भाव था कि मैं निमित्त हूँ, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, निश्चित ही सपना साकार होगा। बगहा से अपराध मिटा, रोहतास से उग्रवाद मिटा, तब मिटा जब लोग जुड़े, उस भाव के साथ जुड़े कि परिवर्तन संभव हो सकता है। आज पूरे बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसलिए चला रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि संकल्प तो बचपन से ही था कुछ करना है, लेकिन जो दो अनुभव बगहा में हुए, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे, पुलिस के अनेक ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर भी हुए, और लोग इस कदर हार मान चुके थे कि कहते थे महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वहां
1: जी
0: जब
1: जी
0: सोच को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया, गन्ना काटा, सरकार के खजाने में पैसे जमा हुए, जिस भूमि पर डकैत गन्ना लगाया करते थे, और एक एक परिवार से बात करने के बाद हमने यही कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर होते तो विश्व किस

0: वाल्मीकि को जानता है। तो इस बात ने बड़ा गहरा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क पर डाला होगा और उसी का नतीजा था लगभग 26 गैंग लीडर्स ने सरेंडर किया और जो अपराध 100-150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग के रूप में हुआ करती थी शून्य पर आ गई थी जब मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास में भी उग्रवाद चरम पर था। 2002 में DFO शहीद हुए थे, 6 में DSP शहीद हुए थे बिक्रमगंज में। अनेक घटनाएं बराबर होती थी, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे, लेकिन तब जब आदिवासियों के साथ हम लोगों ने संवाद किया और कहने लगे कि आपके पूर्वज अति यशस्वी थे तो आप में क्या कमी है, इस बात ने एक एक गांव में लोगों के मन में बड़ा प्रभाव डाला। और जब अपनी विरासत से अपनी संस्कृति से हम प्रेरित होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक बड़े परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। रोहतास में जितने भी आदिवासी युवक थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी, यह कहते हुए कि क्षेत्र की संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में असीम है और यदि क्षेत्र का विकास होना है तो शांति आनी चाहिए। नतीजा यह हुआ कि सभी गांवों में जिन युवकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी उन लोगों ने उग्रवादियों का विरोध किया और ऐसा विरोध किया कि उग्रवादियों को भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। जो अनुभव मुझे मिले उससे मुझे लगता है कि जब पूरे बिहार में हमारे युवा अपने विरासत से प्रेरित होंगे, यह देखते हुए कि बिहार वह भूमि रही है जिसमें जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न ऐसे सूचना के तंत्र थे, हम कुछ अलग कर रहे थे। अखंड भारत के साम्राज्य की रचना यहीं से हुई। जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी तब हम नालंदा और विक्रमशिला में ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पाए थे जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। गणित और विज्ञान का आधार जो शून्य है बिहार की भूमि पटना नहीं दिया। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली में जहां स्थापित हुआ केवल जाति के आधार पर लोग नहीं अपने गणराजाओं को चुनते थे, पूरे उस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर आते थे और बिना विवाद के अपने गणाधिपति का प्रतिवर्ष चयन करते थे। तो बिहार कुछ अलग भूमि थी। इसकी जब जड़ में जाता हूं क्यों ऐसा था, क्यों हम अलग हुए, तो मैं पाता हूं कि वेदों के जो उत्कर्ष वेदांत को इसी भूमि ने कभी प्राप्त किया था जिसमें दृष्टि यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जब व्यक्ति में इस प्रकार की दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश भी है और पूर्णता लिए हुए, तो ऐसा व्यक्ति जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेदों से परे सोचने लगता है और तब वह संभावना जगती है जहां व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पाते हैं। तो बिहार में जोड़ने की क्षमता थी, परे सोचने की क्षमता थी। जातियां प्राचीन बिहार में थी लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें कई बार आजकल हम संघर्ष करते हुए पाए जाते हैं, यदि प्राचीन बिहार में रहता तो मगध में नंदवंश का उदय संभव ही नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे होते। हम लोग अलग लोग थे जिनकी यदि आधार कहें तो वेदांत की उस बृहद दृष्टि में थी। इसीलिए आज मुझे लगता है जब उससे प्रेरित होकर हम योगदान करेंगे निश्चित बिहार बदलेगा।
1: जी, आपके बातचीत से हमें यह पता चलता है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से भी काफी प्रभावित हैं और वेदांत दर्शन की भी बात आप कर रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या समझे वेदांत दर्शन क्या है?
0: देखिये, जैसे वेदों में जो हम लोग पढ़ेंगे सारी ऋचाओं को देखेंगे तो हम पाएंगे हम कहीं ना कहीं उपासना भी कर रहे हैं, सभी के लिए कामना भी कर रहे हैं, लेकिन एक रहस्य के बारे में चर्चा होती जब है तब हम एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। चाहे नासदीय सूक्त हो उसमें भी हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना जिन्होंने की क्या उन्हें भी पता है कि उनकी रचना किसने की। वेदांत में जब हम पहुंचते हैं तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर इस रूप में मिलता है जब हम चार महावाक्यों को देखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। मतलब सृष्टि की जो मूल ऊर्जा है उसका एक अंश हर व्यक्ति में विद्यमान है और अपनी पूर्णता लिए हुए। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा है उसका अंश है। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि है जिसमें हर व्यक्ति उस सृष्टि के मूल तत्व से एकाकार समझने लगता है और इससे पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और इसमें जिन्हें हम कहीं दूर खोज रहे थे उनको अपने अंदर स्थित पाते हुए जीवन को देखते हैं। तो इससे एक तो एक व्यक्तिगत दृष्टि बदलती है, साथ में समाज में यदि इस प्रकार का भाव जगे तो समाज में भी जो भेदभाव हमें आपस में तोड़ते हैं, अलग करते हैं, वो मिट जाते हैं। तो बिहार में वेदांत की दृष्टि के कारण बहुत सारे अपवाद हम प्रस्तुत कर सके। आज भी मुझे लगता है कि यदि जो भेदभाव समाज में हमें भिन्नता की ओर ले जाते हैं वेदांत की दृष्टि के साथ यदि हम चलेंगे तो सभी भेदभाव मिट जाएंगे और एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।
1: स्थिति उत्पन्न, कोई भेद नहीं रहेगा,
0: कोई भेद नहीं रहेगा।
1: जी बिल्कुल, ये वेदांत दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, अद्वैत अभेद। इसके अलावा वेदांत के पहले भी जो चार पांच आस्तिक दर्शन थे क्या वो विलुप्त प्राय हो गए हैं या उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई अभी?
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रूप में अद्वैत ही है जो जिसने भारतीय संस्कृति को एक वैचारिक दृष्टि दी है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो बाकी ज्ञान परंपराएं रही हैं तो विलुप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। अभी भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उन पर चिंतन कर सकते हैं। अनेक ऐसे चिंतक आज भी आपको मिलेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो परंपराओं को लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि हम बात कहें तो कहीं ना कहीं पॉपुलर जो ट्रेडिशन है उसमें अद्वैत मूल में है लेकिन उसका एक अलग रूप हम देखने को पाते हैं। भारतीय संस्कृति को जो भी समझना चाहेंगे तो जो हमारे 6 दर्शन जिस प्रकार से बात होती है तो उसको आगे पढ़ेंगे तो हम अपना एनरिचमेंट तो करते ही करते हैं, साथ में विश्व को भी कुछ नया देने की दृष्टि ला पाते हैं। जो आपने बात पहले कही, ये कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था, जिसमें कि अलग अलग प्रकार से वेदों की यदि हम बात करें तो इवोल्यूशन होता गया, और वेदांत एक समय आया जब लगा इससे कुछ ज्यादा नहीं सोच

0: चल जा सकता है,
1: ज्ञान
0: ये उत्कर्ष प्राप्त हमने कर लिया।
1: जी
0: तो मुझे गर्व इस बात की होती है कि उस भूमि जहाँ वेदांत का दर्शन सिद्ध हुआ बिहार की भूमि रही, और इसी बात को मैं युवाओं को बार बार बताना चाहता हूँ कि जिस भूमि ने कभी वेदांत का दर्शन किया हो, विश्वविद्यालय देखे हो, उसमें आज भी बहुत कुछ करने की संभावना है, बशर्ते हम छोटे छोटे भावों से ऊपर उठकर शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने का प्रयास बिहार में करें।
1: जी,
0: आधुनिकता की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ साथ परंपराओं से जुड़े रहने की, अपनी परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि बाहर से हवा आ सके, लेकिन सतर्क ये रहना चाहिए, ध्यान ये रखना चाहिए कि हवा इतनी तीव्रता के साथ ना आए कि हमें उड़ा के ले जाए। तो मतलब है कि अपने अस्तित्व को समझते हुए बाहरी दर्शन को भी समझना होगा, और जो भी नए चीजें चल रही हैं, जैसे आज AI का युग है, डेटा एनालिटिक्स का युग है, तो हमें उसमें भी उत्कर्ष कैसे प्राप्त करें, उनका उपयोग कैसे करें, इस पर भी चिंतन करना होगा। लेकिन साथ साथ जो मूल तत्व हमारे संस्कृति के हैं उसको नहीं समझेंगे तो हम जो गहराई एक व्यक्ति में होनी चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
1: जी, अगर हम इसी क्रम में वैदिक गणित की बात करें तो वेदों में वो गणित और कई सिद्धांत ऐसे दिए गए थे जो आज भी प्रासंगिक हैं, और उनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक अच्छा कर सकते हैं। आगे हम वेदांत की ही बात करें, आपने महावाक्यों की बात कही है, तो थोड़ा विस्तार से, थोड़ी सरलता से हमारे श्रोता समझना चाहेंगे कि वो महावाक्य कौन कौन से हैं, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे।
0: देखिए, इसमें एक कहानी जो आती है उपनिषदों में, वो श्वेत केतु और उनके पिता उद्दालक जो महर्षि थे उनकी आती है। जब उद्दालक श्वेत केतु से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, और जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है, तो श्वेत केतु नहीं दे पाते हैं। उनको समझाने के लिए बताते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन को देखने पर जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है वो कहता है मिट्टी के बर्तन है, जिस प्रकार सोने के आभूषण को देखने पर व्यक्ति देखते हैं कहता है सोने के आभूषण है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है एक तत्व से बना है। जैसे मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बने हैं, सोने के आभूषण सोने से बने हैं, उसी प्रकार सब कुछ जो भी सृष्टि में है वो एक परम तत्व से बना है, और परम तत्व से ही तुम भी बने हो, तो तुम वही हो, तत्वमसि। उसी प्रकार से उस भाव को हम ये देखें तो अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी वही तत्व हूँ, उसी तत्व से बना हूँ। प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो मतलब जो मूल सृष्टि का तत्व है उससे हम अलग नहीं है, हम भी उसी से बने हैं। और जिस प्रकार जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तन को देखने पर कहता है ये मिट्टी का बर्तन है क्योंकि मिट्टी को जानता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो मूल तत्व को जानता है, वो किसी को भी देखेगा तो कहेगा ये भी तो उसी से बना है, उसमें कोई विभेद नहीं रह जाता। तो यही मूल रूप से वेदांत की दृष्टि है, जिससे हमारी पूरी संस्कृति अत्यंत प्रभावित हुई और एक वैचारिक उत्कर्ष की स्थिति बिहार ने पूरे देश को दी।
1: जी, यानी कि वेदांत में हम देखें तो ज्ञान की बातें, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो क्या वेदांत में भक्ति का भी कुछ स्कोप है?
0: देखिए, भक्ति जैसे वेदांत में गीता को भी उपनिषद का भाग माना गया है ना, तो गीता उपनिषद कहा जाता है, तो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म ज्ञान और भक्ति तीन मार्ग हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उसमें भक्ति वेदांत उस रूप में हम जानते हैं। उसमें बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उसको काफी और अगले स्तर तक ले गए, आज इस्कॉन मूवमेंट भक्ति वेदांत पर ही आधारित है।
1: जी, तो वेदांत में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का सिद्धांत समाहित है। वेदांत में आत्मा और मोक्ष की क्या अवधारणा?
0: देखिए, मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तो व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को समझ जाता है तो जान जाता है कि वो उसी पूर्णता को लिए हुए है और अंत में वही जाना है, तो ये जीवन की प्रासंगिकता है।
1: वेदांत की बात हम करेंगे आगे भी, आपने लेट्स इंस्पायर बिहार की चर्चा की, तो ये क्या मुहिम है, क्या ये अध्यात्म से जुड़ा है, क्या ये समाज सेवा से जुड़ा है, क्या शिक्षा से जुड़ा है?
0: देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रयास है एक विकसित बिहार बनाने का 2047 तक, ताकि विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। बिहार की क्षमता असीम है जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन इस असीम क्षमता के साथ यदि हम आपस में संघर्ष करेंगे तो जहां हम पहुंचना है नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये प्रयास है लोगों को प्रेरित करने का और उनको कहने का कि अपने अपने हिस्से के बिहार में जो भी प्रयास आप कर सकते हैं उसको हम करें। आज लगभग 360,000 स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिसमें लगभग 30,000 महिलाएं हैं, लगभग 25,000 उद्यमी हैं। इन सभी व्यक्तियों को जोड़ने से हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे प्रकल्पों का निर्माण का जिससे समाज को कुछ लाभ मिले। अभी बिहार के 18 जिलों में 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिनमें 2500 से अधिक ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से वंचित है अध्ययन करते हैं। इनमें से 28 केंद्र महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के नाम से संचालित है। इसी प्रकार स्टार्टअप्स की क्रांति बिहार में लाने के लिए अनेक स्टार्टअप्स को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, ताकि उनको हम समय समय पर सहयोग कर सकें, उनको मेंटोर कर सकें। लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ आज जुड़ी हैं। हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप 2028 के अंत तक स्थापित हो सकें जिनमें 100 लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो। इससे एक ऐसा बीजारोपण होगा जिससे बड़ी संख्या में हमारे युवा

0: स्टार्टअप्स की ओर आएंगे और इसी की आवश्यकता बिहार को है। आज स्टार्टअप्स को सफल बनाने के लिए एक इकोसिस्टम की भी आवश्यकता है, इसीलिए बिहार के जो बाहर लोग रहते हैं जिनका मूल बिहार से है, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है और बड़ी संख्या में आज बिहार के वैसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, बड़े महानगरों में रहते हैं, वो सक्षम है, इस अभियान के साथ जुड़े हैं। उनमें से 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने जब प्रेरित किया तो उनके द्वारा अपने गाँव में कुछ न कुछ योगदान किया जा रहा है। किसी ने लाइब्रेरी खोली है, किसी ने स्कॉलरशिप स्थापित की है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर लैब स्थापित किया है या अन्य किसी प्रकार से भी लोग योगदान कर रहे हैं। तो यही इस अभियान की दृष्टि है। तीव्रता के साथ बिहार बढ़े, लगभग 15% का ग्रोथ रेट आए और पर कैपिटा इनकम जो बिहार का सबसे भारत में कम है उसको हम अन्य राज्यों के स्तर तक ले जा सकें, अग्रणी ले जा सकें, यही इसकी दृष्टि है।
1: तो क्या जो युवा हैं बिहार के या जो बाहर जो प्रवासी हैं, क्या इससे जुड़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं?
0: देखिए 5 वर्ष हुए हैं और 3,60,000 लोग सीधे रूप में जुड़े हैं, तो अपने आप में बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बिहार को बदलते देखना चाहते हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम भी हम लोगों ने कि हजारों लोग आते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, तो ये सुखद संकेत है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं मुझे लगता है निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी।
1: लक्ष्य 2047 तक बिहार को
0: जी बिल्कुल पूर्ण विकसित बनाने का एक विजन डॉक्यूमेंट भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया, जिसमें समाज के हर अंग की क्या भूमिका होनी चाहिए इसको भी हम लोगों ने चिन्हित और रेखांकित करने का प्रयास किया है।
1: युवा कैसे जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ?
0: बहुत आसान है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका अपना वेबसाइट भी है, सोशल मीडिया के माध्यमों से भी जा सकते हैं, उसमें लिंक पर आप रजिस्टर करें, वेबसाइट पे सभी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी दिए हैं, उनको भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं।
1: जी, तो काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक ये मुहिम है और हम उम्मीद करते हैं कि काफी युवा इस मुहिम से जुड़ेंगे। हम बात करेंगे आपके हॉबीज के बारे में। आप जैसा कि हमने पढ़ा है आपके प्रोफाइल से कि आप इंडियन हिस्ट्री फिलॉसफी के मर्मज्ञ हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप ट्रैवलर भी हैं, बहुत ज़्यादा आप यात्राएं करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, और क्या कुछ खास, क्या गीत संगीत में भी कुछ रुचि है आपकी?
0: देखिए दर्शन में बहुत रुचि है, इतिहास में रुचि है, तो पढ़ता रहा हूँ बहुत। आज भी मेरे घर पे एक पुस्तकालय है जिसमें करीब 5,000 पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, तो जब भी समय मिलता है पढ़ता हूँ, भ्रमण करता हूँ, गीत संगीत भी यदा कदा सुनता हूँ। और यदि फेवरेट गाने की बात करें तो ए मालिक तेरे बंदे हम मुझे बहुत पसंद है, जो अक्सर सुनता हूँ और जब भी कुछ कठिन घड़ी आती है तो उसको पुनः सुन। मैं राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं में बराबर पढ़ता रहता हूँ, याद करता हूँ। एक कविता है, आशा का दीपक वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। इस कविता की पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया स्टूडेंट लाइफ से ही, और आज भी जब कुछ कठिन चुनौती सामने आती है तो कविता की पंक्तियों का स्मरण करते हुए स्वयं को संकल्पित करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो जीवन में हार्ड एस्पेक्ट्स भी हैं, सॉफ्ट एस्पेक्ट्स भी हैं, और सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए आगे बढ़ते जाना है।
1: जी, तो कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और आपकी पसंद का ये गीत ए मालिक तेरे बंदे हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: गीत संगीत के बाद श्रोताओं फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम है इनसे मिलिए पॉडकास्ट बातों बातों में। गीत के पहले हमने विकास वैभव जी से उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, आईपीएस रहते हुए उनके जो उपलब्धियां हैं, उनके संघर्ष के बारे में और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें की, काफ़ी प्रेरणादायी बातें हुई। आप लेट्स इंस्पायर बिहार का मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में भी बातें हुई। कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर जा रहा है। वापस हम वेदांत के ही सवाल से अंत करना चाहेंगे कि वेदांत में एक जगह कहा गया है कि औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार साक्षात या अपरोक्ष अनुभव के बिना ब्रह्म ब्रह्म कहने मात्र से कोई मुक्त नहीं हो जाता। तो ये एक मौलिक प्रश्न यहाँ ये उठता है, तो किस प्रकार जो है ब्रह्म का अनुभव किया जाए या जिज्ञासु कैसे शुरुआत करें?
1: देखिए, इसमें एक मंत्र, एक श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाना वृक्षम परिशोजाते। यानी एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी सब कुछ भोगता है और दूसरा पक्षी केवल दिखता रहता है। तो अपने जीवन में यदि हम इसकी कल्पना करें, तो जब हम कुछ भी करते हैं तो हम पाएंगे कहीं ना कहीं अंतर्मन हमें सचेत करता है जब कभी हम कुछ गलत करना चाहते हो। और यदि हमने कुछ गलत किया तो मन बार बार कहता है कि तुमने गलत किया है, तो जब सही करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो ये जो भाव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ये दूसरा पक्षी है जो कुछ ग्रहण नहीं करता, केवल देखता है, साक्षी भाव है। और वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में है। जिस दिन हमने उस साक्षी भाव को, उस अंतर्मन को एक प्रबल स्थान दिया, उसके हिसाब से हम चलने लगे, तो जीवन की संतुष्टि अपने आप और बढ़ जाएगी और जीवन हमारा सार्थक होगा। तो मूल रूप से इसी कल्पना को यदि हम, इस सामान्य सी जो बात हमारे अंतर्मन में कहता रहता है, अंतर्मन की हम सुनेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे।
0: जी बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को, हमारे युवाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समाज सुधारने के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, क्षमता हमारी असीम है, वेदांत की दृष्टि भी यही कहती है, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होते। तीन प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। तो आपके मन में यदि इच्छा है, निष्ठा है और आप प्रयास करते हैं, सफलता के लिए आवश्यक ये दोनों ही नहीं है। सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि हम दृढ़ संकल्पित हों, दृढ़ निश्चय के साथ हम प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति में कैसे भी विघ्न बाधा आए, हम रुके नहीं। मैं सभी से यही कहूंगा, पूरी परिश्रम के साथ सफल हो जाएं। और एक बार सफल हो जाते हैं, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो केवल स्वयं तक नहीं, थोड़ा अंशदान समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी जरूर दें, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा।
0: बिल्कुल, खुद सफल हों और लोगों को भी सफलता की ओर प्रेरित करें, यह आदर्श आपका है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे सीनियर आईपीएस श्री विकास वैभव। आज हमने इनसे कई आयाम, इनके जीवन के कई आयाम पर बातें की और काफ़ी प्रेरणादायक इन्होंने बातें हमारे श्रोताओं को बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहते हैं। विकास वैभव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, प्रेरणादायक संदेश हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार।
1: जी, धन्यवाद।
2: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विकास वैभव से सचिन कुमार की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही हमारा विशेष पॉडकास्ट इनसे मिलिए अब यही समाप्त होता है।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो?

0: दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
7: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
8: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
9: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं कुर्बान फिल्म के इस गीत के साथ, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

तमन्ना, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू की आवाज़ में। बोल हैं इंदिवर के और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना सुनिए। अलका याग्निक की आवाज़ में बोल हैं समीर के और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम का अगला गाना अलका याग्निक शान और साथियों की आवाज़ों में। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत अनु मलिक का। फिल्म का नाम है बधाई हो बधाई।

अब आइए सुनते हैं चित्रा की आवाज़ में ये गाना। फिल्म का नाम है तुम बिन। इस गीत को लिखा है फैज़ अनवर ने और धुन बनाई है निखिल विनय ने।

श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और अब आइए सुनते हैं बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनिए विनोद कुमार और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

0: अभी आपने विनोद कुमार और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे और उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: देवेश कुमार मिश्रा के गाए लोकगीतों को अभी आपने सुना। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम इसी के साथ अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोता सखियों को रेडियो सखी रंजना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सब अपने पसंद के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कपड़े हो, श्रृंगार हो, खान पान हो, और अपने सभी वो शौक अच्छे से खुशी से पूरा करते हैं जो हमको पसंद है। हम स्वयं में संतुष्ट रहें यह आसान है, सभी के लिए यह आसान नहीं होता है। हर इंसान अपने आप में खास होता है। किसी के रंग रूप, वजन, ऊंचाई, शरीर का माप तौल, इस तरह से कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारा या जो भी ऐसी महिला होती हैं उनके विषय में बाद में बुरी बातें करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। और ख़ासकर महिलाओं के लिए, ऐसे तो पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके पीठ पीछे भी और कभी कभी सामने भी। लेकिन जो ऐसा व्यवहार करते हैं, सोचिए उनकी सोच कैसी है, कितनी छोटी है, उनका आसपास के लोगों के साथ कैसा नज़र है, ये हमको पता चलता है। लेकिन ऐसा सुनना अच्छा तो नहीं लगता है, और इससे आत्मविश्वास भी कम होता है, मन दुखी होता है, और जो काम हम अपनी पसंद का करते हैं उसमें भी बाधा आती है। लेकिन तभी तो हमारी परीक्षा होती है, हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा होती है कि हम किस बात को कितना समझें और खुद पर विश्वास करना सीखें और अपने आसपास के लोगों को जांचना परखना भी सीखें। और ये तो बहुत ज़रूरी है। और आजकल बहनों, बहुत सारी महिलाएं हमारी सखियां हैं जो घर भी काम करती हैं, घर में भी, बाहर भी करती, या कहीं भी वो काम करती हैं तो दोनों जगह संतुलन बनाकर रखती हैं। घर के माहौल से तो वो परिचित होती हैं, लेकिन कार्यस्थल जहाँ वो काम करती हैं वहाँ उनके लिए कभी कभी माहौल उनके विपरीत होता है। वहाँ काम करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, उनको कम समझते हैं, कम आँकते हैं, उनके काम को कम आँकते हैं। तो ऐसे में माहौल अच्छा नहीं रहता है जहाँ हम काम करते हैं, और अपने घर से आकर एक बहुत लंबा समय भी हम काम के लिए देते हैं। तो यदि वहाँ माहौल हमारे अनुकूल नहीं है तो भी वहाँ पर अपने को व्यवस्थित करना मुश्किल तो होता ही है। लेकिन ऐसे जगहों पर जब हम कहीं कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा भी सुरक्षा के कई नियम बनाए गए हैं, और जो कानून बने हैं वो बहुत सख्त भी बने हैं, जिनकी मदद हम ले सकते हैं यदि हम अपने कार्यस्थल पर किसी के व्यवहार से परेशान हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है। वैसे तो जो जहां हम रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं वहां सब लोग सहपाठी होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से कोई एक नकारात्मक सोच वाला भी हो सकता है या हो सकती है। तो हम ऐसे में जो सरकार के कानून हैं उनकी मदद ले सकते हैं, और जो कार्यस्थल पर अन्य लोग हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। बस

ज़रूरत है, हमारी जानकारी कितनी है, हम जागरूक कितने हैं और मदद लेने में कितने सफल हो सकते हैं, ये सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है। और बहनों, गीत संगीत तो हमारा माध्यम है ही मनोरंजन का, चाहे मूड जैसा भी हो, आपके मूड का गीत संगीत सुन लीजिए तो आपका मन खुश भी हो जाता है।

सखियों, हम अपने पसंद का खाना खाते हैं तो हम कभी-कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं, और जो पसंद की चीज़ें होती हैं जब उसको आप देखेंगी भी तो आपके आँखों को अच्छा लगता है, जो हमारी आँखों को अच्छा लगता है वो हमारी आंतों को यानी पेट को

0: तो हम कभी कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं, और जो पसंद की चीज़ें होती हैं जब उसको आप देखेंगी भी तो आपके आँखों को अच्छा लगता है, जो हमारी आँखों को अच्छा लगता है वो हमारी आंतों को यानी पेट को भी अच्छा लगता है। और जब हम पसंद की चीज़ सामने रखते हैं किसी के भी, तो कहते हैं ना मुंह से लार टपक जाती है। तो ऐसे भोजन को हम आसानी से खा भी लेते हैं, वो हजम भी होता है। लेकिन एक ही भोजन, एक ही चीज़ खाने की, कोई भी वस्तु सबके लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। उसी से किसी को एलर्जी भी हो सकती है, जिसको हम फूड एलर्जी कहते हैं। ये कई तरह से होता है, कुछ लोगों को कुछ फलों से, कुछ को कुछ सब्जी से, किसी को किसी अनाज से भी एलर्जी होती है, किसी को दूध से, किसी को दही से, हम जान नहीं पाते हैं। और कभी-कभी तो एलर्जी हो जाती है लेकिन हम स्वयं भी नहीं जान पाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये क्या खाने से हमको ये परेशानी हुई। तो जिन लोगों को इस तरह की परेशानी होती है, फूड एलर्जी होती है, उनको जब आकलन करना पड़ता है तब उस समय पूरे दिन की दिनचर्या में, या हो सकता है 1-2 दिन बाद उसका असर हो, वो गौर करना पड़ता है। वैसे आजकल मेडिकल साइंस भी इतना आगे है कि फूड एलर्जी की जांच भी हो जाती है, उसमें कई तरह के फूड और कई चीज़ें लेकर उससे जांच की जाती है, जिससे पता चल जाता है कि आपको क्या एलर्जी कैसे है और उसका इलाज भी संभव है। बस जागरूक रहने की ज़रूरत है। और यदि हमको फूड एलर्जी होती है किसी खाद्य वस्तु से, फल से, सब्जी से, तो उसको अवॉइड करें, उसको ना खाएं, क्योंकि खाने की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यदि आपको एक चीज़ से एलर्जी है तो दूसरी चीज़ को पसंद करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी परेशानी बढ़ाए उसी को हम अपने शरीर में फिर से परेशानी के लिए डालें। तो इन बातों का ख्याल रखें। और अभी गर्मी का मौसम है तो ऐसे में तो मौसमी फल सब्जी हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी हैं, उनका सेवन करें। और मेरे को तो लगता है हमारी हर बहन अपने घर में अपना ख्याल भी रखती हैं, अपने पूरे परिवार के खान पान का ख्याल जरूर रखती हैं। तो अभी गर्मी के मौसम में ठंडा भोजन, बासी भोजन, या आजकल आम का सीजन भी आ गया है, तो ऐसे किचन में कभी-कभी हमारा किचन साफ सुथरा है लेकिन चींटियाँ बहुत आती हैं और मक्खी भी बहुत ज़्यादा। तो इन सब से बचाव के लिए हमारे जो किचन के खिड़कियाँ हैं उस पर जाली लगी हुई हो या बिल्कुल साफ सुथरा हो, वहाँ जरूर ध्यान दें, बार बार पोछा लगाती रहें। और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसको ढक कर रखें। पानी भी साफ है ये तो दिख जाता है, लेकिन उसको भी ढक कर रखना जरूरी होता है। साफ पानी का ही प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी में पानी से भी परेशानी बढ़ जाती है यदि दूषित पानी का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखें। और हम अपने कार्यक्रम में एक वार्ता सुनवाते हैं, सामाजिक उन्नति में परिवार की भूमिका। आशा विभावकर से हम ये वार्ता सुन लेते हैं।
1: एक स्वस्थ समाज की नींव अगर कहीं रखी जाती है तो वह परिवार है। एक सशक्त समाज के निर्माण में एक स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारी परिवार की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास भी है, और इन सभी की नींव परिवार में ही रखी जाती है। सर्वप्रथम परिवार व्यक्ति को मूल संस्कार देता है। जो जो बातें हम बचपन में सीखते हैं, जैसे ईमानदारी, सहयोग, सम्मान, अनुशासन, वही आगे चलकर हमारे व्यवहार में झलकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा अपने घर में बड़ों का सम्मान करता है तो वह समाज में भी हर व्यक्ति के प्रति आदर भाव रखेगा। परिवार ही एक व्यक्ति को यह समझाता है कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिम्मेदार है। बुजुर्गों के प्रति सेवा की भावना, गरीबों की मदद, सामाजिक नियमों का पालन, इन सभी बातों की सीख हमें परिवार में ही मिलती है। एक मजबूत परिवार व्यक्ति को बचपन से ही भाव

भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वह आगे चलकर आत्मविश्वासी बने। ऐसे व्यक्ति सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होते हैं और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। जबकि खराब वातावरण में पले बच्चे कई बार गलत रास्ते पर चले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज तथा परंपराओं को पहुंचाने का श्रेय भी परिवार को ही जाता है। इस तरह से परिवार समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करता है। दूसरा बेहद ही महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। एक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा परिवार में ही शुरू होती है। यदि हर माता पिता शुरुआत से ही बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं, घर का माहौल सही रखें, उनके साथ प्यार से पेश आए, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर न केवल सफल होते हैं बल्कि समाज के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज की सेवा करते हैं। तीसरा पहलू है कि परिवार सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। संयुक्त परिवार में रहने से व्यक्ति मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना और मिलकर समस्याओं का समाधान करना जैसी बातें सीखता है और परिवार की यही भावना समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। जैसे आज भी अगर गांव में किसी के घर कोई संकट आता है तो पूरा समाज उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। यह भावना परिवार से ही आती है। सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी परिवार से ही होती है। फिर चाहे वह स्वच्छता अभियान हो, बालिका शिक्षा हो या पर्यावरण का संरक्षण हो। उदाहरण के लिए, अगर हर परिवार अपने अपने घर में प्लास्टिक का उपयोग कम करे तो पूरा समाज पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक रहेगा। वहीं अगर हर परिवार में बेटा और बेटी को समान माना जाए तो समाज में भी समानता की भावना बढ़ेगी और भेदभाव कम होगा। चौथा पहलू है नैतिक मार्गदर्शन। आज की युवा पीढ़ी कई तरह की चुनौतियों और प्रलोभनों का निरंतर सामना कर रही है। ऐसे में परिवार के शिक्षित बड़े बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करते हैं, सही और गलत का अंतर बताते हैं, गलत रास्ते पर उनके कदम ना जाएं, इसके लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि यदि परिवार मजबूत होगा तभी युवा पीढ़ी भी मजबूत और सशक्त होगी। वर्तमान समय में मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जैसे बच्चों को सही दिशा दें और सही तथा गलत कंटेंट में अंतर बताएं। परिवार आर्थिक रूप से भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जहां जहां संयुक्त परिवार है वहां संसाधनों का सही उपयोग होता है जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता है और ऐसे परिवार खूब तरक्की करते हैं। और जब परिवार की तरक्की होगी तो सामाजिक उन्नति होना भी स्वाभाविक है। यहाँ पर मैं भारत के एक ऐसे परिवार का उदाहरण देना चाहूंगी जिनकी सफलता के पीछे आपसी सहयोग और एकता की भूमिका बहुत बड़ी रही है और वह प्रसिद्ध उदाहरण है अंबानी परिवार। स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी जी ने एक छोटे से व्यवसाय से अपने काम की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी अपने काम में शामिल किया। परिवार के आपसी सहयोग और कठिन मेहनत से आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। आज भी इनका परिवार मिलकर व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है जिसमें नई पीढ़ी भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जिस परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, कोई समस्या आने पर मिलकर उसका सामना करते हैं, एक लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं, तो ऐसे परिवार अपने साथ साथ पूरे समाज और देश को भी आगे बढ़ाते हैं। और कहते भी है ना कि जिस घर में प्रेम की डोर से परिवार के सभी सदस्यों के दिल जोड़े होते हैं वही परिवार तरक्की करता है और सफलता की ऊंचाइयों पर जाता है। पांचवा पहलू है कि परिवार महिला सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाता है। परिवार में जब बेटियों को बेटों के समान अवसर दिया जाता है, उनके शिक्षा और उनके सपनों का समर्थन किया जाता है, तो ऐसी बेटियां समाज में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं और देश के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, किरण बेदी जी,

0: मैरी कॉम, पीवी सिंधु, निर्मला सीतारमण जी, ऐश्वर्या राय और भी बहुत सारी बेटियों से हमारा देश भरा पड़ा है, जहां बेटियों ने अपने परिवार के सहयोग से बड़ी सफलता प्राप्त की और विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन किया। यहां मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि जब एक साधारण किसान का बेटा अपने माता पिता की प्रेरणा और सही संस्कार को पाकर अधिकारी बनता है, तो वह न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करता है। उसी तरह अगर कोई परिवार समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, तो वह परिवार समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक प्रगति का मार्ग परिवार से होकर ही गुजरता है। यदि हर परिवार अपने बच्चों को सही परवरिश, सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और व्यवहारिक ज्ञान दे, यानी कि अपने कर्तव्यों को समझे, तो समाज अवश्य ही प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। एक सशक्त परिवार ही एक सशक्त समाज का निर्माण करता है, क्योंकि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि मूल्यों, संस्कारों और जिम्मेदारियों का सुंदर संगम भी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर अपनों का साथ नहीं मिले तो सारी खुशियां अधूरी लगती हैं, पर जब साथ हो परिवार का तो लंबी दूरी भी छोटी पड़ जाती है।
1: अभी हम वार्ता सुन रहे थे आशा विभाकर से। वार्ता का विषय था सामाजिक उन्नति में परिवार की भूमिका, और सचमुच हर परिवार में ये भूमिका हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका को यदि अच्छे से हम पूरा करते हैं और वो करते भी हैं, तभी परिवार की खुशहाली बनी रहती है। और परिवार जब खुशहाल होता है तो सहयोग हमारा समाज में भी उतना ही मजबूती से होता है। और सखियों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू साहित्य के ऐसे महान लेखक जिन्होंने समाज की सच्चाइयों को बिना डर और बिना लाग लपेट के दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने लेखन में इंसानियत, महिलाओं की पीड़ा, समाज की सोच और विभाजन के दर्द को गहराई से दिखाया, और उनका नाम है मंटो। इनके साहित्य के विषय में हम जानते हैं, उन्होंने लिखा है जिन पर वो खुलकर बातें करते हैं, डरते भी नहीं। उन्होंने महिलाओं की भावनाओं, संघर्षों और समाज द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को अपनी कहानियों में जगह दी है। उनकी रचनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हर इंसान सम्मान और बराबरी का हकदार होता है। मंटो साहब ने अपने शब्दों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, और कलम वही जो सच लिखे, जो दर्द दिलों का कह जाए, इंसानियत के दीप जलाकर अंधेरों में रोशनी फैलाए, यही उनका कथन भी है। मंटो साहब के कुछ कटु कथन भी हैं जो हम अपनी सखियों से साझा करते हैं। और सखियों, ये बातें हम इसलिए भी करते हैं तो इस तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि कुछ साहित्यकार, कुछ लेखक ऐसे हैं जिनको हम यदि पढ़ते हैं तो उनकी रचनाएं, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास बिल्कुल हमारे परिवार समाज के इर्द गिर्द ही निर्भर करती है, उसी पर आधारित होती है। इंसान, उनकी कथन है, कटु कथन उनके हैं, इंसान को सिर्फ इंसान होना चाहिए, यही सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वे इंसान के अंदर ही पैदा होती हैं। सच लिखना आसान नहीं होता, लेकिन सच छुपाना उससे भी कठिन है। हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों ही होते हैं। औरत केवल शरीर नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का नाम है। समाज वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन लेखक वही लिखता है जो सच हो। ये हैं मंटो साहब के कुछ कटु कथन। तो आपको सुनकर भी लग रहा होगा कि हम भी इनके साहित्य को पढ़ें, उनकी कहानियों को पढ़ें। तो बस सखियों, इसके लिए हमको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम आजकल सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आपकी जो पसंद है, आप जिस साहित्यकार को, जिस लेखक को, जिस कहानीकार को पढ़ना चाहते हैं, उनकी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, उनकी जीवनी पढ़ना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से वो पढ़ सकती हैं।

तो हमको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए, हमारे लिए एक समय अच्छा बीते ये भी सहयोगी होता है, ऐसे रचनाओं को पढ़ने से ज्ञान भी होता है और मनोरंजन भी होता है, और एक मनोरंजन गीत संगीत से भी होता है।

0: जुड़े रहते हैं। और आज कार्यक्रम से हम विदा ले रहे हैं, रंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: श्रोता सुन रहे थे
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
2: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: समा आप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम अक्षयवट के अंतर्गत सुनिए वार्ता, जब वृद्धाश्रम का करना हो चुनाव विषय पर सुनिए ये वार्ता। वार्ताकार हैं ज्योति सन्हा।

वृद्धाश्रम यानी बुजुर्गों के रहने का नया ठिकाना, वो स्थान जहां हमारे बुजुर्ग अपने परिवार, अपने बेटे बेटी, अपने पोते पोतियों से अलग रहने को मजबूर हैं। आजकल का एकल परिवार वृद्धाश्रम के उद्भव का कारण है। जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवार छोटी इकाइयों में बट रहा है। आजकल की युवा पीढ़ी ज्यादा पैसा कमाने और बेहतर मुकाम पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं और रात होने पर घर लौटते हैं। फिर दिन भर की थकान मिटाने के लिए या तो आराम करते हैं या मनोरंजन करने के लिए टीवी या मोबाइल का सहारा लेते हैं। ऐसे में घर के बुजुर्ग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। सारा दिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। शाम को जब बेटे बहू घर लौटते भी हैं, तो उनके पास अपने माता पिता के पास बैठने का समय ही नहीं होता। ऐसे में बुजुर्ग कुंठित हो जाते हैं। उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। पारिवारिक उपेक्षा को बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी है। आजकल के ज्यादातर लोग अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। उन्हें वृद्धाश्रम भेजकर वो एक स्वच्छंद जीवन जीना चाहते हैं। यही कारण है कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रमों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके इन सब के अलावा कई बार

बुजुर्ग खुद ही अपने लिए वृद्धाश्रम का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि प्रवासी बच्चों के माँ बाप अर्थात जिनके बच्चे विदेशों में बस गए हैं, वैसे माँ बाप के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में वो वृद्धाश्रम जाना ही बेहतर समझते हैं। कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, हर महीने उन्हें ढेर सारा पेंशन भी मिलता है, लेकिन उनके बच्चे उनका जीना मुहाल कर देते हैं। वो अपने बच्चों से तंग आकर स्वयं ही वृद्धाश्रम का में चले जाते हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों की देखभाल का प्रबंधन अब पेशेवरों या संगठनों द्वारा संभाला जाने लगा है। उन्हें सरकारी या स्थानीय परोपकारी व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि यदि वृद्धाश्रम को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो उनके चुनाव में किन किन बातों को ध्यान रखा जाए। सबसे पहले तो ये देखना है कि वृद्धाश्रम साफ सुथरा और हवादार हो, कमरे में धूप और हवा आती हो, अर्थात कमरे में खिड़कियां हो, बाहर में छोटा सा लॉन या मैदान हो जहां बुजुर्ग ठंड में धूप का आनंद ले सकें और सुबह शाम टहल सकें, शौचालय साफ सुथरे हों, किचन जहां भोजन बन रहा है वहां सफाई हो, हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा हो, क्योंकि बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे में साफ सुथरे ढंग से भोजन का बनना आवश्यक है। साथ ही कम तेल मसाले में हरी सब्जी दाल वगैरह वृद्धों के लिए सही रहता है। वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हर वृद्धाश्रम में एक डिस्पेंसरी का होना जरूरी है जहां वृद्धों का रूटीन चेकअप किया जा सके, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज देखने को मिलता है, उनका वहां जांच हो सके। इसके अलावा बुजुर्गों में होने वाली आम बीमारी जैसे दस्त, बुखार इत्यादि का इलाज तुरंत हो सके, तथा हर कुछ दिनों पर डॉक्टर द्वारा हर बुजुर्ग की जांच की सुविधा हो। इन सब के अलावा यदि किसी वृद्ध की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो उसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सुविधा हो। वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों के मनोरंजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन्हें अकेलापन महसूस न हो। जैसे वृद्धाश्रमों में टीवी लगा होना चाहिए जिससे बुजुर्गों को दीन दुनिया की खबर मिलती रहे, खेल प्रेमी मैच का आनंद उठा सके, तथा कुछ इंडोर गेम जैसे चेस, कैरम बोर्ड, लूडो आदि की सुविधा हो। यदा कदा उन्हें बाहर घूमने के लिए भी ले जाया जा सके, धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल में ले जाने की सुविधा हो। वृद्धाश्रम का चुनाव के पहले ये देखना अति आवश्यक है कि वहाँ के व्यवस्थापक का व्यवहार कैसा है, वो बुजुर्ग के साथ आत्मीयता से पेश आते हैं या नहीं। वहाँ के व्यवस्थापक की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो बड़े बड़े फील्ड के माननीय लोगों को जैसे सिंगर, पेंटर, खिलाड़ी इत्यादि को वहाँ बुलाकर बुजुर्गों से उनकी मुलाकात कराएं। इसके अलावा वृद्धों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है, यदि उन्हें अनाथ आश्रम की सैर करवा दी जाए तो उनका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उन बच्चों में अपने पोतिये पोतियां भी दिखाई देंगे। हर बुजुर्ग किसी न किसी काम में निपुण होता है। अपनी जवानी के दिनों में वो जो काम करते हैं उनका खासा अनुभव उन्हें होता है। अगर उनको उसी काम से जोड़ा जाए तो बुजुर्ग में नई स्फूर्ति का संचार हो जाएगा। जैसे जिन्हें अकाउंट का काम आता हो उनसे अकाउंट का काम लिया जाए, जिन्हें प्रशासकीय अनुभव हो प्रशासन का काम में उन्हें जोड़ा जा सकता है। ज्यादातर महिलाएं सिलाई कटाई के काम में या अचार पापड़ बनाने के काम में निपुण होती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर उनका इन सब कामों में मार्गदर्शन लिया जाए जिससे उनके अनुभव का फायदा उठाया जा सके। वृद्धाश्रमों में यदि वृद्ध की संख्या को सीमित कर या कम कर दिया जाए तो सभी वृद्धों की देखभाल एवं स्वास्थ्य का उचित ढंग से जांच किया जा सकेगा। वृद्धाश्रमों में स्वतंत्रता एवं मैत्रीपूर्ण माहौल हो
जिसमें बुजुर्ग सहज महसूस करें, दूसरे

बुजुर्गों के पास बैठकर अपनी बात कह सकें और उनकी बात सुन सकें। वृद्धाश्रम का प्रबंध संभालने वाले या उनकी देखरेख करने वाले लोग बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ सलीके से पेश आएं, वहां के काम करने वाले लोगों में सेवा भाव हो जिससे बुजुर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हम अक्सर पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को, अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी इतिहास एवं संस्कृति के भंडार हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी पुरानी पीढ़ी को सम्मान दें, आदर करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने जीवन को समृद्ध करते हैं और एक करुणामय समाज का निर्माण करते हैं।

0: जब वृद्धाश्रम का करना हो चुनाव विषय पर ज्योति सिन्हा की वार्ता आपने सुनी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद देशभक्ति गीत सुनेंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: देशभक्ति गीत अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्मी नगमे, कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत।
1: अरे
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म काला पत्थर में। शायर की रचना थी राजेश रोशन का संगीत। और अब लता मंगेशकर किशोर कुमार को एक बार फिर से सुनिए फिल्म दूसरा आदमी में। मजरू के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन का है।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी में, और अब किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में हम एक गीत

किशोर कुमार, लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म दूसरा आदमी में, और अब किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में हम एक गीत सुनवा रहे हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म स्वर्ग नरक से। आनंद बख्शी की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

0: स्वर्ग नरक फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आनंद बख्शी की रचना, राजेश रोशन का संगीत। एक अंतराल के बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना। जॉनी आई लव यू फिल्म से ये नगमा हमने आपको सुनवाया। आनंद बख्श के बोल, राजेश रोशन का संगीत, और अब लता मंगेशकर किशोर कुमार को एक बार फिर से हम सुनवा रहे हैं। गीत लिया है फिल्म निशान से। गुलशन बावरा के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: फिल्म निशान में भी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाश।

आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एनटीए ने बताया कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जाँच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी तथा जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्वा सरमा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए दोनों जिलों में 25 बूथ बनाए गए हैं। इनमें भोजपुर में 14 और बक्सर में 11 बूथ हैं। उपचुनाव में 6,000 से अधिक मतदाता 6 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। मतों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून के आगमन की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इस बीच विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर

0: धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए 3 मई को मुनक़दा नीट UG इम्तहान मनसूख करने का फ़ैसला किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह फ़ैसला तलबा के मफाद और कौमी इम्तहान निज़ाम पर भरोसे को बरकरार रखने के पेश नज़र लिया गया है। NTA ने बताया है कि हुकूमत ने पेपर लीक होने के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात के लिए मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के सपुर्द करने का फ़ैसला किया है। एजेंसी का कहना है कि वो CBI के साथ मुकम्मल तआवुन करेगी और तहकीकात के लिए ज़रूरी तमाम मवाद, रिकॉर्ड और मदद फराहम करेगी। NTA ने मज़ीद कहा है कि इम्तहान के लिए नई तारीख का ऐलान अलग से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और मई के लिए मुंतखब करदा इम्तहान मराकज़ तब्दील नहीं होंगे और दोबारा इम्तहान में वही इस्तेमाल किए जाएंगे। एजेंसी के मुताबिक दोबारा इम्तहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी और कोई इजाफी इम्तहान फीस भी नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी बार असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में मुनक़दा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ 4 दीगर अरकान असम्बली ने भी बतौर वजीर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत BJP की हुकूमत वाली दीगर रियासतों के वज़ीर आला भी तकरीब में मौजूद थे। बिहार कानून साज कौंसिल के भोजपुर बक्सर मकामी अथॉरिटी के ज़िमनी इंतखाब के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोटिंग जारी है। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए दोनों अजला में 25 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 14 भोजपुर में और 11 बक्सर में वाक़े हैं। इस ज़िमनी इंतखाब में 6,000 से ज़ायद वोटर्स 6 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। वोटों की गिनती 14 मई को आरा में की जाएगी। आज आलमी यौम नर्स है। ये दिन जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के यौम पैदाइश की मुनासबत से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल। ये दिन मरीजों की देखभाल, समाजी सेहत और मुआशी तरक्की में नर्सों के अहम किरदार के एतराफ़ और उनके एहतराम की अलामत है। इस मौके पर वजीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद JP नड्डा ने नर्सों को मुल्क के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी और उम्मीद का सुतून करार दिया। नर्स डे के मौके पर राजधानी पटना समेत रियासत भर में कई प्रोग्राम मुनक़द किए जा रहे हैं। साबिक वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर रहनुमा बागी कुमार वर्मा का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 77 बरस थी। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। उनके इंतकाल पर वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, असम्बली स्पीकर प्रेम कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। मारूफ ज़रई साइंसदान और पद्मश्री एवार्ड याफ्ता गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में इंतकाल हो गया। वो गुज़श्ता चंद दिनों से बीमार थे और उनका पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के बाशिंदा थे और उन्होंने लीची को फ़रोग देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनकी मौत पर समाज के मुआज़्ज़िज़ लोगों ने गहरे सदमे का इजहार किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में मानसून की आमद के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک جنوبی بنگال کے خلیجی حصے میں مانسون دستک دے سکتا ہے۔ اسی دوران محکمہ کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے شمالی حصوں میں زیادہ تر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورنیہ کے امور میں سب سے زیادہ 26 ملی میٹر

0: बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आलोक में 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 31 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। नोट करें पता www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSC अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.bpsc। कृपया पुनः सुन लें www.bpssc.bihar.gov.in। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी अंतिम तिथि है 19 मई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.crpf.gov.in। पता एक बार फिर से बता रहे हैं www.crpf.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के

0: लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकें।

0: कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था।

0: इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ओआरएस बहुत लाभकारी होते हैं
1: जी।
2: और हाँ,

0: कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों
0: हम्म।
1: और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहनें क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आओ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर

0: एक छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए
0: हाँ
1: काका।
0: हाँ डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ हाँ चलिए चलिए।
0: हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई? अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
2: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
2: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई,
0: हाँ
2: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये
0: हाँ
2: इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
2: और विद्या बेटी,

0: अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
0: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी।
0: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
0: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई, अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
1: जी।
0: भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
2: जी।
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो?
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
7: इन्हें हमारा सलाम।
6: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
8: साथियों नमस्कार।

0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
1: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
1: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट

0: कंटेनमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
2: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: ये था प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम।
4: कहाँ चलती है?
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया कि जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती हैं, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है। ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकाल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं।
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, 4 शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
0: यानी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं।
0: जी, और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है,

0: फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में,
1: जी
0: जो कि एक महिला उद्यमी हैं, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली है।
1: जी आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर, ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं, कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है, और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की, पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके, ताकि जो भी

0: छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं। और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
0: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है
1: जी।
0: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है।
1: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
0: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
1: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है।
0: हाँ।
1: भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना।
0: हाँ।
1: है ना, कई बार ऐसा होता है।
0: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है, जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती हैं।
1: बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा, उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं।
1: सही के बाहर
0: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम। एक बार फिल्म से ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और

0: शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय, ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं, और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँचाई है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी।
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज

0: डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
2: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
2: क्या बात है।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये मतलब ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
2: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
2: और वनीता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
1: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
2: जी।

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की एक लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सोनार की एक लोहार की, ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये

0: मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अभी
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन हो जाते

0: होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है, बच्चों और परिवार का, कोई कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय।
1: वो भी, और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, जब
0: हाँ
1: उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज़ को आप छुपा दीजिए कहीं और फिर
0: हाँ
1: उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज़ ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मज़ा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किस्से कहानियां सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह
1: बिल्कुल।
0: से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी,
1: वो
0: और
1: जो
0: महिलाओं को
1: पुरानी
0: मदद भी
1: छुरी जो
0: मिलेगी।
1: होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए,
0: जी
1: आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये
0: जी
1: आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब
0: जी
1: बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े
0: आप
1: खेल खेलते हैं वो लोग।
0: छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे उसे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के
0: जी
1: खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के, जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा
0: जी
1: सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते
0: हाँ
1: हैं। उनके हाथ की उगी हुई जब चीज़ें होंगी ना, तो बड़े, वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा हो
0: इसी
1: रहा है।
0: तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे, तो उसे किस तरह से बचाना है, वो बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी
0: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से विविध

0: भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गाँव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
0: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
1: और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे
1: जी,
0: बहुत शरारती रहे
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूम कर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाज़ारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने

0: बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे ख़त्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से

0: अनाउंसर नौकरी मिली
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता जी, है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था, साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन लो। बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी,
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना। हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: सर, 2 लाख क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से

0: ड्रग्स मिले।
1: अरे
0: काट दिया।
2: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
2: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उड़ान वही भरते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। उड़ान वही भरते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। युवाओं की पहचान ही उनकी सोच और उनकी उड़ान होती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना, आपका सबसे खास कार्यक्रम युववाणी, जहां बात होती है जोश की, जुनून की और आपके सपनों की।
6: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त भारती।
5: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रफत। और हम दोनों मिलकर लेकर आए हैं आज का शानदार, दमदार और ज्ञान से भरपूर एपिसोड, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को ऊर्जा से भर देगा।
6: बिल्कुल, सबसे पहले UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक यानी सड़क सुरक्षा पर दुनिया भर में जागरूकता, जानेंगे कि कैसे बचें उनसे और अपनी और दूसरों की जान कैसे बचानी है।
5: फिर इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ पर बात करेंगे, पौधों की सेहत हमारी सेहत, थोड़ा हरा भरा रहना है तो रुकिए।
6: बिल्कुल, और इंटरनेशनल नर्सेस डे पे भी हम बात करेंगे, वो हम हमारे लिए देवदूत ही तो है, उन देवदूतों को सलाम करेंगे जिन्होंने कोविड हो या कोई भी बीमारी हो मुस्कान के साथ हमारी देखभाल वो करते हैं।
5: और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर एप्रिसिएशन डे, जो हमारे दिमागी तनाव को समझते हैं उनको भी देंगे दिल से थैंक यू।
6: और हाँ, आज मंगलवार है रफत, तो मनोबल मंगलवार में सुनिए आज एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको एक बार फिर उठने का मौका देगी।
5: साथ ही होंगे अमेजिंग फैक्ट्स जिनके सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, और बीच बीच में बेहतरीन, दिल को छू लेने वाले गाने, पुराने भी नए भी, मगर हर गाना जज्बातों वाला होगा। तो लगाइए सीट बेल्ट, पास रखिए एक पौधा और तैयार हो जाइए भावनाओं के इस सफर पे। तो सुनते हैं आपको आज का

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कुणाल गांजा वाला की आवाज में कृष्ण फिल्म से ये प्यारा सा गाना।
1: दोस्तों, सड़कें केवल कंक्रीट और डामर की पट्टियां नहीं हैं, वे किसी भी देश की जीवन रेखाएं होती हैं। इन्हीं सड़कों पर लोग स्कूल जाते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, बीमार को अस्पताल ले जाते हैं, सामान ढोते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते हैं। लेकिन जब यही सड़कें हादसों का अड्डा बन जाती है, तो ये जीवन लेने वाली जाल में बदल जाती है। यहीं पर आता है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। अब हम पहले जानते हैं कि यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की आवश्यकता क्या है। एक वैश्विक पहल जो हर साल लाखों लोगों को सड़क हादसे से बचाने का संदेश देती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा रफत। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक क्या है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2015 में पहली बार ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल मई के दूसरे सप्ताह में ये अभियान पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना नहीं है दोस्तों, बल्कि सरकारों, पुलिस, स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों और ज्यादातर आम नागरिकों को जिम्मेदारी देना है कि सुरक्षा सड़कों को सुरक्षित बनाना हम सबका साझा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल भारती, यह सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों और चोटों को आधा करना है। बिना आंकड़ों के इस समस्या की गंभीरता को समझना मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार
0: हर साल दुनिया भर में लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, यानी हर 24 सेकंड में एक व्यक्ति सड़क पर मर जाता है। 5 से 29 वर्ष के बीच के युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण सड़क हादसा ही है। 90% से अधिक सड़क मौतें निम्न

0: और मध्यम आय वाले देशों में होती है।
1: बिल्कुल, इन संख्याओं में हर एक व्यक्ति किसी का बेटा, बेटी, पिता, माता या दोस्त होता है। यह कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि एक त्रासदी है। सड़क हादसों के मुख्य कारण हम जानते हैं कि कहाँ होती है चूक। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इन्हीं कारणों पर गहराई से काम करता है।
0: बिल्कुल, और रफत पता है तेज रफ्तार इसका सबसे बड़ा मानो कि हत्यारा ही है। हम इसे हत्यारा ही संबोधित करेंगे। रफ्तार पर जरा सा कंट्रोल, और हम अगर आराम से अपना बाइक या कार चला रहे हैं, और तो हमारे लिए ये हम अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसा ही हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हेलमेट और सीट बेल्ट का ना उपयोग करना भी बहुत बड़ा वजह बन रहा है आजकल,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि दोपहिया वाहनों में हेलमेट ना पहनना और चार पहिया में सीट बेल्ट ना लगाना मौत को निमंत्रण देना है।
0: एकदम सही बात कह रहे हैं आप। और तो और, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल फोन पर बात करने लग जाते हैं, जो कि ये हमें मौत को बुलावा दे

0: क्योंकि दोपहिया वाहनों में हेलमेट ना पहनना और चार पहिया में सीट बेल्ट ना लगाना मौत को निमंत्रण देना है।
1: एकदम सही बात कह रहे हैं आप। और तो और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल फोन पर बात करने लग जाते हैं, जो कि ये हमें मौत को बुलावा देना ही है। तो मोबाइल फोन पर बात बिल्कुल ना करें, या मैसेज आ रहा है तो उसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है।
0: पूरी दुनिया में इस सप्ताह के दौरान अलग-अलग गतिविधियां होती हैं। स्कूलों में ट्रैफिक शिक्षा सत्र होता है, बच्चों को सड़क पार करने के नियम जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में सिखाया जाता है, सड़क सुरक्षा रैलियां और वॉकथॉन, लोग पोस्टर और नारे लेकर जागरूकता फैलाते हैं, नुक्कड़ नाटक और लघु फिल्में भी इसमें काफी कारगर साबित हो रहे हैं। संवेदनशील बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम जो है ना, सोशल मीडिया कैंपेन भी अभी चल रहा है।
1: बिल्कुल
0: हैशटैग रोड सेफ्टी, हैशटैग स्लो डाउन, हैशटैग सेव लाइफ चलते रहते हैं।
1: बिल्कुल, हैशटैग जो भी रोड सेफ्टी हम लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो हम जितना कर रहे हैं उतना ही अपने जीवन में अपनाएं भी। हमें आवश्यकता है जन आंदोलन की। सिर्फ कानून से ही नहीं, आदतों से बदलाव आता है रफत। हम सब क्या कर सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी है क्या? रफ्तार पर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप जीवन बेकाबू हो ही जाएगा दोस्तों।
0: यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें सिर्फ याद दिलाता है कि असली बदलाव हमें खुद लाना है। बात तो आगे भी होती रहेगी, जारी रहेगी। पहले क्यों ना सुनाते हैं अपने
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं को एक प्यारा सा ट्रैक।

0: तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे पद्मावत फिल्म से श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाज़ में घूमर, जो कि बहुत प्यारा सा गाना था। और अब हम इससे पहले हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में, तो आइए रफत हम उस बारे में फिर से चर्चा शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल, यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हमें सिर्फ याद दिलाता है कि असली बदलाव हमें खुद लाना है। हेलमेट जरूर पहने, सिर की चोट से बचाओ, 70% मौतें कम हो जाती हैं। सील्ट बेल्ट लगाएं, आगे और पीछे दोनों, टक्कर में शरीर को सुरक्षित रखता है।
0: और इसके साथ ही मोबाइल फोन गाड़ी से दूर रखे, सेकंड भर की नजर हटी और जीवन भर का पछतावा हो जाता है। दोस्तों, स्कूल जोन में धीमी रफ्तार में गाड़ी चलाएं, बच्चे अनायास ही सड़क पर आ जाते हैं, ऐसा आपने भी देखा ही है। पैदल चलते समय सतर्क रहें, हेडफोन या मोबाइल देखते हुए सड़क पार बिल्कुल भी ना करें। और तो और, बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, उनके भविष्य की पहली पाठशाला तो आप हैं, हम हैं, हमारे दोस्त हैं, तो बच्चों को भी आप इस बारे में ज़रूर सिखाएं।
1: सड़क पर एक गलती और माफी का कोई मौका नहीं देती है दोस्तों। हेलमेट बोझ नहीं होता है बल्कि जीवन का कवच है। तेज रफ्तार आपको जल्दी पहुंचा सकती है, लेकिन कहीं भी, यहाँ तक कि स्वर्ग या अस्पताल भी। इसलिए संभल के गाड़ी चलाएं। हर गाड़ी एक जिम्मेदारी है, खिलौना नहीं। सीट बेल्ट लगाने में 5 सेकंड, पछताने में उम्र भर का है। सोचिए, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए दोस्तों।
0: बिल्कुल, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक केवल एक हफ्ते का आयोजन नहीं है दोस्तों, ये एक वैश्विक आंदोलन है, एक प्रण है कि हम सब लापरवाही के खिलाफ एकजुट होंगे। हर नागरिक, हर ड्राइवर, हर पैदल यात्री को समझना होगा कि सुरक्षा कोई समझौता नहीं है।
1: सही कहा आपने। सरकारें चाहे जितनी भी कानून बना ले, पुलिस चाहे जितने चालान काट ले, असली बदलाव तभी आएगा श्रोताओं, जब हम में से हर एक जागरूक होगा और जिम्मेदार बनेगा। वो समझेगा, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगली बार जब आप अपना हेलमेट छोड़ें, सीट बेल्ट ना लगाएं या हॉर्न बजाकर सिग्नल तोड़ें, तो याद रखिएगा, आपके पीछे कोई इंतजार कर रहा है। चाहे माँ की दुआओं वाला हाथ हो, बच्चे की मुस्कान हो, या किसी दोस्त का इंतजार।
0: तो बिल्कुल सही सही बात कह रही हैं आप रफत। हमें अपने लिए और दूसरों के लिए अपने सुरक्षा पर ज़रूर ध्यान देना है, हेलमेट लगाना है, और सुरक्षित सड़कें सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हर हफ्ते मनाएं, हर दिन इसे जिएं। तो इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक, जो अरिजीत सिंह की आवाज़ में है, तू मिला तो है ना।

0: मधुर गीत के बाद एक बार फिर से उपस्थित है आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लेकर। आज का दिन है खास, बेहद खास मिल गए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अदृश्य सेनानी की जो दिन दिन हमारे लिए सांसें बुनता है, खाना उगाता है, धरती को हरा भरा रखता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पौधों की।
1: लेकिन सोचिए, अगर यही पौधे बीमार पड़ जाएं तो क्या होगा? अकाल, भुखमरी, बेरोजगारी। इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर एक दिन चुना है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट। और हाँ, ये दिन मनाया जाता है आज, यानी 12 मई को।
0: साल 2022 से हर साल 12 मई को पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र किसान, वैज्ञानिक, बच्चे, बुजुर्ग सब मिलकर पौधों की सेहत के लिए जागरूकता फैलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह शुरुआत हुई कैसे? बताती हूँ। जाम्बिया नाम के देश ने सबसे पहले इसकी मांग उठाई, फिर भारत, फिलीपींस, कनाडा सब जुड़ते गए, और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया, और तब से हर साल 12 मई ये दिन मनाया जाने लगा।
1: क्यों 12 मई? क्योंकि ये पादप संरक्षण के जनक स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियंस की जयंती के करीब है।

0: जिन्होंने पौधों की बीमारियों पर गहरा काम किया। अब सवाल है, भाई पौधों की सेहत इतनी क्यों जरूरी है? दुनिया की 80% से ज़्यादा खाने की चीज़ें पौधों से ही तो आती है दोस्तों। गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ और फल।
1: पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा साफ करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ रखते हैं।
0: बिल्कुल रफत। लेकिन कीट, बीमारियां और मौसम का बदलाव हर साल दुनिया की 40% फसलों को नष्ट कर देते हैं।
1: इसका मतलब लाखों लोगों को भूखा रहना पड़ता है, अरबों डॉलर का नुकसान होता है दोस्तों। और यहीं से आता है पादप स्वास्थ्य का मतलब। जब पौधा स्वस्थ होगा तो धरती स्वस्थ होगी, जानवर स्वस्थ होगी, इंसान स्वस्थ होगा, अर्थव्यवस्था स्वस्थ होगी। यानी स्वस्थ पौधा बराबर स्वस्थ जीवन।
0: बिल्कुल। तो इस 12 मई को आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के गमले में एक स्वस्थ पौधा लगाइए। स्वस्थ पौधा या कोई भी पौधा लगाइए, कीटनाशकों को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर पौधों पर कोई अजीब धब्बा या सूखने सा दिखे तो तुरंत बागवानी विशेषज्ञ से सलाह भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात, किसान भाइयों को जागरूक कीजिए कि वो समय समय पर फसलों की जांच करें, क्योंकि एक बीमार पौधा 100 को बीमार कर सकता है दोस्तों।
1: बिल्कुल दोस्तों, पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, लेकिन उनकी पत्तियां पीली पड़कर, तना सूखकर, फल टूटकर चुपके से कहते, हमें बचाओ, नहीं तो तुम्हारा कल भी नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक प्रण है। प्रण है कि हम हरियाली को स्वस्थ रखेंगे, धरती को हरा भरा रखेंगे।
0: और हाँ रफत, अगर किसी ने पेड़ काटा है तो आज एक नया पौधा जरूर लगाना।
1: इसी के साथ सुनते हैं अपना अगला ट्रैक।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
7: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
8: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
9: तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। दोस्तों आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम सलाम करने वाले हैं उन लोगों को जो अपने आराम से पहले दूसरों की जिंदगी को महत्व देते हैं।
10: जी हाँ, आज है इंटरनेशनल नर्सेस डे, एक ऐसा दिन जो समर्पण, सेवा, करुणा और इंसानियत को समर्पित है।
9: हर साल 12 मई को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटेंगल का, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग की जननी भी कहा जाता है। दोस्तों
10: हाँ भारती, जब भी अस्पताल का नाम आता है हमारे दिमाग में डॉक्टर के साथ एक चेहरा जरूर आता है, और वो है एक नर्स। एक ऐसा चेहरा जो मरीज को हिम्मत देता है, भरोसा देता है, एहसास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा।
9: बिल्कुल रफत, नर्सें सिर्फ इंजेक्शन लगाने या दवा देने का काम नहीं करती हैं दोस्तों, बल्कि मरीज की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। ऐसा आपने भी देखा ही होगा अस्पतालों में, कई बार मरीज अपने परिवार से ज़्यादा समय तो नर्सों के साथ बिताते हैं रफत।
10: बिल्कुल, और सबसे ख़ास बात पता है भारती, नर्सें हर परिस्थिति में शांत रहना जानती हैं, चाहे इमरजेंसी हो, ऑपरेशन थिएटर हो या रात के 2 बजे की ड्यूटी। सोचिए रात के 2 बजे की ड्यूटी नींद किस कदर रहती है। लोग उनके चेहरे पर हमेशा जिम्मेदारी नजर आती है।
9: वे अपने अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य को भी न देखते हुए लोगों की सेवा करती हैं, लोगों के प्रति समर्पित रहती हैं। और आपने ये भी सही कहा कि 2 बजे की ड्यूटी वो करती हैं। और दोस्तों आपको याद होगा कोरोना महामारी के समय, उस समय का मतलब जो सीन था वो कौन भूल सकता है। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित थे तब नर्सें PPE किट पहनकर घंटों अस्पतालों में ड्यूटी कर रही थी। दोस्तों हम आगे और भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में ये बहुत सुंदर सा गाना।

तो लिसनर, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दम लगा के हैशा से ये गीत। अब हम बात करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर एप्रिसिएशन डे पर। आज के तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन में

0: मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल उतनी ही आवश्यक है जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल रफत, अक्सर लोग शरीर की बीमारी को तो गंभीरता से लेते हैं लेकिन मन की परेशानियों को नज़रअंदाज ही कर देते हैं, जबकि सच तो ये है कि यदि मन स्वस्थ नहीं होगा तो जीवन की खुशियाँ, रिश्ते, काम और आत्मविश्वास इससे सब प्रभावित होने लग जाते हैं। दोस्तों,
0: इसी सोच को बदलने और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों के योगदान को सम्मान देने के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है।
1: वर्ष 2026 में भी ये दिन उन्हीं सब डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट को धन्यवाद कहने का बहुत ही खास अवसर है जो लोगों के जीवन में उम्मीद और संतुलन लौटाने का कार्य करते हैं।
0: मानसिक स्वास्थ्य केवल अवसाद, चिंता या तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने, समझने, निर्णय लेने और भावनाओं को संभालने की क्षमता से जुड़ा हुआ है।
1: जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है ना, तब वो अपने जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाता है। ऐसा आपने भी अपने जीवन में देखा ही होगा। अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है और समाज में एक सकारात्मक योगदान भी देता है।
0: लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो व्यक्ति अकेलापन, निराश, डर, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकता है। ऐसे समय में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। दोस्तों,
1: डॉक्टर, मनोचिकित्सक, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट केवल इलाज ही नहीं करते दोस्तों, बल्कि लोगों को ये एहसास भी दिलाते हैं कि उनकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ये साहस की निशानी है।
0: वे लोगों की बातें धैर्य से सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। कई बार उनकी एक सही सलाह किसी व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद जगा देती है।
1: बिल्कुल, वे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली गलत धारणाओं और शर्म की भावनाओं को भी कम करने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
0: आज के समय में विद्यार्थियों पर पढ़ाई का दबाव, युवाओं में करियर की चिंता, परिवारों में बढ़ती दूरियां और सोशल मीडिया पर प्रभाव का मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: एकदम सही कह रही हैं आप रफत। वे लोगों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने, तनाव को संभालने और जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता भी तो करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर एप्रिसिएशन डे हमें ये संदेश देता है कि
0: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे समाज के अनमोल सहायक हैं और उनका योगदान सदैव याद रखा जाना चाहिए। इसी के साथ सुनते हैं हम अपना अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे के और श्रेया घोषाल की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।
1: दोस्तों आज है मंगलवार, सिर्फ मंगलवार नहीं बल्कि मनोबल मंगलवार, जो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, कहानी का गुस्से पर विजय। एक दिन भगवान बुद्ध विहार के पास एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। तभी एक युवक वहां आया। उसने किसी बात पर किसी से झगड़ा किया था। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने बुद्ध को देखा और अकारण ही चिल्लाने लगा, तुम कोई महात्मा नहीं हो, ढोंगी हो। तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो, सिखाते कुछ हो और करते कुछ हो। युवक ने बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सबने सोचा, अब बुद्ध इसका जवाब देंगे या यहां से उठकर चले जाएंगे। लेकिन बुद्ध वहीं चुपचाप मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई चिंता नहीं थी। युवक थक गया। कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर पूछा, भंते मैंने आपको गालियां दी, आपने कुछ क्यों नहीं किया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे

और वो व्यक्ति उपहार लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? युवक बोला, जाहिर है उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक कहा, तुमने अभी मुझे गालियां दी और गुस्सा दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, वो सब तुम्हारे पास ही लौट आया। तुम देख रहे हो तुमने मुझे नाराज नहीं किया बल्कि अपना ही मानसिक शांति खो दी। युवक सन्न रह गया। फिर उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भंते आज मुझे सच में समझ आ गया, क्रोध करने से दूसरा नहीं अपना ही नुकसान होता है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जल्दी क्रोध में आने वाला व्यक्ति पराजित होता है और जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। दोस्तों सुनते हैं अगला ट्रैक।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से कुछ तो बता गाना। और उससे पहले रफत ने आपको एक प्रेरणादायक कहानी तो सुनाई है, कैसा लगा आपको? और सबसे बड़ी बात कि उससे शिक्षा क्या मिलती है, ये कि क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। गाली देने से पहले सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपनी शांति और सम्मान खो देते हो, मन में एक बेचैनी ले आते हो, इसलिए गुस्सा ना करें।
1: किसी के बुरे व्यवहार को स्वीकार करना जरूरी नहीं। जैसे बुद्ध ने वो उपहार लेने से मना कर दिया, वैसे ही तुम भी किसी की नकारात्मकता को अपने मन में मत उतारने दो।
0: बिल्कुल, और चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है, जवाब ही मत दो। हर गाली का जवाब देना जरूरी तो नहीं, कभी-कभी शांति से रहना ही हमें विजेता बनाता है।
1: गुस्से में फैसला मत लीजिए, गुस्से में बात मत कीजिए, गुस्से में कोई कदम मत उठाइए। पहले शांत हो जाइए, फिर सोचिए। एक शांत दिमाग ही सही रास्ता दिखा सकता है। अब है हमारा सबसे मजेदार सेगमेंट, वो है
0: यानी
1: क्या?
0: रोचक तथ्य। तो दोस्तों, भारत में हर कुछ किलोमीटर पर खाने का स्वाद, मसाले और पकाने का तरीका तो बदल जाता है। यही वजह है कि भारत को विविध स्वादों का देश कहा जाता है।
1: बिल्कुल भारती, पता है आपको, डोसा केवल दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति लगभग 1500 साल पुरानी मानी जाती है। पहले इसे बहुत पतला और कुरकुरा नहीं बनाया जाता था।
0: और इसके साथ ही हम बिरयानी की बात करें तो भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्वाद मिलती है। हैदराबादी, लखनवी, कोलकाता और मालाबार बिरयानी, हर एक की खुशबू और बनाने की शैली अलग होती है।
1: पंजाब का प्रसिद्ध लंगर केवल भोजन नहीं बल्कि समानता और सेवा का प्रतीक है। यहाँ अमीर गरीब जाति धर्म का भेद मिटाकर सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
0: और दोस्तों, हम पकवान के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो आप ही जाइए कुछ खा कर आइए, और हम भी जाते हैं कुछ खा कर आते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।
1: हमारा ईमेल आईडी है feedback@airpatna@gmail.com। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: किसे?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।

0: और
1: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: माघी सुनिहार के नीलाद्री के प्रणाम। श्रोता बंधु, आय है मंगलवार आ रोजनियन हम निया गलियन है रंग बिरंग के कार्यक्रम लेके। सबसे पहले प्रसारित होवे वाला कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दे दहियन। आय है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आओ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो हमने कुछ जानकारी साझा करबे अपने के साथ। ओकर बाद कुछ लोकगीत सुनबे, कलाकार हथिन रजनीकांत ओझा मधुकर आ सुनबे एगो कविता पाठ डॉक्टर श्रीकांत व्यास से। सभ्य साल आय जे 12 मई के दिन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनवल जाए है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जयंती के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा में नर्स के जे निस्वार्थ योगदान समर्पण हो रहा है एकरा प्रति आभार व्यक्त करे के एगो तरीका है। मने हर साल जब ये बनावल जाए तो कुछ न कुछ विषय रहा है, थीम रहा है। और सही इस साल के थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्स जीवन बचाती है। ये दिन नर्स के कठिन परिश्रम, सेवा, करुणा, सहयोग आ हुनकर मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ावे के अवसर है। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगल के याद में मनावल जाए जिनका लेडी विद द लैम्प के रूप में जानल जाए। कहल जा है कि एक बार युद्ध में ई रात के भी ललटेन जला के घायल सैनिक के देखभाल कर रहलखिन हल। इस साल के विषय इहे लेल नर्स के सशक्त बनावे और बेहतर कार्य परिस्थिति से मरीज के सुरक्षा बढ़ावे पर केंद्रित है। 1974 में पहल बेर ई दिवस शुरू होले। हेल्थ केयर संस्थान, हॉस्पिटल, घरेलू देखभाल में सहायक नर्स अपन सेवा, मेहनत, समर्पण सभी मरीज के लेल उम्मीद के किरण जगावे है। ये अपन समर्पण से, धैर्य से, सेवा से मरीज के जीवन में उम्मीद लेके आवे हथिन। समाज के लोगन के मानवता के प्रति प्रेम करुणा के संदेश दे हथिन। तो हमनी के बातचीत तो चलते रहते, पहले सुन लिये एगो लोक भजन कार्यक्रम के शुरुआत में। भक्ति भावना रहा है तो मन में भी आध्यात्मिक भाव आवे है, तो हमने सुनिए ये लोक भजन। कलाकार हथिन रजनीकांत ओझा मधुकर।

0: 计生分事也没有令。
1: बेजोड़ लोकगीत हले तो हमने के अपना अगल बगल सब के एगो समूह रहा है, परिवार रहा है, समाज रहा है। तो परिवार के महत्तम हमने के भारतीय समाज में तो है ही, दोसर देश में भी है। ये अलग बात है कि ओकर स्वरूप तनी मनी चेंज हो जाए, बदल जाए है। तो आए है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, क्षमा करथिन, 15 मई के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनावल जा है। ई दिवस के घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1993 में संकल्प के माध्यम से होल रहल। आ ई जे है परिवार के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के महत्तम के दर्शावा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस परिवार के संबंध में जागरूकता बढ़ावे, परिवार के प्रभावित करे वाला सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रिया के संबंध में ज्ञान बढ़ावे के अवसर दे। आ सब साल ई दिवस के एगो विषय भी रहा है। तो अबरी है परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण। एकर उद्देश्य है कि परिवार से जो संबंधित मुद्दा है, आय है, असमानता है, डिजिटल पहुंच है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर चर्चा करना, ये जो समस्या होवे है ओकर समाधान करके आगू बढ़ना। 1993 से हर साल ई होवे है, ई दिवस के आयोजन होवे है। परिवार सामाजिक और आर्थिक प्रगति के केंद्र में है। तैयो कते परिवार के आय के मने असुरक्षा हो गेल, सीमित देखभाल, सहायता, भय आवश्यक सेवा तक असमान पहुँच जे होब है, ई सब समस्या के सामना करैये ले पड़ जाए। पर्याप्त सहायता के अभाव में बचपन पर भी के स्वास्थ्य पर, शिक्षा, देखभाल, समग्र कल्याण पर मने बड़ी दूर तक प्रभाव पड़े है। ई आयोजन सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संस्था के जे हथिन और नागरिक समाज के बीच परिवार के महत्व के बढ़ावा दे है। खुशी में, दुख में, मनोरंजन में, हर समय हमनी के परिवार सहयोग, सुरक्षा प्रहरी के रूप में साथ दे है। तो अब हमनी बातचीत के जे विराम दहियन आ सुनथिन झूमर, आ ओकर बाद पूर्वी कलाकार एक बार फिर से हथिन रजनीकांत ओझा मधुकर।

सुनल जाओ कि ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर है, दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर है। ध्वनि प्रदूषण बिनु कारण के भोपो पोपो सुनो ही, बिनु कारण हौरन के भोपो पोपो सुनो ही, करिया धुआं उगलते गाड़ी सर पर दौड़ ही। बिनु कारण हौरन के भोपो पोपो सुनो ही, करिया धुआं उगलते गाड़ी सर पर दौड़ ही। हौरन बज भैया बन गेले आदम कोर हे, ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर हे, दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर हे। हाट बाजार में लाठेलम हो बे हल्ला, डीजे कनफोड़ो से अब गुंजा है मोहल्ला। हाट बाजार में लाठे

ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर हे, दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर हे। हाट बाजार में लाठेलम हो बे हल्ला, डीजे कनफोड़ो से अब गुंजा है मोहल्ला। हाट बाजार में लाठेलम हो बे हल्ला, डीजे कनफोड़ो से अब गुंजा है मोहल्ला। जारा से रोके पर उखरे सीना जोर हे, जारा से रोके पर उखरे सीना जोर हे। ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर हे, दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर हे। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम अब लगाबो तू, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम अब लगाबो तू, आदमी के भरा हो बे जल्दी बचाबो तू। ध्वनि प्रदूषण पर लगाम अब लगाबो तू, आदमी के भरा हो बे जल्दी बचाबो तू। जन जन चेतना जगाबे पर अब दो तू, अब दो तू जोर हे। जन चेतना जगाबे पर अब दो तू जोर हे, ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर हे। दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर हे। ध्वनि प्रदूषण के अब सब जगह में शोर हे, दिन में नहीं मिले चैन आउर नहीं अब भोर हे, आउर नहीं अब भोर हे, आउर नहीं अब भोर हे। अब दोसर रचना सुनल जाओ, ये पर्यावरण गीत है। शीर्षक है पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगावो हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगावो हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचावो हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगावो हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचावो हो। बंजर बंजर भूमि पर गाछ लगा के हरियाली फैलावो, अरे बंजर भूमि पे गाछ लगा के हरियाली फैलावो, और प्रदूषण के रोके खातिर आगे कदम बढ़ावो। बंजर भूमि पर गाछ लगा के हरियाली फैलावो, और प्रदूषण के रोके खातिर आगे कदम बढ़ावो। और गंगा के बहते पानी में मुर्दा नहीं दहावो हो, कि गंगा के बहते पानी में मुर्दा नहीं दहाबो हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगाबो हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचाबो हो। हवा पानी और मटियो भी अब हो गेल दूषित है, हवा पानी और मटियो भी अब हो गेल दूषित है। हर प्रदूषित हवा के कारण लोग दमा से पीड़ित है, हवा पानी और मटियो भी अब हो गेल दूषित है। प्रदूषित हवा के कारण लोग दमा से पीड़ित है। अपन गलती के फिर से भैया ने दोहराबा हो, अपन गलती के फिर से भैया ने दोहराबा हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगाबा हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचाबो हो। कि नदी झरना बाग बगीचा जंगल पहाड़ बचाबो, नदी झरना बाग बगीचा जंगल पहाड़ बचाबो। आ मूर्ख अज्ञानी के पास जाके अब तू समझाबो। कि नदी झरना बाग बगीचा जंगल पहाड़ बचाबो, आ मूर्ख अज्ञानी के पास जाके अब तू समझाबो। आ प्रदूषण से बचे खातिर ऐना का दिखावो हो, प्रदूषण से बचे खातिर ऐना का दिखावो हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगावो हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचावो हो। कि फैक्ट्री के गंदा पानी नदी में नहीं बहावो, कि फैक्ट्री के गंदा पानी नदी में नहीं बहावो। हॉस्पिटल के कचरा फचरा अब तू मत गिराबो, कि फैक्ट्री के गंदा पानी नदी में नहीं बहावो। हॉस्पिटल के कचरा फचरा अब तू मत गिराबो। पर्यावरण के रक्षा ला हुनका कसम खिलाबो हो, पर्यावरण के रक्षा ला हुनका कसम खिलाबो हो। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगाबो हो, विलुप्त हो रहल प्राणी के जल्दी से बचाबो हो। कि ढीम ढाम डीजे बाजे लड़कन तेज बजाबी ही, कि ढीम ढाम डीजे बाजे

लड़कन तेज बजाबी ही, दूनू कान बहिर होवे से कैसे हम बचाबी ही। कि ढीम ढाम डीजे बाजे ही, लड़कन तेज बजाबी ही, दूनू कान बहिर होवे से कैसे हम बचाबी ही। हॉर्न तेज बजावे पर जल्दी रोक लगवाबहु, हॉर्न तेज बजावे पर जल्दी रोक लगवाबहु। पर्यावरण बचावे ला जन चेतना जगाबहु, विलोप हो रहल प्राणी के जल्दी से बचाबहु, जल्दी से बचाबहु, जल्दी से बचाबहु। अब तेसर रचना हमर गीत है बीतल बात बिसराबा हो, सुनल जाओ। बीतल बात के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ाबा हो, कि बीतल बात बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ाबा हो। जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबा हो, बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ाबा हो। जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबा हो। कोरोना के कहर देखलिए पिछला साल हम भैया, कि कोरोना के कहर देखलिए पिछला साल हम भैया। एकरो पर विजय पैली जब सरकार बनले, जब सरकार बनले खेवैया। कि कोरोना के कहर देखलिए पिछला साल हम भैया, एकरो पर विजय पैली जब सरकार बनले खेवैया। नया साल में नया उमंग उत्साह साहस दिखावा हो, नया साल में नया उमंग उत्साह साहस दिखलावा हो। बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ावा हो, जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबा हो। कि महामारी के कठिन दौर से हम यहाँ से कहाँ पे गुजर ली है, महामारी के कठिन दौर से हम यहाँ पे गुजर ली है। चीनी साजिश के कारण हम मर कितना लोग मर रहे है, महामारी के कठिन दौर से हम यहाँ पे गुजर ली है। चीनी साजिश के कारण हम मर कितना लोग मर रहे है। कोविड टीका दिलवावे में अपन हाथ बटावा हो, कि कोविड टीका दिलवावे में अपन हाथ बटावा हो। बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ावा हो, जितना जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबा हो। कि प्रेम दया करुणा के भाव अपन अंदर जगावो है, कि प्रेम दया करुणा के भाव अपन अंदर जगावो है। जे बगिया बिखर गए ले यहाँ ओकरा अब सजावो है, प्रेम दया करुणा के भाव अपन अंदर जगावो है। जे बगिया बिखर गए ले यहाँ ओकरा अब सजावो है। नया साल में कुछ तो करिश्मा अब तू दिखावो है हो, कि नया साल में कुछ तो करिश्मा अब तू दिखावा हो। बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे नहीं बढ़ावा हो, जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबा हो। कि दोसर के उपकार के खातिर कुछ कुछ तो अपमान दान करो, दोसर के उपकार के खातिर कुछ तो अपमान दान करो। ये दुनिया तू अला हो तो कुछ तो अच्छा नाम करो, दोसर के उपकार के खातिर कुछ तो अपन दान करो। ये दुनिया में तू अलो हो तो कुछ तो अच्छा काम करो। अपन देश के मान महिमा दुनिया में फैलावो हो, कि अपन देश के मान महिमा दुनिया में फैलावो हो। बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे नहीं बढ़ावो हो, जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबो हो। बीतल दुख दर्द के बतिया अब मन में नहीं लावो तू, कि बीतल दुख दर्द के बदिया अब मन में नहीं लावो तू। पश्चाताप में अखिया से नहीं अब लोर गिरावो तू, कि बीतल दुख दर्द के बदिया अब मन में नहीं लावो तू। पश्चाताप में अखिया से अब नहीं लोर गिरावो तू। ई वीर देश के तू वासी कायन मत कहलावो हो, वीर देश के तू वासी ही कायन मत कहलावो हो। बीतल साल के उपजल झगड़ा आगे न बढ़ावो हो, जितना जल्दी हो सके तू पिछला बात बिसराबो हो, पिछला बात बिसराबो हो, पिछला बात बिसराबो हो। अब अंतिम कविता है, शीर्षक है अपन जान बचावो हो। कोरोना के टीका सब लोग लगवाबो हो, कोरोना के टीका सब लोग लगवाबो हो।

सुरक्षा बढ़ावो तू, मास्क लगा के अपन सुरक्षा बढ़ावो तू, लोगों के बीच जाके जितना जगावो तू, कि मास्क लगा के अपन सुरक्षा बढ़ावो तू, लोगों के बीच जाके जितना जगावो तू, कि कोरोना से अब डरे के नहीं कोई बात है, कोरोना से अब डरे के नहीं कोई बात है, सरकार के हमरा मिलन यहाँ साथ है, सरकार के हमरा मिलन यहाँ साथ है, कि कोरोना से अब डरे के नहीं कोई बात है, सरकार के हमरा मिलन यहाँ साथ है, कि एकरो रोकथाम पर रोजे हो प्रचार है, कि एकरो रोकथाम पर रोजे हो प्रचार है, जल्दी हम हो जेबे ई आपत से बाहर है, कि एकरो रोकथाम पर रोजे हो प्रचार है, जल्दी हम हो जेबे ई आपत से बाहर है, आपत से

अभी हमने एक कविता पाठ सुनलिए आ कवि हलखिन डॉक्टर श्रीकांत प्यास हिनका एक कविता पाठ लेल धन्यवाद दहिए आ रजनीकांत ओझा मधुकर से झूमर और ओकर बाद पूर्वी सुनै।

तऽ ई लोकगीत हमनी पूरा नहि सुनबाबे सकलियनि, समयके कमी हलन। बड़ी निमन निमन लोकगीत हले। रजनीकांत ओझा मधुकरके आइके लोकगीत लेल धन्यवाद दहिए। आ अब हमनी के समय उड़िया गेलन, फेर मिलबन। प्रणाम।

मगही कार्यक्रम मागधी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। जिले की हलचल आप सुनेंगे 7:47 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे श्रीमती डे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल, कलाकार होंगे रूपा सिंह। नाटक आप सुनेंगे रात 9:30 पर। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार आप सुनेंगे।

श्रोताओं, दैनिक कार्यक्रम में आप प्रत्येक सुबह 6:05 पर सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और इसके तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनते हैं रामचरितमानस पाठ। हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 7:05 पर।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओ, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी का, ये गीत जिसे गाया है मीका सिंह ने। गीतकार हैं स्वप्निल तिवारी और संगीतकार सौरभ वैभव।

हिम्मत वाला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मीका सिंह की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार साजिद वाजिद।

0: तेवर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे रात 8 बजे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।

0: नमस्कार सुधा बहन,
1: नमस्कार रचना जी।
0: कहीं कैसन बानी?
1: बहुत बढ़िया।
0: सब समाचार निमन बानी?
1: एकदम बढ़िया है, लेकिन जो हालत है आज, कब तक बढ़िया रहेंगे? कोई ठीक नहीं।
0: वो तो देखी
1: आप
0: की
1: समझ ही रही हैं, हवा का वही हाल है, पानी का वही हाल है।
0: अब देखी कि हमने का सब केहू के स्वस्थ रहे के चाहिए, और स्वस्थ रहला के कई गो फायदा भी बा। काम धंधा करे में मन लागेला, बीमार रहा तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ आदमी करत रहला, अब
2: अब देखिए,
0: कोनो
2: स्वास्थ्य
0: काम
2: केवल,
0: निमन से ना कर पावेला।
2: हाँ, और स्वास्थ्य केवल हमारा ही नहीं रचना जी, सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए,
0: हाँ,
2: चाहे वो
0: वह कहेला
2: किसी
0: चाहत रही कि जैसे हमने के स्वास्थ्य जरूरी
2: हाँ
0: बा, वैसे ही जीव जंतु होकर, पेड़ पौधा होकर,
2: पूरी
0: सबके
2: पृथ्वी
0: स्वास्थ्य।
2: का,
0: हाँ
2: यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं, जिससे कि प्रकृति इतनी सुहावनी होती है, जो कि हमारे लिए इतने सारी चीजें देते हैं, उनका भी स्वास्थ्य प्राणायाम बेहद जरूरी। देखिए, आज जो प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कीट व्याधियों के कारण जो पौधों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है इन सब वजह से, यानी कि कहा जाए कि पूरा जो वनस्पति जगत है इसकी चपेट में आ जाता है।
0: अब पेड़ पौधा स्वस्थ रही है तब फल भी निमन होगी। स्वस्थ पौधा धरती पर सभी जीवन के संगे संगे पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, खाद्य सुरक्षा आ पोषण के नींव है। आ ई कहल गेल बा कि 2050 तक बढ़त वैश्विक आबादी के खियावे खातिर भी आवश्यक बा। कृषि के सतत विकास खातिर पौधा के स्वास्थ्य महत्वपूर्ण बा।
1: देखिए, इसी कारण पौधों की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष 12 मई को, यानी आज के दिन, विश्व पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका

0: उद्देश्य ही है कि पौधों के स्वास्थ्य में सुधार किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और पर्यावरण में उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो विश्व पादप दिवस हमें ये संदेश देता है अर्चना जी कि पौधों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और देखिए, जो पौधे हैं, एक तरह से कहा जाए तो पृथ्वी के जीवन चक्र का आधार है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे कि जो जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका जीवन संभव हो पाता है। कृषि उत्पाद की बात करें तो ये तो पूरी तरह से पौधों पर ही आधारित है। जो यदि फसलें रोगग्रस्त हो जाएं तो खाद्यान्न संकट संकट उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य को क्या, बल्कि पूरे प्राणी जगत को भोजन, ऑक्सीजन, औषधियाँ, लकड़ी, कपड़ा और अनेक तरह की आवश्यक वस्तुएं पौधों से प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से यदि पौधे स्वस्थ रहेंगे तो मानव जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित होगी।
1: अब देखिए कि वैश्विक स्तर पर इस बात के जागरूकता बढ़ावे खातिर ये दिवस मनावल जाला, ताकि पादप स्वास्थ्य के सुरक्षा कैसे कैल जाओ और भूख के खत्म करे, और गरीबी के कम करे, जैव विविधता और पर्यावरण के रक्षा करे, आर्थिक विकास के बढ़ावा देवे में सहायक हो सके, वही खातिर ये दिवस मनावल जा रहल बा। हमनी का जौन ऑक्सीजन सांस लीला जा, ओकर 98% पौधा से आवेला, और हमनी का जे भोजन खाइला जा ओकर 80% पौधा से हमनी के भेटेला। लेकिन जौन ऑक्सीजन में सांस लीला जा ओकर पौधा से जे हमनी के भेट रहल बा, बाकी तैयो ई पौधा लोगिन के खतरा में हमनी के डाल रहल बानी जा। काहे कि पर्यावरण में जे परिवर्तन हो रहल बा, ओ से ई पौधा सबके जीवन पे भी संकट आ रहल बा।
0: बिल्कुल, ये जो जलवायु परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं, यानी कि जो अनियमित तरह से कभी गर्मी ज्यादा पड़ जा रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, अनियमित वर्षा हो रही है, सूखा, बाढ़, इन सब की बातें कर रही हैं आप।
1: और देखी कि खाद्य फसल बेचे बा वो कीट आ रोग के कारण भी ओकर जितना उत्पाद होके के चाहिए, अब
0: नहीं हो
1: बुझी कि
0: पाता है।
1: 40% ओकर नष्ट हो जा रहा बा। तो ए खातिर भी कृषि के नुकसान होला, और कृषि के नुकसान हुई तो बुझी कि वैश्विक भूख जे कहतनी, जे हमने के अनाज भेट
0: खाद्यान्न
1: रहा,
0: खाद्यान्न की कमी
1: खाद्यान्न
0: हो
1: की
0: जाए।
1: दिक्कत हो जाए, तो ई खतरा में पड़ जाई। और ग्रामीण आजीविका भी ऐसे खतरा में पड़ी, काहे कि गांव में तो बुझी कि ढेर लोग तो खेती पर निर्भर रहेला। तो एक तरह से सब तरह के नुकसान बा,
0: बिल्कुल।
1: और अधिक नुकसान जे हो रहल बा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के 220 अरब डॉलर से अधिक के नुकसान होखेला, ई पौधा के अगर ढंग से हमनी के नेखी रखल जाता। और ऐसन में पौधा के कीट और रोग से बचावे के, पौधा के स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में से निपटे में, जैसे कि बाढ़ सुखाड़ हो गए, तो ओहू में पौधा के नुकसान ना होके उहो उपाय होके के चाहिए।
0: अलावा इसके प्रदूषण से भी तो पौधे प्रभावित होते हैं, उससे भी बचाना जरूरी है।
1: जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधि पारिस्थितिक तंत्र के बदल रहल बा, तो ई जैव विविधता के नुकसान पहुंचा रहल बा, संगे संगे कीट के पनपे खातिर अनुकूल वातावरण बना रहल बा। कई गो कीट बुझी कि जलवायु परिवर्तन होके से उनका खातिर अनुकूल परिस्थिति हो जा रहल बा, जेकरा में क्यों बेसी बढ़ रहल बा। ऐसे पौधा के स्वास्थ्य खातिर ध्यान देवे के जरूरत बा, पौधा के रक्षा करे के जरूरत बा। अंतर्राष्ट्रीय पादप दिवस 2020 के एगो महत्वपूर्ण विरासत बा, जे कि 2020-21 में से मनावल जा रहल बा, और एकर 5 विशिष्ट उद्देश्य बा।
0: वो क्या क्या?
1: सतत विकास लक्ष्य 2 के प्राप्त करे खातिर पौधा के स्वस्थ रखे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावल के, और मात्रा के माध्यम से कीट के प्रसार के जोखिम के कम करे खातिर अभियान, पौधा ओकर स्वास्थ्य के रक्षा खातिर निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के मजबूत करे के, ताकि पर्यावरण के रक्षा करके पौधा के स्वास्थ्य रखल जाए, और एकरा खातिर टिकाऊ कीट और कीटनाशक प्रबंधन के भी सक्षम बनावे के बा।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जो रासायनिक पदार्थों का हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उससे भी मिट्टी की उर्वरता कम होती है और पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनों की जो इतनी कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई, उससे भी जैव विविधता को पर खतरा है। तो पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए, जैसे कि समय पर सिंचाई और उचित जल प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पौधे, देखिए, पानी नहीं मिलता गर्मी के दिन में तो वो सूख जाते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक अगर उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो वो भी सही नहीं है।

0: वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, रोग प्रतिरोधी बीजों का प्रयोग करना होगा ताकि कीट व्याधियों से बचा सके हम। तो देखिए, पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए, और स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ पृथ्वी और स्वस्थ मानव जीवन का आधार हैं। इसलिए हमें पौधों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए, और ये दिवस कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश देता है।
1: हाँ, अब देखिए कि जब हमने के जे ऑक्सीजन पौधा सबसे बेसी भेट रहा बा, तो बुझे कि तो प्राणवायु हो गई, तो प्राणवायु की रक्षा करल तो बहुत जरूरी बा, अन्ना तो बुझे कि जिए के ही संकट पैदा।
0: बिल्कुल, सीधी सी बात है कि जो हमारे जीवन का आधार है, यदि वही नहीं बचेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे। तो बेहद जरूरी है कि जो पौधे हैं, एक तरह से कहें जो वन है, पृथ्वी पर जो हरियाली है, उसे बचाना बेहद जरूरी है।
1: हाँ, तो अपना हमने के जे लोभ लालच कहीं ओ खाते जे पौधा पेड़ के नष्ट कर रहल बानी, तो कम से कम ओकरा के लगाई।
0: विकास अगर उस कीमत पर आता है तो वैसा विकास नहीं चाहिए, है ना। उसी चीज जहाँ प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए, विकास प्रकृति को साथ लेकर के भी तो चल सकते हैं हम।
1: हाँ, तो जैसे आप काट रहल बानी, एगो गाछ काट रहल बानी, तो चार गो लगाइयो,
0: बिल्कुल उसमें कमी नहीं आनी चाहिए।
1: तो एक तरह से हमने के अपना पौधा के भी बचा सकता नहीं, और
0: हम पूरी धरती को बचा सकते हैं और पूरे प्राणी जगत को बचा सकते हैं।
1: एकदम सही कहनी रहुआ, तो यही बात पे वो गीत सुनवा देती तो और निमन रही।
0: चलिए सुनते हैं, ये गीत सुनते हैं मंजे प्रसाद कश्यप से।

0: झुनूर झुनूर बाजे, देखिए कितना निमन गीत रहे, देवी गीत रहे।
1: बहुत बढ़िया।
0: और हमनी का तो बुझी कि कोनो काम शुरू बात जो होखेला तो देवी देवता गोहरा के
1: बिल्कुल, पहले तो उसकी इनकी पूजा होती तभी तो फिर काम शुरू होगा।
0: देवी मैया के तो बुझी कि आदमी हमेशा गोहरावत रहेला कि उनका आशीर्वाद बनल रहे।
1: बिल्कुल, तो और गीत अच्छा लगा। आगे फिर इनसे मंजय प्रसाद कश्यप से हम लोग सुनेंगे। अभी एक वार्ता सुनते हैं हम लोग वायु प्रदूषण एवं उससे बचाव के बारे में। वार्ताकार हैं योगेंद्र सिंह गंभीर।
0: तो चलिए सुनी जाइए वार्ता।
2: इस 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में वायु प्रदूषण से हाहाकार मचा हुआ है। संपूर्ण मानव जाति इस समस्या से त्रस्त है। यह चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपसे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। वायु हमारे जीवन का आधार है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना वायु के जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। दुर्भाग्यवश आज वही वायु हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। हमारे देश के और बिहार के भी कई एक शहर इस समस्या की चपेट में आ चुके हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 शहरों में भारत के सबसे ज्यादा 39 शहर हैं, जबकि चीन के 30 शहर इस सूची में हैं। 100 में 69 सर्वाधिक प्रदूषित शहर केवल भारत और चीन में हैं। अतः वायु प्रदूषण का स्पष्ट मुख्य कारण आबादी का सैलाब, जनसंख्या का बढ़ना है। ये दोनों ही देश भारत और चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अतः मैं आपको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है और इसे बचाव का मुख्य रास्ता भी जनसंख्या नियंत्रण है। वैसे पाकिस्तान के 7 शहर, बांग्लादेश के 5 और नेपाल के 2 शहर इन 100 सर्वाधिक शहरों की सूची में शामिल हैं। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप और चीन को मिलाकर ही विश्व के सर्वाधिक 100 प्रदूषित शहरों में कुल 83 शहर हो जाते हैं। बाकी बचे मात्र 17 सर्वाधिक प्रदूषित शहर सारे विश्व भर से आते हैं। अतः वायु प्रदूषण की समस्या मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की है। उदाहरण के लिए दिल्ली शहर और उसके आसपास में वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम 1 QI कहते हैं, कभी कभी बढ़कर 500 तक पहुंच गया, जिससे प्रदूषण की गंभीर चुनौती उजागर हुई। आप लोगों को ज्ञात होगा कि दिल्ली में देश की बहुत बड़ी आबादी रहती है। बढ़ती आबादी के अलावा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण बढ़ते हुए वाहन, औद्योगिक धुआं, पेड़ों, जंगलों की कटाई, निर्माण कार्यों के कारण उठने वाली धूल और गांवों में फसल अवशेषों का तथा शहरों में कूड़े कचरे को जलाया जाना है। हमने विकास तो किया है, लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में कहीं न कहीं हम चूक गए हैं। यही असंतुलन हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भारी पड़ रहा है। वायु प्रदूषण हानिकारक गैसों, धूल और धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। यह फेफड़े की बीमारियों, कैंसर और प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख मौतों का सारे विश्व में कारण बनता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण विभिन्न बीमारियों से दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्रसित हो रही है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याएं शामिल हैं। वायु प्रदूषण मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है, कर रहा है। आंकड़े हमें यह भी बताते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल भारतवर्ष में लगभग 13 लाख मौतें होती हैं। प्रदूषण के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी ने वातावरण में असंतुलन पैदा कर दिया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत जैसे देश में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वह बढ़ते वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा संकेतक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग

होना है। पहले यह समस्या शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन अब यह समस्या गांव देहात तक बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के कारण औद्योगिकरण में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने की वजह से उद्योगों से निकलने वाली जहरीली हवा और धुएं ने संपूर्ण वायुमंडल को दूषित कर दिया है। यह ज्यादातर विकासशील देशों की समस्या है। बढ़ते उद्योग के कारण आज भारत के कई शहर जोखिम निशान के ऊपर हैं। उन शहरों में सांस लेना दुर्लभ हो गया है। बढ़ती आबादी के कारण संचार के विभिन्न संसाधनों में वृद्धि हो रही है। इन साधनों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से इंजनों, बसों, वायुयानों, स्कूटरों आदि की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सभी वाहन अपने धुएं से वायुमंडल में लगातार असंतुलन पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। पेड़ पौधे वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करने का कार्य करते हैं। पौधे हमारे लिए हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए ग्रहण करके जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, परंतु वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी ईरान अमेरिका युद्ध के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह प्रदूषण को फैलाने वाला सबसे विराट हथियार साबित होगा। दुनिया का एक चौथाई हिस्सा तो परमाणु युद्ध से बर्बाद होगा और बाकी बची सारी दुनिया वायु प्रदूषण के भारी चपेट में आ जाएगी। पृथ्वी के लिए यह सबसे बड़ी विडंबना होगी, त्रासदी होगी। वायु प्रदूषण से बचने के लिए वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर भी रोक लगानी होगी। इस कार्य में सरकारों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं तथा देश और राज्य के नागरिकों को आगे आना होगा। शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लानी चाहिए जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ एवं गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। केंद्र एवं राज्य सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाया जाए, यह अत्यधिक आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण पर जगह जगह सेमिनार एवं जनसंख्या नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जाना चाहिए। वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। खुले में शौच करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह वायु की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डालता है। सौर ऊर्जा की तकनीक को विकसित एवं प्रोत्साहित कर इसे और ज्यादा उन्नत एवं सुलभ बनाना चाहिए। शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। गांवों घरों में तथा शहरों में भी पेड़ पौधे लगाने के अभियान को व्यापकता प्रदान करनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषण से बचाव कार्यक्रम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर बच्चों में इसके प्रति चेतना एवं जागृति फैलाई जानी चाहिए। इसकी जानकारी व इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे रेडियो, दूरदर्शन एवं पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो कार्य आज हम आकाशवाणी पटना के द्वारा कर रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा चिंता बिहार की करनी चाहिए, क्योंकि विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और गया का नाम आता है। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक कभी कभी 400 के अंक को भी पार कर जाती है, जो भारी चिंता का विषय है। सर्दियों के दिनों में ऐसी स्थिति को विशेष कर देखने का मौका मिलता है जो बहुत दुखद है। अगर दूषित हवा के संपर्क में आने से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इससे बचाव के लिए आप भाप ले सकते हैं। भाप लेने से फेफड़ों में जमा कफ बाहर निकलता है और फेफड़ों में होने वाली जकड़न से राहत मिलती है। आंख में जलन होने पर अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा घी लें और इसे अपनी पलकों पर काजल की तरह लगाएं। वायु प्रदूषण की वजह से आंखों के अलावा नाक में भी जलन होने लगती है या नाक बंद होने लगती है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें
और सबसे जरूरी और आवश्यक है।

0: हर गांव, हर टोले, हर गली, हर मोहल्ले में वायु प्रदूषण के विरुद्ध व्यापक अभियान जन समझदारी और जन जन की साझेदारी से चलाया जाए।
1: बहुत ही सही जानकारी मिली वायु प्रदूषण एवं उसके बचाव पर। वार्ताकार थे योगेंद्र सिंह गंभीर।
2: तो इनका के ई वार्ता खातिर धन्यवाद।
1: और देखिए अर्चना जी, समस्या तो ये वाकई काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से हवा प्रदूषित होती जा रही है, और यही देखिए सांस जो लेनी है हमें हवा, वही अगर प्रदूषित हो जाए तो फिर क्या हाल होगा
2: अब देखिए कि प्रदूषित तो वो खातिर तो हम नहीं है कि जिम्मेदार बनी जा। अब देखिए कि धुआं गाड़ी मोटर इतना रोड पर चल रहा बा, कल कारखाना बा, ओकरो धुआं बा, सब तो वही हवा में मिल रहा बा।
1: इतनी सारी जो गाड़ियां निकल रही हैं शोरूम से, आखिर यही आ रही है ना, इसी वातावरण में ना उनका धुआं भी हो रहा है।
2: तो वो सब बुझे की तो वो सब तो नुकसान है न करी हमने के खेतों में। देखिए कि जो कीटनाशक खाद उद जो पड़ रहा बा तो वो हवा के प्रदूषित कर रहा बा। तो ये सब कारण तो बढ़ले बा। तो बुझे की हमनी है कि इस सब पर ध्यान देवे के बा।
1: समस्या गंभीर है, लेकिन केवल समस्या के बारे में बात करने से नहीं होगा,
2: उसका उपाय
1: के लिए ठोस कदम उठाना, केवल बात करने से तो होगा नहीं अर्चना जी। तो केवल हम एक दूसरे पर यही कहते रहेंगे कि हाँ ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे। अब जैसे गाड़ियां इतनी निकल गई हैं, तो मैंने देखा है कि एक आदमी भी पूरी गाड़ी लेके निकल जा रहा है।
2: अब एक के जगह चार आदमी, एक जगह से चार आदमी एक ऑफिस में जा रहा हलवा कार्यालय में, तब बुझे क्यों चारों एगो गाड़ी में चल जाओ।
1: अभी तो
2: सब अपन अपन गाड़ी लेके जाना।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों से आग्रह किया है कि भाई कार पूलिंग कीजिए, कम से कम डीजल पेट्रोल का उपयोग कीजिए। तो हमें इस दिशा में
2: देखिए डीजल पेट्रोल सही सुहू एथी वाला चीज है, कहिया खत्म हो जाए कोनो ठिकाना नहीं के। तो आगे वाला पीढ़ी के भेटी की ना भेटी वो दिक्कत
1: है। बिल्कुल जरूरत है, हमें आगे भविष्य को देखते हुए बचत करने की जरूरत है। जहां तक संभव हो हम कम से कम इनका प्रयोग करें।
2: और यही बात पर चलिए और गीत सुनवा दी।
1: कलाकार है मंजय प्रसाद कश्यप।

0: वाह, गीत तो बहुत बढ़िया लगा। मंजय प्रसाद कश्यप से ये गीत हम लोग सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही
1: चौपाल
0: चौपाल
1: के
0: का
1: समय
0: समय
1: भी हो रही
0: समाप्त
1: आ
0: होता
1: गई
0: है, तो आगे फिर में हम लोग बातें करेंगे खेती गृहस्थी में।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अर्चना जी, देखिए सब्जियां हम लोग खाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी होती हैं सब्जियां, खाना चाहिए। तो सब्जियों
1: देखिए ओकरा
0: में
1: में खनिज लवण कहला, पोषक तत्व तो रहबे
0: बिल्कुल
1: करेला
0: बिल्कुल,
1: प्रचुर
0: क्षार,
1: मात्रा
0: अम्लीय, तरह तरह के, मतलब
1: में।
0: जो खनिज
1: और
0: लवण है
1: देखिए
0: मिलते
1: कि
0: हैं।
1: सुधा बहन, बैगन के चोखा लिट्टी खाए में कितना मन लगेला।
0: बैगन का कुछ भी बना दीजिए, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगता
1: हाँ,
0: है।
1: भाजा
0: और
1: बना दी, पकौड़ा
0: गांव गांव
1: बनाई।
0: में तो कोई मतलब परोज हो, जिसको कहा जाता है अवसर हो,
1: बैगन बड़ी के
0: तो
1: सब्जी।
0: बैगन बड़ी की सब्जी जरूर कहते बनी है कि नहीं बनी है
1: हाँ, लोग
0: भाई।
1: पूछे ला कि बैगन बड़ी बाकी ना।
0: हाँ, तो बैगन देखिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है।
1: हाँ, अब
0: हालांकि
1: कैसे हूँ बनाई
0: कुछ
1: स्वादगर
0: लोग कहते
1: लागेला।
0: हैं बैगन मतलब नहीं होता है गुणकारी, लेकिन
1: ना
0: ऐसा
1: ना,
0: नहीं है।
1: देखिए कोनो चीज हिसाब से खाई तो सब फायदा करेला, हम तो
0: बिल्कुल,
1: यह जानी ला।
0: हाँ बिल्कुल, तो ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। और किसी भी रूप में से खा सकते हैं, भूनकर खाइए या फिर भरता बनाइए, सब्जी बनाइए, कुछ भी बनाइए, किसी भी तरह से बनाएंगे स्वादिष्ट भी उतना ही रहेगा और सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
1: बकिर
0: तो
1: बैगन के इतना जिस बनी तकारी तो रंग रंग के पकौड़ा बनाई चाहे कुछ हो, तो बैगन के फसल निमन होगी तब न ये सब
0: वही
1: बनी।
0: मैं कह रही हूँ कि खाने में ये स्वादिष्ट होता है, लाभदायक होता है, तो खेती भी लाभदायक होती है। लेकिन बस समस्या ये होती है कि बैगन में कीड़े बहुत लगते हैं। आपने अक्सर खरीदते समय भी हम लोग देखते हैं कि भाई उसमें छेद ना
1: तो
0: हो।
1: कनाइल उनाइल रहला तो हमने के
0: हाँ,
1: ना ली ल
0: तो
1: जाए।
0: अक्सर सुनते हैं कि बैगन में बहुत कीड़ा लगता है, तो जाहिर सी बात है इसमें लगते भी हैं।
1: देखिए ऐसु
0: और
1: हूँ फसल जब बैगन के निमन लेवे के बाद तो खेती खातिर तो ऐसु हूँ बहुत चीज पे ध्यान देवे पड़ेला। बिया होखो, खाद बा, पानी सिंचाई की व्यवस्था बा, माटी के खेत के तैयारी बा, तो ये सब देखे के संगे संगे आ ओकरा बाद बुझी की सब चीज कर ल तो रोग व्याधि भी बा।
0: हाँ, तो उसके लिए तो पहले से प्रयास भी हम करते हैं, जैसे कि मिट्टी जनित रोग, जो रोग व्याधि होते हैं, कीट होते हैं, उनके लिए पहले से ये जो जुताई करते हैं उसकी समस्या को हल करते हैं। अलावा इसके जो रोग रोधी कीट रोधी बीज होते हैं उनका चुनाव करते हैं। देखिए इसकी खेती फायदेमंद होती है और सालों भर इसकी की जाती है खेती, डिमांड भी इसकी हमेशा रहती है। लेकिन जो मानसून में उसका समय होता है वो सबसे उत्तम होता है बैगन के लिए। और इसके लिए तो अगर खेती करते हैं हम अच्छे से, उन्नत तकनीक से, तो मान के चलिए कि प्रति एकड़ 100 टन तक उत्पादन हो सकता है।
1: वाह,
0: तो अगर इतना लाभदायक है तो

0: थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा हमें कि
1: एकदम।
0: कीटों का प्रकोप ना हो, और अगर होता है तो उसका नियंत्रण किया जाए, मतलब जल्दी नियंत्रण कर लिया
1: हाँ,
0: जाए।
1: अब देखिए कोनो चीज बानो बीमारी कहल जाला नो कि ना होखे उ जाते बढ़िया बा, लेकिन अगर हो गए तो ओकरा शुरुए में
0: तो ये
1: नियंत्रण कर
0: जानना
1: ली।
0: जरूरी है किस किस तरह के कीट बैगन में
1: हाँ,
0: लगते हैं।
1: अब देखिए जैसे कि बैगन में मुख्य रूप से फल आ तना छेदक कीड़ा लागेला, जे कि फल में छोट छेद आ भीतरी में करियापन पैदा करेला। एकरा के रोके खातिर प्रभावित भाग के हटा दी, नीम के तेल चाहे लहसुन मरचाई के घोर के छीट दी, जेकरा से कि ई सब बुझी कि जैविक उपाय है, जेकरा से कि मतलब नुकसान भी नहीं खे आ अथी भी बा, फसल भी बाचल रहेला। और देखिए कि वही तरह और बीमारी बा गंभीर, और अगर गंभीर संक्रमण हो गई बा तो सिंजेटा के छीट दी, फल छेदक फल के भीतरी में छेद करके अगुदा के खा लेवेला
0: जाहिर सी बात है, इसका नाम ही है तना
1: फल
0: और
1: छेद।
0: फल छेदक,
1: हाँ,
0: तो
1: तो
0: ये इसके
1: जेकरा
0: अंदर
1: से
0: घुस
1: कि फल
0: जाता है,
1: खराब हो
0: फल को
1: जाला।
0: अंदर से खा जाता है।
1: और तना छेदक पौधा में तना में घुस करके ओकरा तना के सुखा देवेला।
0: इसके लिए हम खेत में फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं, इससे नियंत्रित किया सकता है। अलावा इसके एक कीट होता है माहू, ये छोटे हरे या काले रंग का कीट होता है, ये पत्तियों का रस चूसते हैं, और माहू कीट अगर लगते हैं पौधे पर तो पौधे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं, नीम आधारित जैविक दवा का छिड़काव करें, और खेत में खरपतवार न रहने दें।
1: और देखिए कि एकर जैविक उपाय भी बा और रासायनिक उपाय भी बा,
0: देखिए
1: तो वही
0: बैंगन
1: तरह
0: की
1: एगो सफेद माखी भी होखेला, जेकर जे की पतई के रस चूसेला, और एकरा से बाचे खातिर कीड़ा लागल तना आ फल के तुरंत तोड़ के जमीन में गाड़ दी चाहे जरा दी, और 1 लीटर पानी में 3 से 5 ml नीम के तेल और कुछ बूंद जे लिक्विड साबुन जे होला ओकरा के मिला के और स्प्रे कर दी, लहसुन मरचाई आदि के पीस के पानी में घोर दी और ओकरा के छान के स्प्रे कर दी, तेहू से कीड़ा से
0: नियंत्रण कर
1: बचल रहेला।
0: सकते हैं।
1: हाँ, अब बैगन भी गेंदा के पौधा लगौला से जे कीड़ा हनु वो गेंदा के तरफ आकर्षित हो जाला, तो ओहू से पौधा बाचल
0: अच्छा
1: रहेला।
0: अच्छा
1: और इस तरह से और रासायनिक उपाय भी बा, तो सिमोडिस सिजेंटा के 1.5 ml पानी में पानी के दर से घोर ली और मिला करके ओकरा के छीट दी।
0: तो इस तरह से हम बैंगन की फसल को कीटों से बचा सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर आपको गीत सुनाते हैं हम।
1: एकदम सुनवा दी।
0: कलाकार हैं मंजय प्रसाद कश्यप।

0: वाह।
1: बढ़िया लगा गीत। अब चलिए कुछ जानकारी की बातें कर ली
0: हाँ, तो
1: जाए।
0: कुछ काम के बाद तब
1: तो
0: होके के
1: ये
0: चाहिए।
1: वार्ता सुनते हैं हम लोग। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एवं पूर्ति के उपाय। वार्ताकार हैं डॉक्टर उमेश नारायण उमेश।
0: तो सुनी जाइए उपयोगी वार्ता।
2: मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एवं पूर्ति। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जिन पोषक तत्वों को पौधा अपने वातावरण से लेता है उसे सामान्य रूप से पादप पोषक तत्व कहते हैं। परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि पौधों में लगभग 60 तत्व पाए जाते हैं, परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि इन पोषक तत्वों में से केवल 17 ही ऐसे हैं जिनको अवश्य आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। आर्नन स्टॉट के अनुसार आवश्यक पोषक तत्व वह है जिनके अभाव में पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होते हैं। उस पोषक तत्व विशेष की कमी को केवल उसी पोषक तत्व से पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी दूसरे तत्व से नहीं। तीसरा, वह पोषक तत्व उन पौधों के मोटे मेटाबॉलिज्म में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। पहला, हवा या पानी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आते हैं। मृदा से प्राप्त होने वाले तत्व जिस को दो भागों में बांटते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व उन पोषक तत्वों इन पोषक तत्वों की मात्रा में अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है, इसलिए इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आते हैं। द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम परंतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है अधिक है। इसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों को इन पोषक तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एवं निकेल आता है। इसके अतिरिक्त

हाल में कुछ तत्वों की खोज की गई है जो पौधे के लिए आवश्यक, कुछ पौधों में आवश्यक पाया गया है, जैसे कोबाल्ट, सोडियम, निकेल। सूक्ष्म पोषक तत्वों के कमी लक्षण एवं उनका प्रबंधन। फसल उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे के विकास, एंजाइम सक्रियण, क्लोरोफिल निर्माण, पैदावार को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जिंक, आयरन, बोरन आदि सूक्ष्म पोषक तत्व चयापचय एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर फसलों को स्वस्थ और अधिक उत्पादन देने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता संतुलित रहती है। फसल उत्पादन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व। पहला, पौधों के विकास एवं चयापचय। ये तत्व पौधे के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये क्लोरोफिल के उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के अवशोषण एवं प्रोटीन संश्लेषण को तेज करते हैं। दूसरा, अधिकतम उपज एवं गुणवत्ता। संतुलित मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरन, मोलिब्डेनम, निकेल एवं क्लोरीन का उपयोग करने से फसल की उपज एवं गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बीमारी एवं सूखा रोधक क्षमता। ये पोषक तत्व पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे फसल में बीमारियां, सूखे जैसे विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होती है। चौथा, एंजाइम सक्रियण। सूक्ष्म पोषक तत्व कई एंजाइमी प्रतिक्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो पौधे के वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। पांचवा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति। ये मिट्टी की संरचना में सुधार एवं सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और उपजाऊ बनती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें जिंक, यह पौधे के लिए मेटाबॉलिक सक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है एवं क्लोरोफिल के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिंक के कमी के लक्षण सामान्य रूप से नई एवं पुरानी सभी पत्तियों पर दिखाई देती है। क्लोरोटिक भागों में पत्तियां मर जाती हैं। जिंक के कमी के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है और यह पौधे बौने रह जाते हैं तथा बीज का भराव भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। धान एवं गेहूं की पत्तियों पर भूरा कथई रंग का धब्बा पड़ने लगता है। मकई की पत्तियाँ सफ़ेद एवं पीले रंग की हो जाती है। धान में इसकी कमी के लक्षण को खैरा रोग कहते हैं। जिंक के कमी के निदान। जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले डालना चाहिए। यदि खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% बुझा हुआ चूना का घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करना चाहिए। लोहा। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण व श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से ऊपर की पत्तियों में पीलापन होता है और नवीन पत्तियों के आधार से आरंभ होकर अग्रिम भाग की ओर बढ़ता है। यह पौधों में क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। यह पौधों के कोषों में होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपकरण की क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। लोहे के कमी के लक्षण अक्सर नई एवं छोटी पत्तियों का पीलापन होना या अनियमित आकार के पीले धब्बे विकसित हो जाते हैं। लोहे की कमी क्लोरोफिल पौधे की वृद्धि व अनाज के उत्पादन को कम कर देती है। लोहे के कमी के निदान के लिए हम लोग फेरस सल्फेट 19% लोहा एवं आयरन चिलेट 12% लोहा का मिट्टी में प्रयोग एवं पौधे पर व्यवहार किया जाता है। फेरस सल्फेट का प्रयोग मुख्य रूप से पत्तियों पर छिड़काव करने के लिए करना चाहिए। तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं, यह पौधे के अंदर होने वाली ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम्स को उत्तेजित करता है तथा तांबा कुछ प्रोटीन्स के संघटक पदार्थ भी है। तांबा के कमी के कारण पौधे का विकास धीरे हो जाता है एवं परिपक्वता विलंब से होती है। इसकी कमी से नवीन पत्तियों के नोक सफ़ेद हो जाते हैं और पत्तियाँ सूख कर गिरने लगती है। तांबे की कमी को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से कॉपर सल्फेट 25% तांबा का प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज, यह पौधों के कोषों में होने वाली ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। विशेषतः लोहा और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में एक क्लोरोफिल निर्माण में सहायक एवं एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मैंगनीज के कमी अक्सर नीचे की पत्तियों पर पीले भूरे धब्बे व धारियां प्रकट होती है, जिससे पत्तियां बादामी रंग की होकर गिरने लगती है। तांबे का कमी के निदान। इसकी कमी के कारण गेहूं में सफ़ेद लकीर, जो ब्राउन स्पॉट, जौ में ब्राउन स्पॉट हो जाता है। इसकी कमी होने पर इसके लक्षण नई पत्तियों के सिराओं के बीच में पीलापन हो जाता है।
बोरॉन।

0: बोरन कैल्शियम के ग्रहण में सहयोग करता है एवं पौधों के निषेचन की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। बोरॉन की कमी के कारण पौधों की अंतिम कली और नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है और पौधा का ऊपरी भाग का विकास नहीं हो पाता है। बोरन की कमी से पत्तियों का सिर मुड़ जाता है और थोड़ा समय के बाद पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इसकी अधिक कमी होने से पौधों में लगने वाले फूल फल इत्यादि झड़ जाते हैं एवं फल फटने लगते हैं। बोरन की कमी को बोरेक्स के प्रयोग के द्वारा निदान किया जाता है। यह खड़ी फसल में कमी होने पर 0.25% बोरेक्स घोल का व्यवहार करते हैं। मॉलिब्डेनम, यह मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने में मदद करता है, इसलिए यह फलदार पौधों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। यह घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से प्रोटीन निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होते हैं। मॉलिब्डेनम के कमी से पौधों की पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियों के किनारे टूट कर गिरने लगते हैं, केवल पत्तियों के डंठल ही बच जाते हैं। मॉलिब्डेनम की कमी को दूर करने के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट ट्राईऑक्साइड का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग मिट्टी एवं पत्तियों पर छिड़काव दोनों के लिए किया जाता है। क्लोरीन, यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हैं और पौधों की कोशिका रस का रसाकर्षण दाब को सामान्य बनाए रखता है। चुकंदर, पत्ता गोभी, जौ, कपास, गाजर आदि के पौधों के वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी को दूर करने कमी के लक्षण से पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है और क्लोरोसिस के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। निकेल को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की सूची में शामिल किया गया है। निकेल पौधों में नाइट्रोजन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरिस एंजाइम का एक घटक है। निकेल की अनुपस्थिति में यूरिका रूपांतरण असंभव है। इसकी आवश्यकता पौधों को बहुत कम मात्रा में होती है। मृदा परीक्षण एवं पादप विश्लेषण के बढ़ते उपयोग से कई मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पुष्टि हुई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का कई कारण है, जैसे अधिक उपज देने वाले फसलों की मांग, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कम होना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले उच्च विश्लेषण वाले NPK उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग, उर्वरक प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशिष्ट मिश्रण में कमी आई है। ये कारक पूर्ण संतुलित पोषण प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग और आवश्यकता में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान करते हैं। धन्यवाद।
1: अभी हम लोग सुन रहे थे यह वार्ता, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एवं पूर्ति के उपाय। वार्ताकार थे डॉक्टर उमेश नारायण उमेश, इनको धन्यवाद देते हुए अब एक गीत सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत, कलाकार है मंजय प्रसाद कश्यप।

0: वाह, बहुत बड़ी है झूमर।
1: और देखी कि अब यही के जोरे इनका गीत खातिर धन्यवाद दे दी जा। और अब चले के बेरा हो गई,
0: हाँ,
1: तो प्रणाम सुधा बहन।
0: नमस्कार रचना जी।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।

0: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
1: छाया गीत।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द, पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि निजी विद्यालयों को शुल्क की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे, साथ ही किसी भी अनावश्यक शुल्क पर रोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को पुस्तक और पोशाक खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा छात्रों की फीस बकाया होने पर भी उन्हें परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही उनके परिणाम पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम से दर्ज जमाबंदी की जानकारी देनी होगी। श्री सिन्हा ने कहा कि यह अभियान डिजिटल इंडिया को और गति देगा।
3: देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया और हमारा डिजिटल किसान का एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, ये उसको एक बड़ी ताकत

0: देगा, भूमि विवाद हटाएगा, उसके परिमार्जन म्यूटेशन को क्लियर करेगा और आने वाला पीढ़ी को उसकी जमीन की पूरी जानकारी भी मिलेगा। सरकार को उर्वरक, बीज, ये सब अनुदान जो देते हैं वो सही लोगों के हाथ में जाएगा, बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट लोग बाहर होंगे।
1: भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता बिस्व शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हो गया। ब्यौरा हमारे भोजपुर संवाददाता से।
2: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उप निर्वाचन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों जिलों के विभिन्न प्रखंड मुख्यालय स्थित बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। भोजपुर के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने बताया कि 97.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि चार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 14 मई को आरा में होगी। यह सीट पूर्व MLC राधा चरण शाह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इधर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नर्सों को देश की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। नर्स दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में IIT पटना को पंजाब स्थित IIT रोपड़ के साथ जोड़ा गया है। IIT पटना के निदेशक TN सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि इस पहल के तहत पंजाब के 60 चयनित युवा बिहार आएंगे और बिहार के युवा पंजाब जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, परंपरा, तकनीक और सामाजिक जीवन से अवगत कराना है।
3: एक प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेश की संस्कृति, सभ्यता और वहाँ के शिक्षा के आयाम को देखने का एक सुनहरा अवसर है। IIT पटना इस बार पंजाब प्रदेश के साथ इसकी पेयरिंग है। पंजाब के विद्यार्थी 60 की संख्या में यहाँ पे आएंगे और उनको बिहार के जो प्रमुख शिक्षा संस्थान, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहर जो है उन सबों का भ्रमण करने का और उनको समझने का अवसर मिलेगा। और इसी तरह से बिहार के विद्यार्थियों को भी पंजाब ले जाकर के पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर और वहाँ के सामाजिक संस्थानों को देखने का अवसर मिलेगा।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज मुंगेर विश्वविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालय के कामकाज में पारदर्शिता और शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।

0: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: इधर बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के बलिहारी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोने की खरीद नहीं करने की अपील का आम लोगों ने स्वागत किया है।
4: मैं नित्या कुमारी पटना से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करती हूं। मैं अगले एक साल तक सोने के आभूषण नहीं खरीदूंगी, साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की बचत पर ध्यान दूंगी। LPG की जगह इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करूंगी। लोगों को भी मैं इस पहल में जागरूक करूंगी।
5: मैं निशा कुमारी छपरा से, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है महिलाओं से, तो मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूं और मैं आशा करूंगी कि आप भी अपने देश और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी रहेंगी।
6: मैं रोहित कुमार जीविका CM, मैं सभी सदस्यों को समझाई कि सोना ना खरीदें एक साल और तेल कम खर्च करें।
7: अनिल कुमार, औरंगाबाद। यह कदम भारतीय मुद्रा को मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
2: रेलवे ने अमृतसर, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज और निर्मली सरायघाट के रास्ते करने का फैसला किया है। वहीं रेलवे ने पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता बागी कुमार वर्मा का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। बागी कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर विधानमंडल परिसर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बागी कुमार वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जाने माने कृषि वैज्ञानिक और पद्मश्री से सम्मानित गोपाल जी त्रिवेदी का आज पटना में निधन हो गया। गोपाल जी त्रिवेदी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और उन्होंने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों की खोज की थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दूरदर्शन केंद्र पटना के वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक राजन कुमार का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर दूरदर्शन केंद्र पटना और आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों ने गहरी शोक संवेदना जताई है। बक्सर के वीर कुमार सिंह सेतु चेक पोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने 45 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के हरियाबारा टोल प्लाजा के पास पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 180 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 461 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सासाराम नगर निगम की महापौर काजल कुमारी ने आज 1,20,00,000 रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न सड़क और नाला का उद्घाटन किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा में लॉरिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर शिव कथा और रामलीला का भी मंचन होगा।

शेखपुरा जिले में आज विकास और समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय सांसद अरुण भारती ने की। बैठक में जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई और कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जहानाबाद जिले के 25,000 रूपए के इनामी अपराधी पप्पू सौ को पुलिस ने बक्सर से गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित

0: कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द, पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए, अब विद्यालयों को शुल्क की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। प्रदेश में एग्री स्टैक परियोजना के तहत किसानों का फार्मर आईडी बनाने के लिए आज से शुरू हुआ विशेष अभियान। और पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, गया और अरवल समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अरवल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
1: अरवल जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। 2 मई से शुरू हुआ यह अभियान 30 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इससे पूर्व जिले में 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया, जिसमें नागरिकों ने बड़ी संख्या में ऑनलाइन माध्यम से जनगणना में भाग लिया। अब मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक द्वारा स्वगणना में भाग नहीं लेने वाले लोगों को भी जनगणना में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए जिले के सभी कर्मियों और चार्ज अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिले में बीते 9 मई को वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 195 मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन किया गया। इनमें 68 सुलहनीय आपराधिक मामले तथा 64 बैंक ऋण से संबंधित मामले शामिल थे। इसमें 17,03,726 रुपए का सेटलमेंट हुआ तथा ट्रैफिक चलान से 3,02,500 रुपए की वसूली की गई। लोक अदालत के लिए 4 पीठों का गठन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित

0: रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिले के सभी पंचायतों में 19 मई से सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि इसमें आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों की निगरानी और निष्पादन सहयोग शिविर समाधान पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इसके लिए जिले में प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले में किसान को डिजिटल पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से किसान पंजीकरण का कार्य बड़े स्तर पर किया गया। एग्री एस्टेट परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत किसानों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए गए तथा किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया गया। इस अभियान में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिला पदाधिकारी को पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने जिले में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक बताया। इधर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लाभुकों से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण कराने की अपील की गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 19,681 पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो सका है। प्रशासन द्वारा ऐसे लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें जागरूक करने तथा प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। बीते दिनों भू अभिलेख निदेशक सुहर्ष भगत जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विशेष भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जिला पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिले के सभी 312 राजस्व ग्राम में भू सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अरवल जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह देखा गया। परिणाम घोषित होने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
1: अभी आप सुन रहे थे अरवल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रभूषण कुमार।
2: अभी आप अरवल जिले की हलचल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीत। कलाकार हैं श्रीमती डे।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीत। कलाकार थे श्रीमती डे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शूट आउट एट बराला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और आनंद राज आनंद की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लहू के दो रंग का, पूर्णिमा की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ की आवाज़ में भी आप सुन रहे हैं मुबारका फिल्म का गीत। गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं और संगीत दिया है गौरव रोशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अनामिका चोरी चोरी का आपको सुनवा रहे हैं अनामिका की आवाज़ में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

रुपेश मिश्रा और मनसा जस्सी और पवन सिंह और रूपाली जग्गा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का गीत। गीतकार हैं वायु और संगीतकार सचिन जिगर।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे डबल धमाल फिल्म का मीका सिंह की आवाज़ में। गीतकार होंगे मयूर पुरी और संगीतकार आनंद राज आनंद।

श्रोता, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात 10:30 पर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। कलाकार हैं रूपा सिंह।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे रूपा सिंह।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे रूपा सिंह। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत

नियोग असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया

0: ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियन सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा

गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: action with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets confidence. And in badminton, Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में एआईए डीएमके में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवीके हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है। कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को खत्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनक्किद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
1: इससे कबल आज दिन में एनटीए ने इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद किए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
3: मैं श्री हेमंत बिस्वा सरमा

0: ट्रांजिशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान की शहर वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इक्तसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि NCERT और CBSE ने मुश्तरक तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मस्नूई जहानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि NCERT नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जमात के लिए भी मस्नूई जहानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खत्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और यह 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और 1 डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95.63 रुपए हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। IPL में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। CBI ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा

0: विजय की टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेब 483.1 किलोमीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं नाटक अपने अपने सपने। लेखक हैं ललित सहगल और निर्देशक प्राण किशोर।

0: तुम वापिस कैसे आ गए? कुछ हो तो नहीं गया?
1: नहीं, कुछ नहीं।
0: तुम्हारी मोटर की टक्कर तो नहीं हो गई?
1: कहा ना, कुछ नहीं हुआ।
0: तुम्हारा जी तो अच्छा है।
1: मैं थक कर चूर हो गया हूँ।
0: तुम दिन भर कहाँ रहे बिली?
1: मैं यूं घर तक पहुंचा था, अचानक मैं और गाड़ी नहीं चला सका। वो मुझसे संभाली ही नहीं गई।
0: तुम्हें आराम की जरूरत है बिली।
1: मैं गाड़ी चला रहा था, समझी? और मैं बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने मोटर का सामने वाला शीशा खोल दिया और गर्म हवा के झोंके खाता रहा। मैं भूल ही गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। अगर मैं वहीं सड़क की दूसरी तरफ चला गया होता तो मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ गया होता। मैं फिर चलता रहा और 5 मिनट बाद मैं फिर सपना देखने लगा। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आए, ऐसे ऐसे अजीब अजीब ख्याल की
0: दुनिया से फिर बात करें।
1: उन्हें न्यूयॉर्क में मेरी जरूरत नहीं।
0: लेकिन तुम 7 बरस के हो, तुम कल दफ्तर जाकर हॉवर्ड से क्यों नहीं कहते कि अब मैं हर हफ्ते बाहर दौरे पर नहीं जा सकता, मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में काम करना है। तो
1: मैं जरूर कहूंगा लिंडा, जरूर कहूंगा। वो लड़के अंदर हैं?
0: हाँ, सो रहे हैं।
1: सुबह मेरे जाने के बाद डिक ने कुछ कहा था?
0: जब उसने घर में कदम रखा था तो तुम्हें उस पर यूं नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उस पर यूं गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था।
1: मैं उस पर कब गुस्सा हुआ? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था उससे कि क्या कुछ पैसा वैसा बना रहे हो? क्या मेरे जाने के बाद उसने माफी मांगी थी?
0: वो शर्मिंदा है, तुम जानते हो वो तुम्हें कितना मानता है। सोचती हूँ अगर वो अपने आप को पा जाए तो तुम दोनों खुश रहोगे और आगे नहीं लड़ोगे।
1: फार्म पर वो अपने आप को कैसे पा सकता है? वो कोई जिंदगी है? शुरू शुरू में मैंने सोचा बच्चा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब 10 साल हो गए हैं और उसे अब भी हफ्ते के बाद $33 मिलते हैं।
0: वो अपने आप को पा रहा है बिली।
1: 34 बरस तक यूं ही भटकते रहना शर्म की बात है। वो काहिल है, निकम्मा है।
0: बिली बिली वो सो रहा है।
1: वो यहाँ क्यों आया है? उसे कौन सी बात घर खींच लाई है?
0: मुझे मालूम नहीं, लेकिन सोचती हूँ वो अब भी भटका हुआ है।
1: दिस लो मैन भटका हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में ऐसी दिलकश शख्सियत का नौजवान अब तक भटका हुआ है और ऐसा मेहनत

0: जिंदा? जिंदा काशी नहीं है?
1: बिल्कुल नहीं दीदी।
0: सुबह मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे कोई काम दिला दूंगा, वो कुछ ही दिनों में अपनी एक जगह बना देगा। लिंडा, याद है हाई स्कूल में लड़के उसके आगे पीछे घूमा करते थे, और जब वो उनमें से किसी को देखकर मुस्कुरा देता तो उनके चेहरे खिल उठते थे, और जब वो सड़क पर चलता, तुम मेरे बारे में गमगीन थे नहीं रानी?
1: तुम बहुत फिक्र करते हो।
0: तुम मेरा सहारा हो लिंडा।
1: अब जरा आराम करो, तुम तो राई का पहाड़ बना देते हो।
0: मैं अब उससे नहीं लड़ूंगा। अगर वो वापस टेक्सास जाना चाहता है तो चला जाए,
1: वो अपनी राह पा लेगा। दिल्ली
0: क्यों नहीं, कुछ लोग बहुत देर से जिंदगी शुरू कर पाते हैं।
1: और दिल्ली, अगर इस इतवार को थानना है तो हम मोटर में बैठकर घूमने चलेंगे, और देखो हम सामने वाला शीशा खोल देंगे।
0: नई मोटरों का सामने वाला शीशा नहीं खुलता।
1: लेकिन तुमने तो आज खोला था।
0: क्या ये अजीब नहीं, क्या ये कमाल नहीं कि
1: अच्छा,
0: मैं उस वक्त अपनी पुरानी लाल मोटर के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता था जैसे मैं वही पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ।
1: कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात से उसका ख्याल आ गया होगा।
0: कमाल है, याद है वो दिन जब दिफ उस मोटर को खूब चमका कर रखता था। खरीदार को यकीन नहीं हुआ था कि वो 80,000 चल चुकी है। अच्छा, मैं भी कुछ खा कर आता हूँ।

0: God, शायद उन्होंने फिर मोटर टकरा करके अपना चूर कर दिया। अगर यही हाल रहा तो उनका लाइसेंस छिन जाएगा।
1: भाई मैं तो सुनने लगा हूँ।
0: तुम अब भी उन पर नाराज हो?
1: नहीं है तू?
0: जी हाँ, 80,000। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी वो हंसी, वो मजाक, वो इतमाद क्या हुआ?
1: अहती, डैडी मेरा हमेशा मजाक क्यों उड़ाते हैं?
0: वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, वो तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं। बस और क्या। बस सुनो, मैं तुमसे डैडी के बारे में काफी देर से बात करना चाहता था। उन्हें जाने क्या होता जा रहा है, वो अपने आप से बातें करते हैं, ज्यादातर तुमसे।
1: मेरे बारे में क्या कहते हो?
0: यही कि तुम अभी तक कहीं जमे नहीं।
1: हैप्पी, एक आज बात और उन्हें खाई जा रही है।
0: क्या मतलब?
1: छोड़ो, बस सारा इल्जाम मेरे सर पर न मानो।
0: लेकिन मैं सोचता हूँ अगर तुम अब भी कुछ ढंग का काम शुरू करो, मेरा मतलब है क्या तुम्हारा वहाँ कोई मुस्तकबिल है?
1: हैप्पी, मैं नहीं जानता हूँ मुस्तकबिल क्या है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या चाहता हूँ। हाई स्कूल छोड़ने के बाद से मैंने अब तक 25-30 नौकरियां की थी, लेकिन ये सब के सब एक से निकलती है। टेक्सास के जिस फॉर्म में मैं अब काम कर रहा था, वहां आजकल बाहर है, समझे? और अब बाहर आती है तो मुझे लालच महसूस होता है। ओ गॉड, मैं कहीं पहुंच नहीं पाया, मैं क्या कर रहा हूँ? हफ्ते के 28 डॉलरों पर घोड़ों के साथ खेल रहा हूँ। मैं 34 साल का हूँ, मुझे अपने मुस्तकबिल बनाए होना चाहिए। यही सोचकर मैं भागा हुआ घर जाता हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो फिर मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी को बेकार न जाने दूँ, लेकिन हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं किया।
0: बस तुम शायर, तुम सिर्फ सपने देखते।
1: नहीं हैप्पी, नहीं, मैं बहुत बुरी तरह से उलझ गया हूँ। मेरा घर नहीं बचा, मेरा कोई धंधा नहीं जमा। मैं बस एक

0: मैं क्यों? तुम तो पैसा बना रहे हो। मुझे नहीं मालूम मैं किस लिए काम कर रहा हूं। कई बार जब मैं अपने घर में अकेला होता हूं तो उस किराए के बारे में सोचता हूं जो मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं ये पागलपन है, लेकिन यही मैं हमेशा चाहता था कि मेरा अपना घर हो, अपनी मोटर और ढेर सी लड़कियां। ये सब है। फिर भी मैं अकेला।
1: सुनो हैप्पी, तुम मेरे साथ टेक्सास क्यों नहीं चलते? हो सकता है हम वहां एक बाड़ा खरीद ले, मवेशियों को पाले। हम जैसे लोगों को तो बाहर खुले में काम करते होना चाहिए।
0: मैं भी यही सपना देखता हूँ।
1: सुनो, अगर तुम मेरे साथ होगे ना तो मैं भी खुश रहूंगा। हम किसी पर एतबार तो कर सकेंगे। बात यह हैप्पी कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं बने,
0: लेकिन मैं एक बार में रुपया बनाना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। बस
1: चलो अब सुनो।
0: लेकिन हमने कोई फैसला तो किया नहीं।
1: सुनो, मेरे दिमाग में अभी अभी एक ख्याल आया है। तुम्हें विल ओलिवर की याद है?
0: हाँ, वो अब बहुत बड़ा आदमी है। तुम उसके यहाँ फिर से काम करना चाहते?
1: नहीं, लेकिन जब मैंने उसके यहाँ से काम छोड़ा था तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बिस अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना।
0: मुझे याद है,
1: मैं उसे मिलने जाऊंगा। अगर उससे 8-10 हज़ार डॉलर मिल गए तो मैं उनसे एक अच्छा सा बाड़ा खरीद सकूंगा। लेकिन क्या वो अब भी सोचता है कि मैंने उसकी गेंदों का डिब्बा चुराया था?
0: वो कब का भूल गया होगा। ये 10 बरस पहले की बात है। और फिर सचमुच उसने तुम्हें नौकरी से निकाला तो नहीं था?
1: मेरा ख्याल है वो निकालने वाला ही था, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी।
2: जाकर इंजन खोलो।
0: सुना तुमने? बस अब यहां से मत जाना। तुम्हें यहां कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। चलो सोए, सुबह उनसे बात करते हैं।
3: क्या गाड़ी चमकाई है सच। किसी लड़की ने तुम्हें मिलने को वक्त दिया है, लेकिन इन लड़कियों से जरा होशियार रहना भी। कोई वादा ना कर बैठना। लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं और तुम अभी बच्चे हो। तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर जब तुम किसी काम पर लग जाओगे तो तुम जैसे लड़के के लिए लड़की की कमी नहीं होगी। अच्छा, ये बात है, तुम्हारा खर्च लड़कियां उठाती हैं।

0: Ayo jadi apa jadi? आप आज रात कैसे आ गए?
1: मैं बेटा अचानक डर गया। लुकास ने एक बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचा है। कौन? ओ गॉड, मैं उस वक्त अपने भाई बहन के साथ अलास्का क्यों नहीं चला गया? मेरा भाई बेन वो आदमी नहीं था। कामयाबी की मुकम्मल तस्वीर उसने मुझे चलने के लिए बार बार कहा था,
0: पर अब हाथ मलने से क्या?
1: वो आदमी घर से फतेहाल निकला था और हीरों के कानों का मालिक बने मरा।
0: डैडी, मैंने आपसे कहा था कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप आराम से घर बैठे।
1: तुम हफ्ते के $70 पर मुझे घर बिठा दोगे और तुम्हारे घर, तुम्हारे मोटर और लड़कियों का क्या होगा? ओ गॉड, आज

0: तू कहाँ हो दोस्तों, तू कहाँ हो? जंगल जल रहे हैं, मैं मोटर नहीं चला सकता।
1: डैडी डैडी चलकर सोचेंगे।
0: बेटे तुम जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही।

0: टोकरे बैल ने एक मुद्दत से तुम्हारी राह देख रहा था। तुमने ये सब कैसे किया? इसकी एक कहानी है। कैसी कहानी?
1: तुम छोटे से थे
0: जब मैं अपने बाप को ढूंढने इलाका की तरफ निकला था। उस वक्त मुझे दुर्वासे की सही जानकारी दी नहीं। विलियम, कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूं, इसलिए मैं इलाके की जगह अफ्रीका पहुंच गया।
2: अफ्रीका?
0: सोने का देश? हीरों का देश।
2: हीरों का देश?
0: हाँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ट्रेन पकड़।
1: नहीं नहीं, जरा ठहरो।
0: हैप्पी भाई, इधर आ जाओ। ये है तुम्हारे बेन अंक, बहुत बड़े आदमी। बेन, इन्हें वो कहानी सुनाओ। बच्चों, जब मैं 17 बरस का था तो मैं जंगल में गया, और जब मैं बाहर आया तो 21 बरस का था। और खुदा की कसम में अमीर था।
1: देखा तुमने बच्चों, मैं क्या कह रहा था।
0: अच्छा, अब वहां जाओ जहां वो मकान बना है, और कुछ रेत ले आओ। हम अभी सामने का सारा चबूतरा दोबारा बनाते हैं। जरा देखना बेन।
3: आओ हैप्पी, अगर इन बच्चों ने इस इमारत में से कुछ और चुराया तो चौकीदार इन्हें पुलिस के हवाले कर देगा।
2: इसको ऐसे न करने दिया करो।
0: बेन, तुम्हें वो इमारत की लकड़ी देखनी थी जो पिछले हफ्ते लाए थे।
3: सुनो, अगर इस चौकीदार ने
0: भाड़ में जाए वो, मेरे दोनों बच्चे निगर।
3: सर, दिल्ली जेलें निगर लोगों से ही भरी पड़ी है।
0: और स्टॉक एक्सचेंज से जो

0: माँ, माँ मुझे कब से कर रहे हैं?
1: सुबह तक सब ठीक हो जाएगा।
0: तुम इस बारे में मुझे लिखा क्यों नहीं माँ?
1: कैसे लिखते? 3 महीने से तुम्हारा कोई पता नहीं था।
0: हाँ, वो इस तरह हमेशा तो नहीं रहती।
1: नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ आ जाते हो तो वो झुंझलाते हैं और तुम पर बिगड़ते रहते हैं। तुम्हें एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है?
0: मुझे मुझे नफरत नहीं है माँ।
1: लेकिन तुम घर में कदम रखते हो तो उनसे उलझने लगते हो। क्या तुम अब यहाँ रहने के लिए आ रहे हो?
0: मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता।
1: देख, आदमी परिंदा नहीं जो बसंत के साथ आए और बसंत बीतने पर घर चला जाए।
0: माँ, माँ तुम्हारे बाल सफेद हो गए।
1: जब तुम हाई स्कूल में थी ये तभी से सफेद हो चुके हैं। अब मैं बस निर्जनती नहीं हूँ।
0: इन्हें फिर रंगो माँ, मैं अपनी माँ को बूढ़ी नहीं देखना चाहता।
1: देख, याद रखो, एक दिन जब तुम घर का दरवाजा खटखटाओगे तो यहाँ अजनबी लोग होंगे।
0: क्या कह रही हो माँ, तुम तो अभी 60 की भी नहीं हुई।
1: लेकिन तुम्हारे डैडी,
0: हाँ मेरा मतलब उनसे भी था।
1: देख बेटे, अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई जज्बात नहीं तो तुम मेरे लिए भी नहीं हो सकते।
0: हो सकते हैं माँ।
1: नहीं, तुम सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे प्यारा आदमी है और मैं यहाँ किसी आदमी को नहीं आने दूंगी जो उनके दिल में से यह ख्याल लाएगा कि वो अनजान है, बेबस है। तुम्हें अब पक्का करना होगा बेटे, या तो तुम उन्हें अपना बाप समझो और उनकी इज्जत करो, या आगे से यहाँ ना हो।
0: माँ,

0: मैं जानती हूँ बेटे, उनके साथ निभाना आसान नहीं है, ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, लेकिन
1: क्या पागल पड़े हैं?
0: उनके पास मत जाओ।
1: उनके लिए बहाने मत बनाओ माँ, उन्होंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। चार्ली अंकल ऐसा कभी ना करें।
0: तो चार्ली को अपना बाप बना लो बे, मैं ये नहीं कहती कि वो बड़े आदमी है। विली लोमैन ने कभी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया, उनका नाम कभी अखबार में नहीं आया, वो ऐसे चाल चलन के आदमी भी नहीं है जैसे पहले कभी नहीं हुए हैं, लेकिन वो इंसान है इंसान, उनके साथ अनहोनी हो रही और तुमने उन्हें पागल कहा।
1: माँ मेरा ये मतलब नहीं था माँ।
0: नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपना एतमाद खो बैठे, लेकिन तुमने कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की। वो आदमी चुप गया है बेटे, एक छोटा आदमी भी बड़े आदमी की तरह चुप सकता है। 36 साल तक वो एक आदमी के लिए काम करता है, अनसुने कारोबार के धंधे खोलता है, और अब बुढ़ापे में उसकी तनख्वाह छीन ली जाती है।
2: मुझे ये नहीं मालूम था माँ।
0: तुमने पूछा नहीं बेटे, 5 हफ्ते से वो सीधे कमीशन पर काम कर रहे हैं, नौसिखिए की तरह, अनजान आदमी की तरह।
1: मैं यहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा, बस मैं उनसे दूर रहूंगा।
0: नहीं बे, तुम यहाँ रहकर हरदम उनसे उलझ नहीं सकते।
1: लेकिन याद रखो माँ, उन्होंने मुझे इस घर से बाहर निकाला था।
0: ये मैं कभी नहीं जान पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
1: क्योंकि मैं जानता था वो झूठे हैं, और वो अपने आसपास किसी ऐसे आदमी को नहीं चाहते थे, जिन्हें जानता हूँ।
0: झूठे क्यों, किस रूप में?
1: ये मेरे और उनके बीच की बात है माँ, बस यही मुझे कहना है। वो मेरी आधी तनख्वाह पर रहेंगे और अच्छे हो जाएंगे।
0: वो अब अच्छे नहीं होंगे बेटे।
1: मुझे इस शहर से नफरत है, मगर मैं यहाँ रहूंगा, अब और क्या चाहती हूँ।
0: देखो मर रहे हैं, वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं।
1: वो कैसे माँ?
0: पिछले महीने एक दिन अचानक फ्यूज उड़ गया, मैं नीचे तहखाने में फ्यूज की तार लेने गई। तार के डिब्बे के पीछे रबर की एक छोटी सी नली पड़ी हुई थी, मैं फौरन समझ गई कि उन्होंने गैस के हीटर में रबर की नली जोड़कर अपने आप को मारने की कोशिश की।
1: वो नली तुमने वहां से हटा दी?
0: मैं हर रोज नीचे जाकर वो रबर की नली ले आती हूँ, लेकिन जब वो घर आते हैं तो मैं फिर उसे वहीं रख देती हूँ। मैं उसे हटा कर उनकी बेइज्जती नहीं कर सकती, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं मैं, क्या करूं। मैं तो एक पल जी रही हूं बच्चों, उन्होंने तुम दोनों के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी और उनके बुढ़ापे में तुमने मुंह फेर लिया। मैं खुदा की कसम खाकर कहती कि अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है बच्चों।
1: अच्छा माँ, मैं अब यहाँ रहूंगा और किसी न किसी काम में जुट जाऊंगा, मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा माँ।
3: तुम्हारे साथ दिक्कत ये रही है बिस, कि तुमने कभी इन लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं। तुम लिफ्ट में मस्करों की तरह सीटियां बजाते रहते थे। मैं कहना नहीं चाहता था बिस, लेकिन कारोबार की दुनिया में कुछ लोग तुम्हें सनकी समझते हैं।
1: हैप्पी, मुझे उनकी परवाह नहीं, वो डैडी पर बरसों हंसे हैं, और जानती हो क्यों? क्योंकि हम शहर के इस दरबे में रहने के लिए नहीं बने हैं, हमें तो किसी खुले मैदान में लकड़ी चीरते होना चाहिए था। बड़ाई जब चाहे सीटी बजा सकता है।
4: तुम हमेशा बच्चे रहोगे, बर्नार्ड कभी लिफ्ट में सीटी नहीं बजाता।
1: हाँ, लेकिन आप तो बजाते हैं।
4: मैंने कभी लिफ्ट में सीटी नहीं बजाई, और कारोबारी दुनिया में मुझे कौन सन की समझना।
1: डैडी, वो मेरा मतलब ये नहीं।
4: जाओ जाओ टैक्सेस वापस चले जाओ, बढ़ई बनो, चरवाहे बनो, जो चाहो तो बनो। मैंने सुन लिया ये क्या कह रहा था, वो मुझ पर हंसते हैं। अरे कहीं भी जाकर मेरा नाम लो और देखो क्या होता है।
1: अच्छा डैडी,
4: तुम हमेशा मुझे बेइज्जत क्यों करते?
1: मैंने तो कुछ नहीं कहा डैडी, क्या मैंने कुछ कहा था माँ?
0: नहीं नहीं विली, उसने कुछ नहीं ऐसा कहा।
4: अच्छा अच्छा, अगर कल तुम इधर उधर चक्कर लगाकर तंग आ जाओ तो बैठक में मैंने जो नई छत लगाई उस पर रोगन कर देना।
1: मैं सुबह सवेरे जा रहा हूँ।
4: जा रहे हो बेटे ओलिवर से मिलने?
1: क्यों? उसने एक बार मुझसे कहा था मैं तुम्हारी

0: खेल के सामान का कारोबार करो।
1: जी हाँ, मैं कल ओलिवर से मिलूंगा।
0: ओलिवर से मिलने जाओ तो बढ़िया सूट पहन कर जाना, कम से कम बात करना और मजाक वजाक बिल्कुल नहीं। मुझे तो तुम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हारी मुसीबतों के दिन पूरे हो गए, लेकिन देख, याद रखो, बड़े ढंग से काम शुरू करोगे तो हमेशा बड़े बने रहोगे। हाँ, $15,000 से कम मत मांगना, समझे?
2: अच्छा डैडी।
3: देखा बेटे, जो ही तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई वो कितने नीचे हो गए।
2: माँ भी क्या औरत है, इन्हें बनाने के बाद खुदा ने वो सांचा ही तोड़ डाला।
0: माँ की बाल सफेद हो गए, वो पूरी हो गई। मैं कल ओलिवर से मिलने जरूर जाऊंगा, अगर मेरे पास $10,000 हों तो।
2: ये बात हुई ना, मैं पहली बार तुम में वो पुराना एतमाद पा रहा हूं।

0: मैं सोच रही थी ऑलिवर को दोस्ती याद भी होगी।
1: याद? अरे तुम्हारा दिमाग तो चल नहीं गया। अगर बिफ ऑलिवर के साथ रह गया होता तो अब तो कुछ चोटी पर होता। लिंडा, तुम्हें ओएटिस फील्ड की याद है ना? जब बिफ खेल के मैदान से बाहर आया था तो कितनी तालियां बजी थी, लो मैन लो मैन लो मैन। हाँ लिंडा, वो अब भी ऊंचा उठेगा। इतना चमकदार सितारा कभी यूं ही नहीं टूट सकता।
0: विल, उसे तुमसे क्या शिकायत है?
1: वो मैं बहुत थक गया हूँ। तुम और बात न करो।
0: तुम हावर्ड से कहोगे ना कि तुम्हें यूं ही न्यूयॉर्क में काम करने दे?
1: मैं सुबह उठते ही पहला काम करूंगा। अब तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जरा चांद को इमारतों के बीच में से

0: मैं एक मुद्दत बाद घोड़े देख कर सोया। ये लड़के चले गए?
1: हाँ, वो तो सुबह 8 बजे ही चले गए थे।
0: रात आते हुए मैं कुछ बीज खरीद लाऊंगा।
1: लेकिन किसवाड़े तो कभी धूप ही नहीं आती, वहाँ तो कोई चीज नहीं उगेगी। और सुनो, आज तुम हॉवर्ड से बात करोगे ना?
0: हाँ हाँ, उसे मुझे यहाँ लगाना ही पड़ेगा।
1: और दिलीप, उससे कुछ पेशी मांगनी मत भूलना। हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। $200 से हमारा काम चल जाएगा। इसमें घर की आखिरी किस्त भी शामिल है। ये किस्त चुकाने के बाद दिलीप घर हमारा अपना हो जाएगा।
0: 25 साल हो गए, 25 साल। अच्छा, मैं चला।
1: मैं भूल गई, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें शाम को 6 बजे फ्रेंड चॉप हाउस में खाने पर बुलाया है।
0: ये हुई ना बात, मैं जाकर हॉवर्ड को चिप कर दूंगा। अच्छा भाई, मैं तो अब चला। ओ, तुम फिर मोजे पी रही हो? कम से कम मेरे सामने ऐसा न किया करो, मुझे बड़ी उलझन होती है। क्यों ये मैं नहीं बता सकता?
1: अच्छा, और हाँ, याद रखना फ्रेंड चॉप हाउस।
0: हाँ हाँ, अच्छा दिन भर काम में मत लगी रहना।

अभी आप सुन रहे थे नाटक अपने अपने सपने। लेखक थे ललित सहगल और निर्देशक प्राण किशोर, आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लोक भजन, विवाह एवं पूर्वी गीतों पर आधारित लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। मिथिला नगरिया में चर्चा का एक ही विषय है, कौन है ये दोनों, कहाँ से आए हैं, है कैसे मनमोहक है, ये चाहता है देखते ही रहें।

गौरी पूजन को आई जनक नंदनी ने भी सुना, दो सुघर सलोने कुमार बगिया में घूम रहे हैं। देख आने वाली सखी चकित है, भ्रमित है, चंचल हो उठी है, कहती है, कैसे बताऊं, वाणी बोल सकती है देख नहीं सकती, आंखें देख सकती हैं बोल नहीं सकती, श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सीता भी देखने को व्याकुल हो गई, तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। और इधर जब श्री राम के नेत्र उठते हैं तो सिय मुख ससी भय नैन चकोरा, प्रीति पुरातन है, आकर्षण परस्पर है, शिव के धनुष को टूटना ही था। सुंदर सजी बारात लेकर राजा दशरथ पधारते हैं, सिय प्यारी का दूल्हा पालकी में सुशोभित है, मणि माणिक जड़ा मोर, चांदनी बिखेरते कुंडल, गज मोती के किनारों वाला पटुका।

जनकपुर में घर घर आनंद मंगल है। विधाता ने कैसी सुंदर जोड़ी बनाई है, जैसी चारों सुकुमारियां वैसे ही चारों सुकुमार।

लोक भजन और विवाह गीत के बाद पूर्वी पिया को पंथ निहारत सगरी रैन बिहानी होए। रोते रोते नैन टेसु के फूल बन गए। ये उम्र और सुनी सेज, ननद जी की बातों ने कलेजा चलनी कर दिया। आखिर क्या हुआ उन्हें, किस मोहिनी ने भरमा लिया।

विरह विदग्ध नायिका एक बार अपने प्रियतम को देख लेना चाहती है। उस पत्थर दिल के आते आते शायद प्राण ही निकल जाएं। निर्जीव देह को कागा चुन चुन खाएगा। नहीं नहीं ए कागा, तू सब खा लेना लेकिन मेरी आंखें छोड़ देना। ये आंखें दरस दीवानी हैं।

अब एक झूमर। ननद गई पानी भरने, अभी तक वापस नहीं आई। लगता है गहने कपड़े की दुकानों पर अटक गई।

गुंजे बिहार, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का, साधना सरगम की आवाज़ में।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे समीर। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लज्जा। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मल्लिक।

सूट आउट एट बराला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और संगीतकार अनु मल्लिक। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मीका सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तो बात पक्की। गीत के बोल लिखे हैं मयूर पुरी ने और संगीत दिया है मीका सिंह, संगीत दिया है प्रीतम ने।

पावनी पांडे के द्वारा गाए हुए ब्लैकमेल फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहें गाने का शेष भाग।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी

0: ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint